जिसमें योग के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं कि यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम सभी सोच भी नहीं सकते हैं कि यह हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण बन सकता है। हम उस समय विचार करते हैं जब हम अपने हाथ से वह सारी शक्तियों को खो चुके होते हैं। कहते हैं, एक कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतावे क्या बने। एक उम्र के रहते हुए यदि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें, उसके लिए मनन चिंतन करें, तो आगे आने वाली कोई भी परेशानी हमें हो ही नहीं सकती है। योग की योग पाठशाला में हम नित प्रतिदिन सवेरे 6 से 7 जब हम योग प्रतिक्रिया करते हैं, बहुत से ऐसे प्राणायाम आसन को करते हैं, तो हम स्वयं को अपने आप में खोजने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने आप तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि अपने आप तक पहुंचाने के लिए एक सबल क्रिया है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं 30 दिवसीय में आज पहला दिन, जो कि है प्रवाह। प्रवाह का मतलब हुआ बहना। अब हम इसे योग के माध्यम से किस तरीके से बताने वाले हैं, तो आइए आज के शिविर में आप सभी का योगिनी सबदा स्वागत करती है। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि प्रवाह का अर्थ क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि प्रवाह क्या है, उसका क्या महत्व है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जैसे कि प्रवाह शब्द से ही विदित है कि प्रवाह से जीवनोपरांत ही हमें सब कुछ ही मिलने वाला बहुत ही उपयोगी साधन है। प्रवाह का अर्थ होता है उच्चारण, बहाव, बहता हुआ पानी, धारा, कार्य का बराबर चलना व चलते रहना। प्रवाह का अर्थ निरंतरता को पर्याप्त करना है, प्रस्तुत करना है, अर्थात जिस तरह हमारे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह निरंतर बहते रहना इतना ही काफी नहीं, जबकि चलते रहना है। रुधिर इनके अंगों में संचार करके कोशिकाओं में होता है, शिराओं द्वारा फिर हृदय के दाहिने भाग में लौट आता है और फिर चक्र आरंभ होता है। यही रुधिर परिसंचरण कहलाता है। हृदय में स्वयं संकुचन करने की शक्ति है, वह प्रति मिनट 72 बार संकुचन करता है, अर्थात एक बार संकुचन में 0.8 सेकंड चलता है। रक्त परिसंचरण आपका शरीर, इसमें सबसे पहले आता है आपका हृदय, जो शरीर में विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। दूसरा धमनियां, जो शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाती है। तीसरा अंग है शिरा, जो विभिन्न अंगों में जाकर के ऑक्सीजन रहित रक्त एकत्र करती है और इसे वापस हृदय की ओर पहुंचाती है। प्रवाह का अर्थ हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार करना है। हम सबसे पहले तो ये जान लें कि प्रवाह का जो एक शाब्दिक अर्थ है वह है बहना। योग की भाषा में प्रवाह का मतलब होता है योग को अपने शरीर के रक्त रूपी साथ में बहाना। प्रवाह का मतलब है बहना, निरंतर चलते रहना। योग की क्रिया में सबसे पहला और महत्वपूर्ण, जो कि योग प्रारंभ से ही हम करते आ रहे हैं, और सबसे पहला प्रवाह इसलिए है क्योंकि हमें निरंतर ही योग के साथ जुड़े रहना है। योग में कई ऐसी प्रकृतियां हैं जिसे हम अपनाना चाहते हैं और हम उसे करना चाहते हैं। सबसे पहला प्रवाह यानी कि सवेरे उठकर जब हम बैठते हैं एक ध्यान योग में, वातावरण को शुद्ध करते हुए हम एकाग्रचित होकर के बैठ जाएं। तो आइए इस प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं। प्रवाह की स्थिति को जब हम सामने से देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा योग के माध्यम से किए जाने वाला एक संपूर्ण प्राणायाम है। तो सबसे पहले हम प्राणायाम की स्थिति में जाएंगे और सारी श्रृंखलाओं को एक साथ करेंगे। प्रवाह यानी बहते रहना, अपनी अंतरात्मा को बिल्कुल शांत करके नित्य सवेरे उठ करके जब हम प्रवाह की ओर चलेंगे तो हमें वह वातावरण भी शुद्ध से शुद्ध लगेगा और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए हमें लगेगा। तो आइए हम सबसे पहले प्रवाह में सबसे पहला जो प्राणायाम करने जा रहे हैं आज, वह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम किस तरीके से करते हैं वह बताएंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप सीधे बैठ जाएं, आंखें तर्जनी और मध्यमा उंगली से मुंह, अनामिका और छोटी उंगलियों से कान, अंगूठे बंद करके बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। भ्रामरी प्राणायाम को करने से एक प्रवाह होता है जो कि हमारे शरीर में रक्त का संचार दुगनी मात्रा में होने लगता है, जिससे हमें बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि वह खुद ब खुद बहने लगती हैं, जैसे कि

सोच कुछ रहे होते हैं और हमें करना कुछ होता है। यह प्रक्रिया अमूमन हम विद्यार्थियों के दायरे में देखते हैं, क्योंकि विद्यार्थी का जीवन हमेशा से प्रश्नोत्तरी वाला होता है। हमेशा से उनके दिल दिमाग में प्रश्न और उत्तरों का बहुत बड़ा समुन्दर होता है। ऐसे लोगों को हमेशा से भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। भ्रामरी प्राणायाम के लिए रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। एक बार ओम का उच्चारण करते हुए हम अपनी मन वृत्तियों को शांत कर लेंगे और इस प्राणायाम को शुरू करेंगे कुछ इस तरह। ओम।

इस तरीके से हम दोनों हाथों की हथेलियों में घर्षण करके चेहरे पे और आंखों पे लगाएंगे। उसके बाद प्रवाह की ओर चलेंगे, यानी कि सबसे पहले प्राणायाम, प्रवाह प्राणायाम, प्रवाह भ्रामरी प्राणायाम। आई बॉल पर बहुत ही हल्का सा दबाव डालते हुए, श्वास पर नियंत्रण रखते हुए, मधुमक्खी की भिनभिनाहट जैसी गहरी और स्थिर गुंजन ध्वनि निकालते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे और श्वास को लेंगे। यह सबसे पहला प्राणायाम, क्योंकि हमें प्रातः काल में बहुत ही ज्यादा और तेज कोई भी प्राणायाम नहीं करना है। कोशिश करिएगा दोस्तों कि हम वातावरण को शुद्ध करते हुए किसी धूप या अगरबत्ती भी अगर जला देंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा वातावरण बन जाता है। और अपनी मन वृत्तियों को शांत करने के लिए ओम का उच्चारण 3 से 4 बार जरूर करें। एकाग्रचित में बैठ करके हम अपने आप की यानी कि सारी वृत्तियों को शांत करके हम बैठ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अब सभी मिलकर के 2 मिनट का ध्यान करेंगे और उसके बाद आज के प्रवाह प्राणायाम की पूर्ति करेंगे। तो कुछ इस तरह, ओ आंखें बंद, सीधे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी करते हुए सीधी करते हुए बैठ जाएंगे। अपनी सारी मनोवृत्तियों को शांत करते हुए ध्यान योग की ओर हम धीरे धीरे जा रहे हैं। हमें ये महसूस करना है कि हम पहाड़ों की दिशाओं में जा रहे हैं और वहाँ की वादियों को महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ इतना प्यार से, यानी कि हम अपनी सारी वृत्तियों को शांत कर देंगे। योग के समय हमें अपने मन में कोई वैर, विरोध, काम, क्रोध नहीं लाना होता है। और ध्यान योग करते समय तो मुख्यतः इस बात का ध्यान रखना है। सभी से निवेदन है कि अपनी आंखें अभी ना खोलें, धीरे धीरे मध्यम मध्यम श्वास लीजिए और धीरे धीरे मध्यम मध्यम श्वास को छोड़ें। साथ ही साथ हम यह महसूस करेंगे कि हम श्वास को ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं। चेहरे पर एक भीनी भीनी मंद मंद मुस्कान, अंतर मन में सिर्फ एक जाप। हम जिस भी अपने ईश्वर को मानते हैं वह जाप हमारे अंतरात्मा में चलता रहेगा और हमारा ध्यान त्रिनेत्र पर आता रहेगा। यह ध्यान योग हम सभी मिलकर के इसलिए करते हैं क्योंकि रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी होती है हम उसमें हमेशा से अपने आप को बड़े उलझन में पाते हैं। पर ध्यान योग एकाग्र चित होकर के बैठ जाने वाला अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसी तरह जब मैं आपको गिनती उल्टी गिनती की तरफ ले जाऊं, तत्पश्चात आप हाथों की हथेलियों में घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और इस प्राणायाम को पूर्ण करेंगे। 5 4 3

0: इसी तरह अपनी आंखों पे और अपने चेहरे पे हाथ को लगाते हुए हम इस अभ्यास को और आज के प्राणायाम को पूर्ण करते हैं। धीरे धीरे आंखें खोल करके हम अपने चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ में इस प्राणायाम को पूर्ण करेंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि हमें कितनी ज्यादा शांति और आनंद का अनुभव लग रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए यानी कि 30 दिवसीय जो कि शिविर हमने आज से शुरू करी है, तो आज पहला दिन प्रवाह हमने सभी मिलकर के किया। कल की अगली सीरीज के लिए हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने आपको कई ऐसे आसनों के बारे में बताया है, जैसा कि उसके लाभ और उसका तरीका, तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उष्टासन। उष्टासन में सबसे पहले करने का तरीका हम बताएंगे और उसके बाद उसके लाभ। हर एक प्राणायाम का लाभ और अपने आप में उसकी उपयोगिता देखी गई है। उसी तरह उष्टासन भी अपने आप में एक बहुत ही लोकप्रिय और सभी को पसंद आने वाला यह आसन है। तो आइए हम सबसे पहले उष्टासन करते हैं। सर्वप्रथम किसी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे और बैठने का तरीका वज्रासन होगा। जैसे पहले घुटनों के बल बैठे और एड़ियों पर शरीर को टिकाएं। उसके बाद धीरे धीरे घुटनों को उठाएं। अब शरीर को ऊपर उठाकर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों के बीच लगभग 1 फुट का अंतर रखें। हाथों को कमर पर रखें, हथेलियां नीचे की ओर रखें और कमर को हल्का सा पीछे झुकाएं। धीरे धीरे झुके और श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर अपने सर को झुकाएं। उसके बाद एड़ियों को पकड़ें और जब तक आराम से झुक सकें तब तक आप झुकें और दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ लें। छाती को ऊपर उठाएं, सिर को पीछे की ओर झुकाएं ताकि गर्दन को भी स्ट्रेच मिले। सामान्य श्वास लेते हुए इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड रहें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें और फिर पुनरावृत्ति की तरह प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं। वापस आते समय धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और पहले कमर सीधी करें, फिर हाथ कमर पर लाएं और वापस वज्रासन में आ जाएं। तो दोस्तों, ये था उष्टासन करने का तरीका। आइए अब हम उष्टासन के लाभ आपको बताने जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी को लचीलापन तो ये देता ही है, साथ ही साथ यह आसन स्पाइन को भी मजबूत और लचीला बनाता है। कमर और पीठ दर्द में राहत देता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं। छाती और फेफड़ों का विस्तार ठीक ढंग से करता है, इससे श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। यह आसन रक्त संचार में सुधार करता है, तनाव चिंता और थकान को भी यह कम करता है। मन को शांत करने के साथ साथ शरीर में ऊर्जा भी भर देता है। शरीर की आकृति को सुधारता तो है ही, साथ ही साथ पीठ सीधी रहती है और झुके कंधे ठीक होते हैं। पेट के मांसपेशियों को टोन करता है। यह आसन पेट की चर्बी घटाने में भी संपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होता है। हाइड्रेशन यानी पाचन में सुधार करता है। पेट के अंगों पर खिंचाव करने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और रीढ़ की हड्डी और गले के हिस्से को मजबूत करता है। कुछ ऐसे आसन जो कि हमारे संपूर्ण शरीर के लिए लाभप्रद होते हैं, जिसमें उष्टासन और पद्मासन में बैठ करके यदि हम करते हैं तो काफी कुछ हमें इसका लाभ मिलता है। आइए अब मैं इसके प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां बता देती हूँ। कमर या गर्दन में दर्द हो तो इस आसन को बिल्कुल ना करें। ब्लड प्रेशर माइग्रेन या स्पाइन इंजरी वाले लोग भी इसे बिल्कुल ना करें। यह आसन खाली पेट करना चाहिए और भोजन के 3 घंटे के बाद इस आसन को करना चाहिए। शुरुआती लोग इसे दीवार के सहारे या किसी भी प्रशिक्षण की देखरेख में ही करें। आसन करने के बाद कुछ समय बालासन और जिसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं उसमें आराम से बैठ जाएं और उष्टासन को पूर्ण करने के बाद ही आराम से धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ही हम इस आसन को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरीके से इस बार भी उष्टासन के लाभ, सावधानियां और तरीका हमने आपको बताया। इस तरीके से यदि आप इस आसन को करते हैं तो संपूर्ण रूप से आपको जानकारी भी मिलेगी और साथ ही साथ लाभ भी मिलेगा। अगली श्रेणी में हम आएंगे एक नए आसन की सावधानियां, उपचार, लाभ और तरीका लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है, साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सौंच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि
हमारे पूरी शरीर को डिटॉक्स करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद कुप मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योगा एक्सपर्ट आपकी योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं, और आशा करती हूं कि आप अपना ख्याल खुद से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अपनों का और आपका रखते होंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक प्राणायाम, जो कि आज हम आपको उस प्राणायाम के अंतर्गत ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम स्वयं करेंगे और आप भी हमारे साथ उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।

जय माता दी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक और सकारात्मकता से भरा हुआ कार्यक्रम पहली किरण। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त और साथ ही साथ आज के सफर की हम सफर यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सुबह की इस मंगल बेला में हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हर नारी के सौभाग्य, प्रेम, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है, यानी माँ मंगला गौरी। सावन के मंगलवार को माँ पार्वती के मंगला गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ये व्रत सुखी दाम्पत्य सौभाग्य और जीवन में मंगलता का आशीर्वाद प्रदान करता है। जिस घर में सम्मान, विश्वास और प्रेम हो, वहाँ माँ गौरी का आशीर्वाद स्वतः निवास करता है। आपने ट्यून करके रखा हुआ है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, यानी आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। हाँ जी, और शो चल रहा है आपका आध्यात्मिक कार्यक्रम पहली किरण। आज हम बात करेंगे माता के उस मंगल स्वरूप की जिसको कहा जाता है माँ महा मंगला गौरी। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सफर की इस प्यारे से देवी गीत के साथ।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम विशेषता बात कर रहे हैं सावन के मंगलवार पर मनाए जाने वाली दिन की, यानी कि माँ महामंगला गौरी के व्रत पूजन विधान की। चलिए कुछ और बताएं, उससे पहले एक प्रेरणादायक कथा। एक नगर में धर्मपाल नामक व्यापारी रहते थे। धन संपत्ति की कमी नहीं थी, लेकिन संतान सुख से वंचित थे। माँ गौरी की आराधना और व्रत के प्रभाव से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। बाद में पुत्र के जीवन पर संकट आया, लेकिन माँ गौरी की कृपा और श्रद्धा से वो संकट भी टल गया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से कठिन परिस्थितियाँ भी सरल हो जाती हैं। माँ मंगला गौरी केवल सौभाग्य की देवी नहीं है, वे हमें जीवन के तीन महत्वपूर्ण संदेश भी देती हैं। पहला, धैर्य रखो। हर कठिनाई का समय सीमित होता है, हर एक परिस्थिति का समय निश्चित होता है। दूसरा, विश्वास रखो। ईश्वर की योजना हमारी समझ से बड़ी होती है। तीसरा, प्रेम बांटो। प्रेम ही हर रिश्ते की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आप प्रेम बांटते हैं तो वापस भी आपको प्रेम ही मिलता है। ये बात दूसरी की हो सकता है, वो आपके दिए गए प्रेम से कई गुना ज्यादा हो। आज के समय में कई रिश्ते छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं। माँ गौरी का संदेश है, शिकायत मत करें, संवाद अधिक करें, अपेक्षा कम करें, स्वीकार्यता बढ़ाएं, अधिकार से पहले कर्तव्य निभाएं, यही परिवार को स्वर्ग बनाता है। वैसे श्रोताओं, मेरे पास आप सभी के लिए एक प्रश्न भी है, तो चैट बॉक्स में आके अगर आप जवाब देना चाहें तो बेशक दे सकते हैं। अगर माँ मंगला गौरी आज आपके सामने प्रकट होकर एक वरदान दें तो आप क्या मांगेंगे? ऑप्शन भी है मेरे पास, परिवार का सुख, मन की शांति, सफलता और समृद्धि, या सबके लिए स्वास्थ्य और खुशियाँ। चयन आपका है।

सावन के सोमवार और शनिवार बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और सावन के मंगलवार भी बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, एकदम वैसे ही जैसे हम ज्येष्ठ का मंगलवार मनाते हैं बजरंगबली के लिए, वैसे ही सावन के शनिवार को हम संपत शनिवार कहते हैं। सोमवार तो अपने आप में ही भोलेनाथ का दिन होता है, लेकिन सावन के मंगलवार को हम पूरी तरह से समर्पित करते हैं माँ गौरी को। माँ गौरी के उस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं हम जो कि मंगलकारी माना जाता है, यानी माँ मंगला गौरी स्वरूप की पूजा हम मंगलवार के दिन करते हैं सावन के। तो श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि सावन का मंगलवार इतना खास क्यों है। अभी कुछ दिनों पहले ही ज्येष्ठ का मंगलवार बीता है, जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से हनुमान जी की पूजा और अनुष्ठानों के लिए समर्पित था। ठीक उसी प्रकार से सावन का मंगलवार विशेष तौर पर माँ मंगला गौरी को समर्पित है, जो माँ गौरी का ही एक मंगल स्वरूप है। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर आपका अपना आध्यात्मिक कार्यक्रम पहली किरण। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्ज आकांक्षा और आज हम चर्चा करेंगे माँ मंगला गौरी की।

तो साधुजनों, सावन के महीने में स्त्रियों को मेहंदी, श्रृंगार आदि का खूब प्रयोग करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहता है, मन भी अच्छा बना रहता है और मन की समस्याएं भी दूर होती हैं। जिस तरह से भक्तगण 16 सोमवार का व्रत करते हैं, ठीक उसी प्रकार माँ मंगला गौरी का व्रत पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है और ये व्रत एक दिन से लेकर के 5 साल तक किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक दिन से लेकर 5 साल, यानी कि जब भी सावन का मंगलवार आए आपको माँ मंगला गौरी की पूजा करनी है। वैसे अगर आप चाहें तो सावन के एक मंगलवार को भी अगर आपने मन से, श्रद्धा से और पूरे समर्पण से माँ मंगला गौरी की पूजा की है तो आपको ज़रूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप पूरी नियम निष्ठा से इस व्रत का पालन करना चाहते हैं तो लगातार आपको इस व्रत का पालन पूरे 5 सालों तक करना होगा।

माँ मंगला गौरी के पूजन में 16 लड्डू के भोग लगते हैं, जिसे या तो सास या ननद को दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे शादी से पहले अगर किसी को देना हो तो वो क्या करेगा, तो उनके लिए है या आप ब्राह्मण को दें या किसी गरीब को या फिर गौ माता को खिला दें, वो आपके ऊपर है। साथ ही साथ में माँ की आरती भी 16 फुलबत्तियों से की जाती है और 16 चीजें माता को बहुत विशेष तौर पर समर्पित की जाती हैं। 16 तरीके के पुष्प हो गए, 16 रंग के फूल हो गए, 16 हरी इलायची हो गई, कुछ भी हो तो वो 16, अगर नहीं हो पा रहा है तो भी चलेगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको विशेषता करनी ही है, जैसे प्रसाद, लड्डू और फुलबत्ती, फूल, ये चीज़ें आपकी 16-16 होनी ही चाहिए या फिर 16 प्रकार के फूल हो। अब आगे मैं बताऊंगी आपको माँ के बारे में और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले माँ की एक प्यारी सी भेंट का रसन पान करते हैं।

चलिए श्रोताओं, अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर में माँ मंगला गौरी है कौन। माँ मंगला गौरी एक अत्यंत पूजनीय हिंदू देवी हैं और बिहार में गया में स्थित 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। देवी पार्वती यानी सती को समर्पित ये पवित्र स्थान वो स्थल है जहाँ माना जाता है कि उनका स्तन गिरा था। भक्त वैवाहिक सुख, समृद्धि और दीर्घायु के लिए माँ देवी की पूजा करते हैं।

माँ मंगला गौरी का यह स्थान बिहार के गया में मंगला गौरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ऐतिहासिक महत्व की अगर बात करें तो ये मंदिर 15वीं शताब्दी का है और इसका उल्लेख पद्म पुराण, वायु पुराण और अग्नि पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। मंदिर तक

पत्थर की सीढ़ियां और पहाड़ी पर जाने वाली एक मोटर योग्य सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मंदिर परिसर में मां काली, भगवान शिव, गणेश और हनुमान जी की मूर्तियों सहित मंदिर भी है। सावन के पवित्र महीने में हर मंगलवार को रखा जाने वाला ये व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए और अविवाहित महिलाएं आदर्श जीवन साथी की प्राप्ति के लिए रखती हैं। मांगलिक दोषों से पीड़ित लोगों के लिए भी ये व्रत अत्यंत लाभकारी है। नवरात्रि, सावन और सोमवती अमावस्या के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भारी भीड़ उमड़ती है। तो चलिए बोलते हैं जय मंगला गौरी।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक कार्यक्रम पहली किरण, और आज हम बात कर रहे हैं सावन के मंगलवार पर विशेष, यानी कि माँ मंगला गौरी की। चलिए जान लेते हैं कि माँ मंगला गौरी के व्रत की कहानी क्या है। मार्कंडे पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को धर्मपाल नामक व्यापारी और उसकी पत्नी की कथा सुनाई, जिन्हें माँ गौरी की कृपा से अल्पायु पुत्र से दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त हुआ था। श्रावण मास के मंगलवार को किए जाने वाले इस व्रत से वैवाहिक सुख और संतान की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण द्वारा सुनाई गई मार्ट मंगला गौरी व्रत कथा, यानी इसका वर्णन मुख्य रूप से वैवाहिक सुख, अखंड सौभाग्य और संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान कृष्ण ने ये कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो चलिए ये कथा मैं आपको भी सुनाती हूँ, धर्मपाल और सिठानी की कथा। प्राचीन काल में कुंदानीपुरा नाम के नगर में धर्मपाल नाम के एक अत्यंत धनी और विद्वान व्यापारी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक साधु उनके घर भिक्षा मांगने आए, लेकिन उसने धर्मपाल की उदासी देखकर उसका कारण पूछा। साधु ने उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने की सलाह दी, जिसके प्रभाव से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। परंतु पुत्र के अल्पायु होने का श्राप भी कहीं ना कहीं साथ ही साथ मिला। ज्योतिषियों ने धर्मपाल को बताया कि उनका पुत्र अल्पायु यानी कम उम्र का है, और छठे वर्ष में सांप काटने से उसकी मृत्यु होने का योग है। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो धर्मपाल ने उसका विवाह एक ऐसी कन्या से तय किया जिसकी माता नियमित रूप से माँ मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। माँ के व्रत के पुण्य प्रताप से कन्या को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कि वो कभी विधवा नहीं हो सकती। इस कारण धर्मपाल के पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हुई और सांप के काटने का श्राप भी निष्फल हो गया। भगवान कृष्ण ने बताया कि जो भी विवाहित महिला इस कथा को सुनती है और 16 बत्तियों वाले दीपक से देवी की आरती करती है, उसके पति की आयु लंबी होती है। इस व्रत के नियम हैं, चलिए वो भी आपसे बताते हैं। ये व्रत सावन के महीने के हर मंगलवार को किया जाना चाहिए। कथा सुनने के बाद सास और ननद को प्रसाद और उपहार भी देना चाहिए, यही परंपरा है। व्रत के अगले दिन बुधवार को देवी की प्रतिमा का नदी या तालाब में विसर्जन किया जाना चाहिए। इस व्रत को पूर्ण करने और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विवाहित महिलाएं इसे लगातार 5 वर्षों तक करती हैं। तो इस प्रकार से आप भी इस व्रत का पालन करके माँ महागौरी को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन मंगलमय बना सकते हैं। बोलिए जय मंगला गौरी।

श्रोताओं, सबसे पहले हमने जाना कि माँ मंगला गौरी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अब हम जानेंगे कि सावन के मंगलवार को माता गौरी की पूजा होती है, जिन्हें हम मंगला गौरी भी कहते हैं। इनकी पूजा का महत्व क्या है, अब सभी ध्यान से सुनिएगा। सावन में भोलेनाथ के अलावा माता गौरी की भी विशेष कृपा मिल सकती है और इसके लिए सावन के मंगलवार को माता गौरी की उपासना की जाती है। चूंकि इस पूजा से जीवन में हर प्रकार का मंगल होता है, इसलिए इस पूजा को मंगला गौरी कहा जाता है। सावन के मंगलवार को माता गौरी की पूजा उपासना से विवाह और वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर की जा सकती है। खास तौर पर विवाह में देखा जाने वाला सबसे बड़ा दोष यानी मंगल दोष, अर्थात जो लोग मांगलिक हैं, उनके लिए ये व्रत पूजा इसी चमत्कार से कम नहीं है। तो मंगल दोष के लिए माता मंगला गौरी का व्रत कैसे करें, क्या उपाय है, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले सुनेंगे माँ के लिए एक प्यारी सी माँ की भेंट।

जी हाँ श्रोताओं, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे कांक्षा, और आज हम बात कर रहे हैं माता महामंगला गौरी की। वैसे एक प्रश्न होता है हम सभी के मन में कि क्या मंगला गौरी और मांगलिक दोष का कोई संबंध है? तो हाँ श्रोताओं, माँ मंगला गौरी और मांगलिक यानी मंगल दोष का बहुत गहरा संबंध है। हिंदू ज्योतिष में वैवाहिक जीवन की बाधाओं और कुंडली में मांगलिक दोष के निवारण के लिए मंगला गौरी पूजा और व्रत को अत्यंत प्रभावी माना गया है। इन दोनों के बीच मुख्य संबंध और उपाय इस प्रकार हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो तो उसे मांगलिक कहा जाता है। इसके प्रभाव से विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में तनाव जैसी समस्याएं आ सकती हैं। सावन महीने के हर मंगलवार को माता पार्वती यानी माँ गौरी के मंगल स्वरूप यानी मंगला गौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। इसे करने से वैवाहिक सुख प्राप्त होता है और विवाह की रुकावटें दूर होती हैं। जिन कन्याओं की कुंडली में मंगल दोष होता है उनके लिए मंगला गौरी का व्रत किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन माता को हल्दी की माला चढ़ाने और विधि विधान से पूजा करने पर मंगल का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। हिंदू धर्म में माँ मंगला गौरी, माँ पार्वती, देवी सती एक परम कल्याणकारी और शुभ रूप हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका कोई सामान्य जन्म नहीं हुआ था। ये देवी आदि शक्ति हैं जो जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुई। उनके जन्म और इस रूप की मुख्य मान्यताएं हैं, आइए ये भी जानते हैं। माँ सती के रूप में उत्पत्ति। शिव पुराण और देवी भागवत के अनुसार जगत पिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवी सती ने महर्षि दक्ष और माता प्रसूति के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। वे ही बाद में मंगला गौरी और पार्वती कहलाईं। गौरी के नाम की महिमा। कठोर तपस्या के बाद जब देवी ने भगवान शिव को अपना पति बनाया तो वे अपने अत्यंत उज्जवल गौर और तेजस्वी रूप के कारण गौरी कहलाईं। अब जानेंगे मंगला नाम का अर्थ। मंगला शब्द का अर्थ है शुभता, कल्याण और समृद्धि प्रदान करने वाली। अपने इस रूप में वे वैवाहिक जीवन में सुख, सौभाग्य और संतान का आशीर्वाद देती हैं। गया का प्रसिद्ध शक्तिपीठ। बिहार के गया में स्थित ऐतिहासिक मां मंगला गौरी मंदिर 18 महाशक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का वक्ष स्थल गिरा था, जिसके बाद ये स्थान सिद्ध मंगला गौरी तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

श्रोताओं, शीघ्र विवाह के लिए सावन के मंगलवार को सुबह या शाम में माँ गौरी की पूजा करें। उनके सामने घी का चौमुखी एक बड़ा सा दीपक जलाएं। माता को 16 फूल या 16 तरीके का फूल चढ़ाएं। उसमें लाल फूल जरूर होना चाहिए। माता को लाल रंग की चुनरी और लौंग समर्पित करें। इसके बाद इस विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः। इस मंत्र का 1, 3 या 11 माला जप करें। जप के बाद शीघ्र विवाह की कामना करें। 16 लड्डू का प्रसाद रखें व 16 फूल बत्तियों से माँ की आरती करें। ऐसा यदि आप श्रावण के एक मंगलवार को भी करते हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। श्रोताओं, अब जानेंगे पति पत्नी में तालमेल के लिए क्या किया जाए। पति पत्नी में तालमेल के लिए केवल महिलाओं के लिए ये उपाय है। संध्या काल में माता महागौरी की पूजा करें। माता गौरी के समक्ष घी के 3 दीपक जलाएं। इसके बाद माता के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद माँ गौरी को इत्र अर्पित करें व 16 हरी इलायची चढ़ाएं। फिर नवान मंत्र का यानी ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 11 माला जप करें। इलायची का प्रयोग आप स्वयं प्रसाद के रूप में करें। अब जानेंगे यदि वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बढ़ गई हों या टूटने के कगार पे हों तो क्या उपाय करें। सावन के मंगलवार की मध्य रात्रि में माँ गौरी की पूजा करें। ध्यान रखें, माँ गौरी और भगवान शिव की संयुक्त रूप से पूजा करें। भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र समर्पित करें। शिव जी को पीले और माँ महागौरी को गुलाबी वस्त्र, साथ ही माँ को मेहंदी, आलता, सिंदूर इत्यादि सुहाग के सामान अर्पित करें। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र एक बार फिर से। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 11 माला जप करें। सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करें। निश्चित रूप से लाभ होगा।

जी हाँ श्रोताओं, आप शो सुन रहे हैं भूरी भूरी का आध्यात्मिक शो यानी आपका पहली किरण। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्जकांक्षा और आपने ट्यून करके रखा हुआ है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आज की सलाह, हर विवाहिता स्त्री को माँ पार्वती और शिव जी की संयुक्त रूप से पूजा सावन के मंगलवार को जरूर करनी चाहिए। शिव जी को पीले फूल और माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए। यदि आप सभी विवाहिता सावन के हर मंगलवार को ऐसा करें तो आपका वैवाहिक जीवन आनंदित बना रहेगा। श्रोताओं, मंगला गौरी या गया पीठ मंदिर एक शक्ति पीठ है जो गया बिहार में एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों और 11 महाशक्ति पीठों में से एक है जो देवी आदि पराशक्ति को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के शरीर का एक हिस्सा इस स्थान पर गिरा हुआ था। इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं सर्वमंगला, मंगला गौरी और मंगल गौरी, इन सभी नामों से जानी जाती हैं। जो दया पोषण के रूप में इन देवी की पूजा की जाती है। इस मंदिर का उल्लेख पद्म पुराण, वायु पुराण और अग्नि पुराण सहित अन्य तांत्रिक ग्रंथों में किया गया है। वर्तमान मंदिर जो गया मंगला गौरी शक्ति पीठ है का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था और ये गया का प्राचीनतम व सबसे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्रों में से एक है। इस मंदिर में देवी की कोई भी मूर्ति नहीं है। इस मंदिर में सुंदर नक्काशियां देखने को मिलती हैं। मंदिर में भगवान शिव को समर्पित दो छोटे मंदिर हैं, साथ ही साथ गणेश जी और हनुमान जी का भी मंदिर है। महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा और दक्षिणा काली के भी चित्र आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। माँ की कृपा पाने के लिए अगर आपसे बन पाए तो एक बार उनके दर्शन जरूर करने जाइएगा। जय मंगला गौरी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे आज का भूरे भूरे का, जी हाँ, आध्यात्मिक और सकारात्मकता से परिपूर्ण कार्यक्रम पहली किरण। मैं थी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। अब चलते हैं और लेते हैं इस शो से विदा, लेकिन उससे पहले करते हैं माँ मंगला गौरी से एक छोटी सी प्रार्थना। प्रार्थना है, हे माँ मंगला गौरी, हमारे जीवन से भय, चिंता और नकारात्मकता को दूर करें। हमारे परिवारों में प्रेम, सम्मान और सौहार्द का प्रकाश बनाए रखें। हमें सही कर्म करने की प्रेरणा दें। माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और मंगलता भर दे। याद रखिए, जब मन श्रद्धा से भर जाता है तब जीवन की हर राह आसान लगने लगती है। इसी सकारात्मकता सोच के साथ मैं लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार, जय माता दी, और सुनते रहिए, जी हाँ, रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। शो था आपका पहली किरण। राधे राधे, जय जिनेन्द्र, खुदा हाफिज़।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM। अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: जश्नेश का अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में. आपके मॉर्निंग जॉक आर जे अदनान. आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम. ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आर जे अदनान. सो आइए भाई, आज है मंडे मॉर्निंग यानी संडे के जस्ट बाद वाला दिन और पूरे हफ्ते की शुरुआत वाला दिन. तो इस शुरुआत को क्यों ना एक बेहतरीन शुरुआत की तरफ बढ़ा दिया जाए. तो इसी कड़ी में हम पहले इस सॉन्ग को सुनते हैं और वापस से आते हैं. दिन बताते हैं कि आज मंडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे आखिर क्या है जो आपके लिए खास आया हुआ है आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा शो में. सो इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार हाजिर हो रहे हैं और लेकर के आ रहे हैं आपके लिए खासम खास मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान. स्टे ट्यून्ड.
1: देखने में कैसी सीधी सादी

0: यस ऑफ कोर्स, आपको जिस थॉट का इंतजार था दरअसल उसका उतना ही मुझे भी इंतजार था कि जैसे ही ये सॉन्ग कंप्लीट हो वैसे ही हम वापस आए और आपको बताएं कि भाई आज का मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स पूछते ही अच्छा लगता है कि आप कैसे हैं, तो चलिए आप भी बता दिए कि आप कैसे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। और हम फिलहाल आपको ले चल रहे हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ, वो भी मंडे स्पेशल। सो आज आप जाने वाले कि मंडे आपके लिए आखिर कौन सा थॉट लेकर आया है जो पूरे वीक आपके संग ही रहने वाला है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan.

आज का थॉट सुन लेने के बाद आपका दिल जो है बहुत खुश होने वाला है, आप गहराई तक उतरने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी भी मिलने वाली है। ये दावा है, इस थॉट में इतनी ज़्यादा सच्चाई है कि ये सारी चीज़ें आपको देने वाला है। दरअसल आज का थॉट कहता है कि असाधारण बनने की चाहत से भरी इस दुनिया में एक अच्छा इंसान होने में ही बहुत ही गहरी शांति मौजूद है। बस इतना सही थॉट है, लेकिन जब इसको समझने की कोशिश करते हैं तब ये खुद में एक असाधारण थॉट बन करके आता है। यानी कैसी दुनिया में है, कैसे जहां में है, जहां हर कोई बहुत ज़्यादा फेमस होना चाह रहा है, बहुत अलग करना चाह रहा है, बहुत नाम करना चाह रहा है, ऐसी दुनिया में एक अच्छा इंसान होने में ही बहुत गहरी शांति जो है वो मौजूद है। एक अच्छा इंसान अगर बन गए तो उसमें आपको वो शांति मिलने वाली है कि वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कहते हैं ना कि जैसे बहुत ज्ञान भरी बातें नहीं होनी चाहिए, मुझे भी बिलीफ नहीं है ज्ञान भरी बातों पे, बहुत ज़्यादा आदर्श वाली बातों को करने का। डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा इंसान होने का मतलब है कि आपको खुद से फील होना। एक बेहतर इंसान क्या होता है? जो अपने साथ इंसाफ करता है। एक अच्छा इंसान अपने साथ इंसाफ कैसे करता है? अपने डिसीजंस जैसे वो खुद लेता है, उसी तरह अगर कोई अपना फैसला खुद ले रहा होता है तो उसको बुरा नहीं लगता है, उसको अच्छा लगता है कि जैसे मैं अपने फैसले ले लेता हूँ वैसे ही सामने वाला भी ले रहा है। या इस तरह से एक अच्छा इंसान अपनी हेल्थ की केयर करता है, अपने आसपास के लोगों को, क्योंकि उसको पीस चाहिए होता है, उसको झगड़े लड़ाई और बिला वजह के फसाद में फंसना ही नहीं होता है। तो अगर कोई भी बहुत शांत रहने वाला है, खामोश रहने वाला है, खुश रहने वाला है, तो ऐसा इंसान जा करके उसके पास खुश होता है और वो उसको सपोर्ट करता है कि मैं खुद भी ऐसा ही हूँ। एक अच्छा इंसान क्या होता है? एक अच्छा इंसान होता है पहले चीज़ों को समझे, उसके बाद सोचे, तब कुछ बोले। तो एक अच्छे इंसान में ये सारी खूबियाँ अगर आ रही है तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान खुश तो होगा ही। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डीपनेस के साथ चीज़ें हैं और आपको भी पता चल ही रहा है कि आखिर क्यों हम इस बात को कह रहे हैं कि एक अच्छा इंसान जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गहरी शांति मौजूद होती है। यही वजह है, क्योंकि ये जो दुनिया है यहाँ पर हर कोई वायरल होना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा कमाना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा नाम होना चाह रहा है, कुछ ऐसा जिससे कहें कि लोग वाह वाह। ठीक है, इसी में हम उस बात को भूल जाते हैं जो बेसिक है, जो पहले होना है। ये वही वाली बात है जैसे आपको खाना तो मिले, पूरी पूरी दावत ली जाए और आप कहें कि हाँ हाँ हाँ, लास्ट वाली जो देने वाली मिठाई है बस वो खा करके हमारा काम हो गया, भाई खाना शुरू ही नहीं किया, अभी तो आपके सामने रोटी थी, सब्जियां थी, बहुत सारे व्यंजन थे अलग अलग प्रकार के टेस्ट के, उसको छोड़ करके सीधे मिठाइयां खाई कि आह बड़ी टेस्टी होती और हो गया। उसी तरह होता है इंसान, बेसिक चीज़ होती है कि इंसान खुद को जाने, सबसे पहली बात, जिसके बिना काम ही नहीं चलना है। लेकिन हम किस पे आ जाते हैं? दुनिया में चल रहे ट्रेंड में, माहौल में और राय में कि ऐसा होना है, अच्छा ऐसा होना, रुको हम भी करते हैं, और हम कूद जाते हैं सीधे उधर की तरफ जो हमारे बेस से बाहर की चीज़ होती है। ठीक है, हम उसमें रहते हैं, लेकिन उसी के दौरान जब हमको हमारी बेसिक चीज़ें नहीं मिलती तो फिर हम परेशान होते हैं, हम ढूंढने लग जाते हैं कि आखिर है क्या। बाद की चीज़ें पा करके हमको महसूस होता है एक वक्त, एक उम्र गुजर जाने के बाद कि आखिर मज़ा क्यों नहीं आया, कुछ फील क्यों नहीं हुआ। क्यों भाई? बेसिक चीज़ ही छोड़ दी ना हमने, हमने शुरुआत ही कहाँ की जहाँ से हमको करना था। और शुरुआत के लिए कोई और नियम नहीं है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आप किसी की बातें मत जाइए, आप तो खुद से शुरू करिए ना। यही तो मैंने कहा, अब खुद से ज़्यादा पहले और खुद से ज़्यादा करीब तो आपके कोई और हो ही नहीं सकते ना। सो आपको अपने से स्टार्ट करना है, और इसीलिए इस थॉट को वजूद में लाया गया। इस थॉट ने बड़ी ही प्यारी बात की है
कि एक ऐसी दुनिया में जहां सभी असाधारण बनने की चाहत रखे हुए हैं, उसी दुनिया में एक अच्छा इंसान होना अपने आप में ही उसके अंदर एक बहुत ही डीप पीस है, यानी एक बहुत गहरी शांति है उस इंसान के अंदर। तो फैसला हमको खुद करना है कि हमें करना क्या है। इस दुनिया में हमको छा जाना है, वायरल होना है, लोगों के जहन में आ जाना है, लोगों से वाह वाह सुन लेना है, या उससे भी पहले एक काम होता है जो होता है अपने पास का। जी हाँ, यानी एक अच्छा इंसान बनने का प्रोसेस। मैंने कहीं पढ़ा था, बड़ी खूबसूरत सी बात थी, एक लाइन में मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि हम सब लोगों ने सफलता का इतना गुणगान कर दिया है, इतना ज़्यादा गुणगान कर दिया है कि अब इस समाज में अच्छा इंसान बनना सेकेंडरी हो गया है, सफल होना प्रायोरिटी हो गया है। इसीलिए सफल बनने की चाहत में इंसान कुछ भी किए जा रहा है, सिर्फ अपना देख रहा है, किसी का लॉस हो कोई मतलब नहीं, क्या आ रहा है क्या जा रहा है कोई मतलब नहीं, किस तरीके से है कोई मतलब नहीं, बस पाना है, बस पाना है। तो पाना भी क्या है, वो चीज़ जो आप खुद ही नहीं समझ पाए हो कि सच में आपको ये पाना था, क्योंकि पाने के बाद भी आपको यही रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कहाँ वक्त गुजार दिया, आखिर मुझे मिला क्या है, एट द एंड आखिर में मेरे पास आया क्या। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, ये है बहुत गहरी बात लेकिन बहुत अहम बात है। शायद हमें ये बहुत इजीली अगर समझ में आ जाएगा तो हमारी लाइफ उतनी ही इजीली हम लेकर जाएंगे। सो अच्छा इंसान बनिए, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए हो गए, अपने लिए आप नर्म हो गए, तो इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है कि आप दूसरों और समाज और अपने आसपास के लोगों के लिए खुद ब खुद हो जाने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अपने लिए। आई होप कि आज का मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपको ज़रूर पसंद आया होगा। भाई कैसा लगा, चलिए फटाफट से कमेंट करिए और बता दीजिए कि आज का मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे लगा कि हाँ, पूरे हफ्ते नहीं पूरी ज़िंदगी भर का इसने एक फ़लसफ़ा दे दिया है। अब शायद मैं भी अपने लिए बेहतर इंसान बनने की पहले कोशिश करूँगा।

0: जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। आइए आपको सीधे ले चलते हैं आपके भेजे गए मैसेजेस की तरफ। यानी आप इस वक्त सुन रहे हैं 89.6 एफएम को फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। और इसी एप्लीकेशन से सुनने वाले हमारे श्रोताओं को मिलता है डायरेक्ट शो से और ऑफ कोर्स शो के आरजे से जुड़ने का मौका। सो क्या कुछ लिखा है आपने और क्या कुछ कह रहे हैं आप, चलिए सब कुछ बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

क्या बात है। और आपने बताया है कल रात में बहुत बारिश हुई है लखनऊ में। और राइट, सो कोई बताने वाला है? देखिए मैं तो सो गया था समय से। कल गोंडा में हुई है कि नहीं हुई है? क्योंकि सुबह ऐसा कोई नामो निशा मिला तो नहीं है। मे भी हुई हो, और हो सकता हो कुछ अलग एरियाज में हुई हो, तो बताया जा सकता है गोंडा वालों के ज़रिए। हमारी सविता दुबे जी मौजूद हैं, लिखा है आपने सुप्रभात। सुप्रभात आपको भी। आज का सुविचार, बहुत ही सही बात कहा आपने मन की करती हूँ। वाह, इट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। एंड हमारे धर्मेंद्र मोहन जी हैं फ्रॉम आवस विकास गोंडा, लिखते हैं अदनान सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आगे आप लिखते हैं कि सबसे गहरी पीड़ा बाहर से नहीं मन के भीतर जन्म लेती है। जब मन तनाव से भर जाता है तो वहीं अनेकों रोगों का द्वार खोल देता है, इसीलिए मन को शांत करना ही सच्चा उपचार है। वाह, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्यूशन सब कुछ बता दिया, दैट्स ग्रेट। प्रीति जी लिखती हैं ट्रुथफुल थॉट, अच्छे सदव्यवहार वाले व्यक्ति को सभी याद करते हैं, ना कि दुष्ट व्यक्ति को। एंड हमारी गीता जी भी मौजूद है गोंडा से ही, आपने लिखा है गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। नगेश्वर मौजूद है, लिखा है सावन के प्रथम सोमवार को आप सभी को शुभकामनाएं, और बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदा आप सब पर बना रहे, आप पर भी बना रहे, एंड थैंक यू सो मच। और सावन के पहले सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आशु जी लिखती हैं कि अच्छे इंसान के अंदर भी एक बुरी आदत होती है, वो सभी इंसानों को अच्छा समझ लेता है। वेरी नाइस थॉट सर, थैंक यू। एंड नहीं हुई है बारिश, ओके अपडेट देखिए मिल गई मुझे गोंडा से, सो ये कन्फर्म्ड हो गया है कि भाई गोंडा में फिलहाल बारिश नहीं हुई है, और लखनऊ में कल रात बारिश हुई है। अब ये मुझे लगता है कि आज रात हिसाब किताब बराबर हो जाए, मतलब गोंडा में भी बरस जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम तो इंतज़ार करने ही वाले हैं। बहरहाल बारिश होगी अपने वक्त पे, मौसम भी बदलेगा अपने वक्त पे। लेकिन अगर बात मन की करे तो सच में ये काफ़ी ज़्यादा चंचल होता है, इसका कोई भरोसा नहीं होता, ये मन कहाँ जा रहा है, क्या कह रहा है, और इसके क्या अपने इशारे हैं। चलिए इसी इशारे को इस गाने के ज़रिए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

0: सुन लिया मैंने, सुन लिया। लेकिन मैंने ये सुना है कि आपको ये बताना है कि भाई आज है 3 जुलाई और आज की डे हिस्ट्री क्या है। लेकिन आपने क्या सुना? आपको तो आपके दिल ने अपनी बात कही है, उसको अलग तरह से सुनना है। फिलहाल सुनते रहिए आप 89.6 FM, जहां होती है आपके दिल की बातें।
1: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई आपको हम बता दें कि आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई का अपना इतिहास है। इतिहास क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं, राइट। सो आज ही के दिन पुर्तगाल ने 1661 में मुंबई और तंजौर इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दिया था। इसके अलावा आज ही के दिन 1710 में उन्होंने मुगलों को हराया था, और आज ही के दिन मराठा सेना ने 1760 में दिल्ली पर कब्जा किया था। आज के ही दिन अमेरिका ने 1819 में पहला बचत बैंक बैंक ऑफ सेविंग इन न्यूयॉर्क शुरू किया था। आज ही के दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के को 1879 में गिरफ्तार किया गया था। आज के ही दिन स्टॉक एक्सचेंज दाउ जोन्स ने 1884 में अपना पहला स्टॉक इंडेक्स प्रकाशित किया था। आज ही के दिन इतावली वैज्ञानिक मार्कोनी ने 1897 को लंदन में रेडियो का पेटेंट कराया था। आज के ही दिन बाल गंगाधर तिलक को 1908 में अंग्रेज सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था। आज ही के दिन लंदन में पहली बार रंगीन टीवी कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था 3 जुलाई 1928 को। एंड आज ही के दिन आपको हम बता दें कि 105 यात्रियों वाला हवाई जहाज 1970 में स्पेन में लापता हो गया था। आज के ही दिन आपको हम बता दें कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के बीच 1972 में कश्मीर संबंधी निःशस्त्र समझौता हुआ था। आज के ही दिन रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में है, पृथ्वी सम्मेलन आज के ही दिन हुआ था 1992 में। एंड आज ही के दिन आपको हम बता दें कि कैरिबियाई द्वीप पर 35 साल बाद पहली बार जीत दर्ज की गई थी। एंड आज ही के दिन आपको हम बता दें कि अचल कुमार ज्योति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2017 में नियुक्त किए गए थे। एंड आज के ही दिन साल 2011 में विम्बलडन ओपन ग्रैंड स्लैम के पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग में पेट्रा क्विटोवा चैंपियन बने थे। सो ये थी आज की डे हिस्ट्री की कुछ घटनाएं जो कि पूरे विश्व में कहां कहां कब कब और क्या क्या घटित हुई ये हमने बताया। कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसे जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ 3 जुलाई में ही। सो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के पुत्र शाह शुजा मुग़ल का जन्म आज ही के दिन 3 जुलाई 1616 में हुआ। आज ही के दिन गणराज्य के लेखक कैफ्का का जन्म 1883 में हुआ। आज ही के दिन भारत की प्रसिद्ध समाजसेवी स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद हंसा मेहता का जन्म 1897 में आज ही के दिन हुआ। मलयालम सिनेमा और भारत के चोटी के फिल्म निर्माताओं में से एक अदूर गोपाल कृष्णन का जन्म 1941 में हुआ। इसके अलावा आज ही के दिन हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टॉम क्रूज का जन्म 1962 में हुआ। आज ही के दिन किन महान हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कहा, यानी किन हस्तियों की पुण्यतिथि है 3 जुलाई में। सो आपको हम बता दें, मराठी निर्गुण संत कवि नामदेव का निधन 1350 में 3 जुलाई को आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन अमेरिकी रॉक द बैंड द डोर्स के प्रसिद्ध गायक जिम मॉरिसन का निधन भी 3 जुलाई 1971 को हुआ। इसके अलावा हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का निधन भी 3 जुलाई 1996 को हुआ। और आज ही के दिन परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मनोज कुमार पांडे का निधन 3 जुलाई 1999 में हुआ। इसके अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 36वें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश योगेश कुमार सभरवाल साहब का निधन आज ही के दिन 3 जुलाई 2015 में हुआ। सो ये रही आज की डे हिस्ट्री, और उन हस्तियों के बारे में बताया जिनकी पैदाइश आज ही के दिन 3 जुलाई को हुई, और साथ ही उन हस्तियों के बारे में जिनकी पुण्यतिथि आज ही के दिन यानी 3 जुलाई के ही दिन है। आई होप कि आप तक ये कुछ नई बातें ज़रूर गई हैं, और कहीं ना कहीं इन बातों से आपकी दिलचस्पी हिस्ट्री में और भी ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि अपने इंटरेस्ट एरिया ये हमारे फील्ड से जुड़े हुए होते हैं, और उसके बाद हमारी दिलचस्पी का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हो जाता है। फिलहाल आप अपना मूड अप करिए, क्योंकि
लगातार सॉन्ग्स आपके मूड को अपलिफ्ट करने के लिए आ रहे हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: लगातार हम एक अपडेट लेते जा रहे हैं और वो है असम की। असम में जो फिलहाल बाढ़ आई है उसकी अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच गई है और लगातार कई सारी वीडियोस आ रही है जिसको देखकर मन में यही हो रहा है कि कितने लोगों का आशियाना, कितने लोगों का सब कुछ उजड़ जाता है इस प्राकृतिक आपदा में। फिलहाल इसी से जुड़ी कुछ बातें हैं, चलिए आपको बताते हैं। आपके मॉर्निंग वाले शो में आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो असम के शिवसागर जिले का पान बेचा गांव जो है साल के 6 महीने पानी से घिरा रहता है, लेकिन इस साल जो बाढ़ आई है इससे यहाँ की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल में पड़ गई है। जी हाँ, और भी ज़्यादा मुश्किल बना दिया है, क्योंकि गांव के लोग अपना घर छोड़ करके नहीं जा सकते, क्योंकि इनके जानवर भी इनके परिवार का हिस्सा ही हैं। इसीलिए ये ऊंचे बने घरों में रह करके हालात का सामना कर रहे हैं फिलहाल। और यहाँ बच्चों के लिए स्कूल जाना आसान नहीं है, हर सुबह उन्हें नाव से नदी पार करनी पड़ती है और इसी के बाद ही वो स्कूल को पहुँच पाते हैं। फिर भी इन बच्चों के चेहरे की अगर आप मुस्कान देखेंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि वो हर दिन कितनी मुश्किलों का सामना करके अपने स्कूल तक पहुँचते हैं। बड़े मासूम से बच्चे हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बताती है। यूँ तो इस वक्त असम की हालत बहुत ख़राब है और कहीं ना कहीं शायद ऐसे बहुत सारे लोग निकल करके आ रहे हैं जो वहाँ के लिए हेल्प कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, जितनी हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा एक हिस्सा है। लेकिन इसी के साथ ही साथ एक बात हमको ये भी गौर करनी चाहिए कि जो लोग इतनी मुश्किल में भी हैं तो भी वो पढ़ाई जैसी अहम चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह हमको अगर थोड़ी भी फैसिलिटी मिलती है तो हमको भी शायद उन चीज़ों का इतना ही स्माइल के साथ, इतनी ही मुस्कान के साथ में वेलकम करना चाहिए। सो बहुत कुछ लोगों को नहीं मिला है, उसके बावजूद भी जितना मिला है वो किसी तरह से उसको बेहतर बनाने की कोशिश लगातार करते चले आ रहे हैं, और जिनको मिला है मुझे लगता है उनको भी इसका ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए कि उनको क्या कुछ मिला है और वो अपने को कैसे और बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल बहुत सारी ऐसी NGOs हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो लगातार असम राज्य पहुंच करके वहां हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लगभग स्टेट में जो है वो बाढ़ आई हुई है जिससे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और जो आम जन जीवन था वो काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया है। सो ऐसे वक्त में जो जितना हो सके, जिस तरह से हो सके, जैसे भी हो सके हेल्प करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त जो है वो असम के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है। एंड आई होप, हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये मुसीबत भी दूर हो और जल्द से जल्द असम भी वापस से अपनी पटरी पर आए और जिस खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिस मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, उसको वहाँ पर जाने वाले लोग फिर से जल्द फील कर पा रहे हैं। फिलहाल आप सुनिए इस गाने को, वापस से आते हैं, आने के बाद कुछ और बातें हैं जो आज आपसे कहनी हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके RJ अदनान को। सुबह रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: भाई, कंप्यूटर में एक बड़ा ही बेहतरीन सा ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं UNDO, अनडू बटन। इससे होता ये कि आपने अगर कोई एक्शन लिया हुआ है, कोई क्लिक किया हुआ है, एक स्टेप आगे बढ़े हुए हैं और आपको बाद में अचानक से रियलाइज हो कि यार ये स्टेप सही नहीं है, सो आप कंट्रोल जेड या तो दबाते हैं या फिर अंडू वाले ऑप्शन पर जाकर एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। अगर मान लीजिए जिंदगी आपको एक अंडू बटन दे और आपको अपनी लाइफ की कोई पिछले एक काम को वापस से जा करके बदलना हो या नहीं करना हो या जो करने से रह गए हैं वो करना हो, तो आखिर क्या हो सकता है। मुझे लगता है लाइफ का अगर ये ऑप्शन मिल जाए तो लिटरली बता रहे हैं लोग, भैया सबसे पहले अपनी उस बात को ढूंढेंगे जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है और वो बेहतर कर सकते थे लेकिन नहीं किया। सो अगर मान लिए लाइफ आपको अंडू बटन का ऑप्शन देती है तो अपनी प्रीवियस लाइफ में जा करके आप क्या करने वाले हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप अंडू ऑप्शन में लेने वाले हैं और वापस से जा करके उसको सही करके वापस आने वाले हैं। ज़रा सोचिएगा और बताने सकते हैं तो बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी जानना है कि आखिर ऐसा क्या था कि आप अपनी लाइफ के अंडू बटन को किस काम के लिए करने वाले हैं, यानी आप कौन सा ऐसा ज़िंदगी का पल है जिसे आप कैंसिल करना चाहते हैं। चलिए फटाफट से सोचिए और अगर कोई ऐसा पल है तो बताइए क्या हो सकता है।

0: हेलो,
1: अरे कहाँ हो तुम?
2: अरे तुम हो, अरे तुम्हें वो ज्वेलरी शॉप याद है ना, जहाँ तुम्हें एक बार मैं लेकर गया था?
1: कौन सी?
2: अरे जहाँ तुमने वो हीरे का हार पसंद किया था।
1: हाँ, याद है।
2: लेकिन तब मेरे पास पैसे नहीं थे।
1: हाँ।
2: और मैंने तुम

0: सो भाई लाइफ का अंडू बटन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काश वो ऐसा लाइफ दे पाती और हम वापस से अपनी प्रीवियस लाइफ में जा करके कुछ एक फैसले को या कुछ एक मोमेंट को कैंसिल कर पाते। शायद सभी की लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ है जिसमें आपने ऐसा डिसीजन लिया जिसके बाद आपको लगता है कि अगर अंडू का ऑप्शन लाइफ दे दे तो आप आज भी देर किए बिना जा करके चेंज कर देंगे।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

सो मुझे लगता है अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो जहां जहां मैंने अपने मन की ना करके किसी के हिसाब से किया वहां चीज़ें इतनी बेहतर नहीं रही। और आज अगर ज़िंदगी मुझे मौका देती है उस अंडू ऑप्शन का जिसमें मैं वापस जाके उस एक्शन को कैंसिल कर सकूं जो मैंने लिया था, तो शायद ऐसे ही कुछ मोमेंट्स हैं, ऐसे ही कुछ डिसीजंस हैं जो मुझे खुद से ही लेने थे। शायद ऐसी आपकी लाइफ में भी हो, कोई आपने ऐसा डिसीजन लिया हो, कोई ऐसा रिलेशन रहा हो, कोई ऐसी करियर का पाथ रहा हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है और सभी की लाइफ में ऐसा होता है। हालांकि ये एक बात होती है, हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन देती नहीं है ज़िंदगी, लेकिन फिर भी अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता तो मैं ये कर रहा होता या मैं ये कर रही होती। इस तरह से बहुत सारे ख्याल आते हैं। और अच्छी बात ये है कि आज जब हम इस मोमेंट में हैं जहाँ से हमें आगे चीज़ों को बेहतर करना है, तो यहाँ से हम जो लगता है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हुए चले जाते हैं। ये आज क्या है, बहरहाल ये तो लाइफ है और ये ऐसी ही चलने वाली है। कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, ये तो चलता रहने वाला है। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है वो है आपका गुड मॉर्निंग गोंडा शो, आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ। और आप बने हुए हैं अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: Delicious!
3: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
1: अरे सुना?
4: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
5: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
6: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
5: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
6: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
5: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: सो वक्त है अजब गजब की तरफ चलने का, यानी होगा तो ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजब लेकिन इसका असर होगा काफ़ी ज़्यादा गजब। तो आइए आज क्या है आपके गुड मॉर्निंग गुंडा शो में अजब गजब में बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले जॉक आर जे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Arjun Khan.

हाँ जी, तो भाई आपको हम बता रहे हैं एक ऐसी बात जिसको सुनकर आप होने वाले हैं परेशान और साथ ही खुश, मिक्स्ड फीलिंग। परेशान मतलब कि ये कैसे, और खुश, अरे वाह क्या असर है इसका। दरअसल आपको हम बता दें कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई 250 चिप्स के पैकेट से सोलर टाइल बना लिया जाए तो यकीन करेंगे? मुश्किल है कि कहाँ चिप्स का पैकेट और कहाँ सोलर की टाइल, हाउ इज इट पॉसिबल। चलिए ले चलते हैं आपको गुजरात के इंजीनियर शनि के पास, जिन्होंने पहली बार प्लास्टिक के वेस्ट से तैयार की है ये अनोखी सी टाइल। अब आप सोचेंगे यार सब ठीक है लेकिन ये चिप्स के पैकेट्स से कैसे, चलिए पूरी बात बताएंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे। देखिए अभी मई जून और जुलाई में स्पेशली बहुत ज़्यादा चूँकि गर्मी हुई, उमस हुई, जिससे क्या है कि बिजली की मांग बढ़ गई, और ये इस बार नहीं हर बार का है, यानी जब जब इस तरह से मौसम चेंज होता है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसी वक्त गुजरात के इंजीनियर जो हैं शनि, इनका ये इनोवेशन उम्मीद की एक नई किरण बन करके सामने आया है। 250 से ज़्यादा चिप्स पैकेट्स को रीसाइकल करके बनाई गई ये सोलर टाइल धूप को ऊर्जा में बदलने के साथ साथ प्लास्टिक कचरे की प्रॉब्लम्स का भी हल देती है। ये टाइल इतनी मजबूत है कि इसे छत या बालकनी में लगाया जा सकता है और इसके ऊपर आराम से चला भी जा सकता है, वो भी बिना अलग से जगह घेरे जैसे पारंपरिक सोलर पैनल्स करते हैं। सो शनि पिछले 7 सालों से सोलर सेक्टर में काम कर रहे हैं और अपने स्टार्टअप पावर ट्री के ज़रिए नए नए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ला रहे हैं। इससे पहले इन्होंने सोलर ट्री डिज़ाइन किया था जो कम जगह में ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए पार्क, रोड डिवाइडर और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में लगाया जाता है। अब तक इनके सोलर ट्री इसरो कैंपस सहित 150 से ज़्यादा जगहों पर लगाए जा चुके हैं। इस पूरे सफ़र में इन्हें काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा। पहला प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए इन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा था। अब इनका अगला जो गोल है वो है ऐसे सोलर सॉल्यूशंस बनाना जो हर घर तक पहुंच सके और भारत को ज़्यादा ग्रीन और एनर्जी एफिशिएंट बना सके। इनका सपना बहुत साफ है और वो है सन टू एवरीवन। ये कहानी सिर्फ एक इनोवेशन की नहीं है बल्कि उस सोच की भी है जो कचरे को संसाधन और धूप को फ्यूचर की ताकत में बदलना जानती है। सो सच में ये काफ़ी हैरान करने वाला है कि भाई कोई शख्स चिप्स की पैकेट्स से कैसे सोलर टाइल बना सकता है। लेकिन कहते हैं कि भाई जब आप करने लग जाते हैं और जिस चीज़ में आप खुद पर यकीन करते हैं उस लाइन की चीज़ें, उससे फील्ड से जुड़ी हुई सारी बातें आप तक होने लग जाती है। सो फिलहाल शनि का ये इनोवेशन कैसा लगा जो कि सच में कहीं ना कहीं प्लास्टिक कचरे को यूटिलाइज करने का और साथ ही साथ सूरज को यानी कि सोलर के ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस करने का कहीं ना कहीं जो एक सल्यूशन है वो लेकर आ रहे हैं शनि लगातार। फिलहाल शनि को लेकर के आपका क्या है मानना, आप भी अपनी राय दे सकते हैं अपने मॉर्निंग वाले शो में। बट फिलहाल ये इनोवेशन मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा नया था, जब मैंने इस बारे में जाना मुझे लगा वाह प्लास्टिक के चिप्स की पैकेट्स से सोलर टाइल बनाने का आइडिया, माय गॉड काफ़ी एपिक है, काफ़ी ज़्यादा अलग है, और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा एपिक है कि आप खुद भी सोच रहे होंगे कि वाह क्या बात है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आज के बाद से हम लोग चिप्स के पैकेट जो हैं वो संभाल कर रखने लग जाए, है ना? और अगर रखेंगे तो क्या करने वाले हैं।

0: भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: One two ka four, four two ka one. My name is RJ Adnan. So, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में. आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम. ये है गोंडा शहर की धड़कन. और देखिए कुछ मैसेजेस और साथ ही साथ आपकी तरफ से आ गए हैं. यस, कंटेंट आया है. सो कंटेंट में किसने कहां से क्या भेजा ये आपको बताते हैं. लेट्स गो.
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान.

हाँ जी, तो देखिए हमारी प्रीति जी ने बहराइच से भेजा है और लिखती है टाइटल फिक्र सबकी। सबकी पसंद बनते बनते एक दिन मैं खुद को ही भूल गई। सबकी पसंद बनते बनते एक दिन मैं खुद को ही भूल गई। कभी किसी की खुशी के लिए चुप रही तो कभी किसी की नाराजगी से डर गई। सबका ख्याल रखी लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। अब समझ आया जो इंसान हर किसी के लिए जीता है वो अक्सर खुद के हिस्से की ज़िंदगी जीना भूल जाता है। जब वो इंसान अपनी ज़िंदगी ही नहीं जी पाता तो उसके सदव्यवहार सिर्फ नाम का ही रह जाता है लोगों के बीच। कितनी बड़ी बात कह दी आपने, और शायद ये फील करते हुए, दैट्स वेरी वेरी ग्रेट, बहुत डीप है लेकिन बहुत सच है, और ये आपकी नहीं बल्कि न जाने कितनों की कहानी, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने लिखा। कुछ मैसेजेस और आए हैं जिनको हम बता देते हैं। इरशाद, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड इसके बाद जो है इरफान शाह का मैसेज है, जहां बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए इरफान ने बताया। अक्षरा हैं, अनोखी शर्मा है, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त तक बने हुए हैं 89.6 एफएम के मॉर्निंग वाले शो में, और लगातार बातचीत जारी है, आपसे सुन रहे हैं, बातचीत हो रही है। सो आज का ये शो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, और हाँ ख्याल रखिएगा अपना, क्योंकि आपको हमारा ख्याल है, और स्पेशली मानसून के सीज़न में थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहिएगा, बीमारियाँ हावी होती है, लेकिन आप में है वो ताकत, आप में है वो जुनून कि आप सारी बीमारियों सारी परेशानियों से जीत जाने वाले हैं एक मुस्कुराहट दे करके। लेट्स गो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: राव की गूंज, राव की गूंज, राव की गूंज।
3: बरसों मेघा धड़ाके से, बुढ़िया मर गई छोके से। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे।
4: सिमी, ये क्या बच्ची बनी हो और ये क्या बोल रही हो?
3: अरे समता दी, बचपन में जब पानी बरसता था तो गांव में हम बहुत सारे कजिन्स थे। सब पानी में भीग कर यही बोलते थे। छोटे छोटे मेढक के बच्चे पकड़ते थे, कागज की नाव बनाते थे और मौसम की पहली बारिश देखकर बस बचपन ही याद आ गया।
4: सच में बचपन कितना प्यारा होता है। काश हम कभी बड़े ही ना होते। बारिश ने तो कितनी राहत दी है आपकी, तो इतनी गर्मी भी तो पड़ी है। भगवान करे अब कई दिन तक ऐसे ही पानी बरसता रहे। चलो स्टूडियो चलते हैं और किरण दीदी आ गई होंगी।

0: श्वेता, श्वेता।
1: अरे समता दी, मौसम का मजा ही नहीं लेने दे रही हैं। कितना प्यारा मौसम हो रहा है। याद कीजिए, अभी दो दिन पहले कितनी गर्मी पड़ रही थी, एसी भी ठंडक नहीं दे पा रही थी।
2: 100% सही कहा श्वेता तुमने, पर जब मौसम इतना लाजवाब हो तो जो लोकगीत हमने तैयार किया है ना, वही सुन लो।

0: वेरी गुड बबलू बेटा, तुम तो बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो। ऐसे ही अपने दोस्तों को समझाओ कि स्कूल जरूर जाएं। अच्छा बेटा बाय, हम लोग जल्दी ही गांव आएंगे।
1: अरे हरि ओम, तुम किससे बात कर रहे थे? और ये बताओ कि हमारे गांव की गूंज की टीम को आज कौन से गांव जाना है?
2: सिमी, अभी तो कहीं नहीं जा पाएंगे, गांव में तो बहुत पानी भर गया होगा। अरे कॉलेज में स्टेज के पास ही देख लो, 2 घंटे की बारिश में कितना पानी भर गया है।
3: पहले कॉलेज के पीछे एक तालाब था, अब उसे पाट कर सबने घर बना लिया है, पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है।
4: याद है 1 साल पहले जब बहुत बारिश हुई थी, तब कितने दिन तक कॉलेज में पानी भरा हुआ था? पीछे की लाइन के घरों में तो 1 महीने तक पानी भरा ही रहा, उन लोगों को किराए पर घर लेकर अलग रहना पड़ा।
0: याद है आप लोगों को, एक बबलू नाम का लड़का मिला था जब हम लोग रामपुर गए थे। वो बता रहा था कि वो रोज स्कूल जाता है, और वो ये भी बता रहा था कि गांव में पानी भर गया है, जिसकी वजह से वो अपने जूतों को नहीं पहन पा रहा है, और वो अपने जूतों को थैले में रखकर स्कूल में जाकर पहनता है।
2: हाउ स्वीट, कितनी परेशानी उठाकर गांव के बच्चे पढ़ाई करते हैं। क्या जलभराव का कोई समाधान नहीं है? क्या गांव की गूंज की टीम कुछ कर सकती है?
1: अरे क्यों नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें लोगों को जागरूक करना है कि अगर गांव में कोई नाली बनी है या घर से पानी निकलने के स्थान को फावड़ा लेकर साफ करें, जिससे जो मिट्टी पत्ती कूड़ा भर गया है वो साफ हो जाए और पानी आराम से निकलकर नदी तालाब या झील में चला जाए।
3: इसका समाधान बहुत ही जरूरी है, अभी तो बरसात शुरू ही हुई है, पूरे मॉनसून बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होगी, खेतों में पानी भरेगा, रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। किसानों को अपने जानवरों को जल भराव के कारण कई दिन पानी के अंदर ही बांधना पड़ता है।
2: अरे बस बस बस, पहले कुछ लोकगीत सुनकर रिचार्ज हो जाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे।

0: संतोष भैया की कड़क चाय और प्याज के पकोड़े के साथ किरण दीदी के मधुर गीतों ने हम सबको ताजगी दे दी है। कसम से मजा आ गया। अब नए जोश के साथ हमारी टीम दो भागों में बंट जाए और गांव में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं।
1: जी हाँ, हर गांव में एक सफाई कर्मी होता है, उसका सहयोग ले लेंगे और अगर नाली बनी है गांव में तो उसे साफ करवाएंगे। अगर नाली नहीं है और पानी रुक रहा है तो अभी टेम्परेरी वाला नाली खुदवा कर पोखर या तालाब से जोड़ देंगे।
2: अगर छोटे छोटे गड्ढे हों तो उसे बंद जरूर करवा देना चाहिए, नहीं तो बरसात के बाद वो मच्छर का गढ़ बन जाता है और बहुत ही बीमारी फैलती है।
3: जो पास का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, उनसे कहकर जहाँ गंदगी ज्यादा हो ब्लीचिंग पाउडर डलवाएं और छोटे छोटे गड्ढों में मच्छर की दवा का छिड़काव भी करवाएं।
1: कीचड़ में चलने से पैरों में बहुत इन्फेक्शन होते हैं, तो सभी को रटा दो कि जब भी बाहर से अंदर आए तो पानी से पैर को साफ कर लें और पैरों के बीच की उंगलियों को कॉटन या सूती कपड़े से सुखा लें।
0: विशेषकर बुजुर्गों का तो ध्यान जरूर रखना चाहिए, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर पैर में कोई घाव हो तो जरूर से उनके पैर में तेल और हल्दी लगाएं।
1: फिर से आप सभी से ये बता रहे हैं कि आसपास पानी न इकट्ठा होने दें, वो चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया का केंद्र होता है। अगर पानी में भीग गए हो तो तुरंत कपड़े बदलो और सूखे कपड़े पहनो, नहीं तो त्वचा की बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। पानी दूषित हो जाता है बरसात में तो पानी छान कर उबाल कर ठंडा करके पिएं।
2: हल्का खाना खाएं और बाहर के खाने से बचें। हाथ को जरूर धोएं, विटामिन सी का सेवन भी जरूर करें। बिजली के उपकरणों को गीले हाथ से ना छुएं, बहुत करंट आता है बारिश में, इसीलिए बच्चों को स्पेशली समझाएं कि सूखे हाथ से ही प्लग ऑन करें।
1: इतने टिप्स दे दिए कि सब ऊपर से जा रहा है। अब सबसे पहले किरण दीदी के गीत, फिर आगे बात करेंगे।

0: गांव की गूंज की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, इसीलिए हम लोगों को बहुत काम करना है।
1: सही कह रही हैं किरण दीदी, पर श्वेता मैम की बात भी सही है, आपके गानों के बिना हम लोग को एनर्जी ही नहीं मिलती।
2: अगर किसी के घर में पानी निकलने का कोई भी चारा ना हो तो वहाँ के प्रधान और सेक्रेटरी से बात करके सोखता बनवाएं। सोखते से दो फायदे होते हैं, एक तो वाटर लॉगिंग नहीं होती है, दूसरा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है।
3: पर एक चीज जरूर ध्यान देना सब लोग, हर घर में पूछती रहना कि पानी कैसे निकालते हो। कुछ लोगों ने अपने पुराने जो कुएं थे उसमें नाली जोड़ दी गई, और कुछ लोगों ने तो बोरिंग करा के सीधे पाइप नाली ही जोड़ दी है, और बरसात का पानी उससे जमीन के नीचे चला जाता है।
0: अरे बिना फिल्टर हुए पानी नीचे जा रहा है तो ये तो बहुत बुरा है, जमीन के नीचे का पानी प्रदूषित हो रहा है। गांव के लोगों को समझाना पड़ेगा कि ऐसे डायरेक्ट बरसात के पानी को नीचे ना जाने दें।
2: गांव में इसीलिए लोगों को पेट की समस्या और लीवर की समस्या सबसे ज्यादा होती है।
1: सोखता जब बनाते हैं तो उसमें कंक्रीट की एक परत फिर एक परत बालू की बिछाते हैं, जिससे पानी फिल्टर होकर नीचे चला जाए, और जाली भी लगाते हैं।
2: आपको पता है क्या, हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि सोखता कैसे बनवाएं और बरसाती पानी या नाली का पानी डायरेक्ट जाने से क्या क्या परेशानी हो जाती है। ये आप लोगों के मोबाइल में भेज रहे हैं और एक एक पेन ड्राइव भी दे रहे हैं, लोगों को जरूर दिखाकर समझा दीजिएगा।
3: जब तक वीडियो सिमी भेज रही है, संतोष भैया मसाला चाय पिला दीजिए। किरण दी आप लोकगीत सुना दीजिए।
4: भोरवा जय बैगवनवा हमारे सखी।

0: चलिए, पानी लगभग रुक गया है। हरिओम ने गांव की लिस्ट दे दी है। हम ए टीम में हैं। हम लोगों का पहला गांव जयनगरा है।
1: एक जरूरी बात तो हम लोगों ने की ही नहीं, अगर ग्रामीण भाइयों में से किसी के घर के आसपास दिखे कि जानवरों के बैठने की जगह पर पानी भरा है और वो लोग पशुओं को खाना भी वहीं पर दे रहे हैं, तो उनसे कहिएगा कि जानवरों को सड़क पर बांधें।
2: हाँ, सड़कें ऊंची होती हैं और आजकल तो हर गांव में पनकी सड़कें हैं, तो अपने जानवरों को वहीं बांधें और वहीं उनको खाना भी दें।
0: चलिए, गांव की गूंज की टीम कृष्ण कुमार भैया और ननकू भैया गाड़ी लेकर आ गए हैं। जानते हो, हमारी टीम में किरण दीदी हैं, तो रास्ते में तो खूब रौनक रहेगी।
3: यह तो चीटिंग हुई। एक शर्त पर हम लोग किरण दी को तुम लोगों के साथ जाने देंगे, जब किरण दी घंटी बजे टनाटन वाला गाना सुना कर जाएंगी।

0: बरसात में होने वाले परेशानी से गांव के लोगों को जागृत करने के लिए गांव की गूंज की टीम निकल चली है। जल्दी आपके गांव में मिलते हैं।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: हुक्कई से खेलन जइबो,

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ओ आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

हां जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन. कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, आदाब, नमस्ते, हाय, हेलो एंड स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम यानी कि अपने वाले प्रोग्राम मंडे स्पेशल आफ्टरनून शो, आपका अपना ज्ञानस्थली लाइव. आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी अपनी आरजी मौजूद हैं आप सभी के साथ लेकर के आपके ज्ञानसी लाइफ में. आज कुछ बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मिस्टीरियस, एज यूजुअल हम आते हैं और आपके लिए मंडे में कुछ यूनिक लेकर आते हैं. हालांकि शुरू तो मंडे एम से होता है लेकिन हम यू से लेकर आते हैं बिकॉज हम भी यू हैं और आप ऑफकोर्स यूनिक हैं. तो भाई, इस यूनिक चीज़ों के दौरान आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल लॉज को सुनने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं. एक्चुअली ऐसे होश नहीं उड़ेंगे लेकिन कुछ मिस्टीरियस चीजें जो हमें बेहद पसंद आती हैं उनमें से कुछ होने वाला है आज आपके लिए. कुछ ऐसे इफेक्ट, कुछ ऐसे लॉज जो हमारे बहुत महान महान लोग देकर चले गए हैं और उनका मानना है कि अगर कहीं तितली ने पंख फड़फड़ाया तो हो सकता है उसका असर किसी और दूसरे कोने में बैठे किसी दूसरे इंसान पर पड़ जाए. अब ये कैसे है? एक छोटी सी तितली कैसे आफ्टर ऑल एक जगह से बदल सकती है, दूसरे के सिचुएशंस को बदल सकती है? बस इसी को कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट. यही मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे लॉज को, मर्फी लॉ, बटरफ्लाई इफेक्ट, मंडेला इफेक्ट, नहीं जानी किन किन नामों से जाना जाता है, वो क्या है, क्यों है और उनको समझकर आप कैसे अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं तो बात करेंगे. लेकिन उससे पहले इन्जॉय करेंगे एक छोटा सा गाना शांतनु की आवाज़ में, तारा रमपम से, हे शोना. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते इस कार्य के आसपास. अब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.

हाँ जी, और ये जो गाना आप एंजॉय कर रहे हैं ना, तुझे इतना तुम्हें प्यार करूं यारा, किसी ने भी ना किया। अगर सोचिए, अगर आप वो पहली मुलाकात ना होती, या आप पहले बार हाय नहीं कहते, या आपकी पहली बात नहीं होती, या आप एक दूसरे का नाम नहीं पूछते, तो क्या ये गाना अगर आपकी सिचुएशन पर कहीं भी फिट हो रहा है, क्या ये होता? क्या वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में आज है, क्या वो वहीं होता? आपने जो भी चीज़ें अभी तक की हैं, भले वो एक छोटी सी, एक सेकंड की, एक मिनट की, एक छोटा सा रिप्लाई हो, किसी से गुस्से में बात ना करना हो, गुस्से में फ़ोन कट कर देना हो, और अचानक से कुछ बहुत बड़ा तूफान सामने आ गया, और आपको लगता है यार इतनी छोटी सी बात पर इतना कुछ कैसे हो सकता है? आपको नहीं पता कि अमेरिका में बैठा हुआ शख्स आपकी ज़िंदगी किस तरह से इतना बदल सकता है। हो सकता है एक रैंडम मैसेज आया हो आज आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, और आपने उस रैंडम मैसेज के हाय को सिर्फ एक छोटा सा हाय लिखकर भेज दिया, और आपको नहीं पता आपका ये छोटा सा हाय आपकी पूरी कायनात बदलने के लिए काफ़ी है। कैसे कैसे, चलिए बता देते हैं आपको। लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले शो ज्ञान असली लाइफ में। मैं हूं आपकी अपनी आर सुनती, लेकर आई हूं आपके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट्स एंड कुछ लॉस के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, प्लस माइंड ब्लोइंग है। स्पेशली द बटरफ्लाई इफेक्ट, जो मेरा पसंदीदा है, क्योंकि ये बताता है कि अगर छोटी सी तितली किसी दूर कोने में, किसी देश में पंख फड़फड़ाती है, तो अगले कोने में कहीं तूफान आ सकता है। बट ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है कि एक छोटी सी तितली के पंख फड़फड़ाने से तूफान कैसे आ रहा है, कैसे ये हवा में बवंडर बन रहा है। तो इसके पीछे बहुत ही खूबसूरत सा लॉजिक है, और लॉजिक वो है कि आपका एक छोटा सा एक्शन, यानी आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा काम, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव लेकर आता है। जी हाँ, कभी आपने नोटिस किया है कि गुस्सा जो सिर्फ कुछ सेकंड का था, कुछ मिनटों का था, बस उस सेकंड या मिनटों ने आपके सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया हो, या आप किसी से यूं ही बैठे हैं और आपका दिन बहुत अच्छा गया है इसलिए आप बहुत खुश हैं, और आप कहीं बैठे हैं किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में, बस आपने किसी इंसान को देख के एक स्माइल पास कर दी है और बस वहीं से आपका कोई रिश्ता तैयार हो गया हो। आप जब स्कूल गए थे, आपको किसी से कोई मतलब नहीं था, कुछ नहीं पता था आपको ये कौन है कौन नहीं है, बट आपने किसी से बस जाके हाय कह दिया, और आज वो 7 साल के बाद भी आपका बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है। यही तो है एक बटरफ्लाई इफेक्ट, जो आपके छोटे से छोटे एक्शन को बताता है कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं, भले वो 0.1 सेकंड की हो या उसकी कीमत ही इतनी हो, वो बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में डाल सकता है। लेकिन ये आया कहाँ से, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। एडवर्ड लॉरेंस, ये नाम आई थिंक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये वही इंसान है जिसने बटरफ्लाई इफेक्ट बताया था। इन्होंने बताया कि बटरफ्लाई इफेक्ट जैसी कोई चीज़ होती है। क्यों भैया? ये मौसम के वैज्ञानिक थे, और ये मौसम के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और इनको लगा था कि जब बहुत अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स आ जाएंगे, जब एडवांस कंप्यूटर्स आ जाएंगे, तो हम मौसम के बारे में झटपट बता देंगे। बट ऐसा हो नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि भैया मौसम आज हम बता रहे हैं कि 3 घंटे में बारिश होगी, लेकिन 3 घंटे में बारिश ना होने की जगह पर सूरज निकल आता है, और हम परेशान रहते हैं कि मैसेज में तो आया था बारिश होगी, बिजली गिरेगी, बादल फटवट जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। क्या ये सब झूठ झूठ मैसेजेस किए जा रहे हैं? क्या ये सारे फेक होते हैं? क्या स्कैम्स होते हैं? क्या इन लोग को इतना भी नहीं पता होता है? बताते हैं कि मौसम आज सुनहरा रहेगा, खिला खिला रहेगा, अचानक से बादलों पता नहीं कहाँ से चले आ रहे हैं, उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते काले काले बादल हो चुके हैं। मम्मी कपड़े सुखाने छत पर गई थी ये सोच कर कि आज तो बढ़िया धूप निकलेगी, मौसम विभाग ने बताया है। मौसम विभाग पे यकीन करके वो चली तो गई, और वहां पर जाकर देख रही है तो घनघोर बादल छाए हैं, हवाएं चल रही हैं, और हो सकता है बारिश भी हो जाए। अब इस बात से क्या मौसम विभाग झूठा हो गया? नहीं, मौसम विभाग ने बिल्कुल सही गणना की थी, बट क्योंकि इसकी सटीक गणना करना ही मुश्किल था उस वक्त में भी, 1961 कंप्यूटर पर मौसम का एक मॉडल चल रहा था, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा डेटा, उसके अंदर एक छोटा सा बदलाव अगर कोई इंसान कर देता है या गलती से भी हो जाता है, तो कुछ महीनों के मौसम का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, प्लस उसका परिणाम यानी कि उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत तेजी से बदल जाता है। अगर किसी ने 0.011 की जगह पर 0.001 कर दिया है, तो उसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों के, हफ्तों के, महीनों की जो आप मौसम की गणना करने जा रहे थे ना, वो बदल चुका है। अब वो मौसम वैसा नहीं होने वाला है जैसा हमने
सोचा हुआ था ये जैसा हो सकता है, यानी कि एक छोटी सी गलती महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है, एक छोटा सा मुस्कुराना आपकी किस्मत बदल सकता है, हो सकता है कोई रिश्ता तैयार हो जाए, हो सकता है कुछ और भी हो जाए, हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, इसलिए आपका छोटा छोटा एक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इसी चीज़ को समझाते हुए जब इन्होंने नोटिस किया कि छोटे से मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में एक इक्वेशन में बस एक अलग से जीरो लग गया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डेटा बदल चुका था, पूरा का पूरा मौसम विभाग का जो भी हम बताने वाले थे वो पूरी रिपोर्ट बदल चुकी थी, और उन्हें पता चला कि एक छोटे से बदलाव से बहुत बड़े बड़े अंतर पैदा हो सकते हैं। शुरुआत में लॉरेंस ने इसके उदाहरण में समुद्री पक्षी जिसका नाम था सीगुल, उसका इस्तेमाल भी किया था। इसके बाद 1972 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके एक साथी ने बताया, एक पोइटिक वे में अपना सुझाव भी सामने रखा था, और जाके आगे बढ़ते बढ़ते इस पे बात करते करते, रिसर्च करते करते, समझते समझते ये बन चुका था द बटरफ्लाई इफेक्ट, यानी कि एक छोटी सी तितली, आपको भी पता है एक छोटी सी तितली आपके पास से भी उड़ के चली जाती है ना तो आपका ध्यान नहीं जाता क्योंकि हवा उसके पंखों की नहीं लगती है, बट द बटरफ्लाई इफेक्ट ये कहता है कि एक छोटी सी तितली का पंख फड़फड़ाना भी कहीं दूसरे कोने में किसी और देश में तूफान ज़रूर ला रहा होगा। यानी कि एक छोटा सा काम, एक छोटा सा एक्शन, भले ही वो आप गुस्से में ले रहे हो, आप प्यार में ले रहे हो, आप अकड़ में ले रहे हो, ईगो में ले रहे हो, या आपने यूं ही मजाक मजाक में कुछ बोल दिया है, आपकी सालों की दोस्ती ख़राब करने, आपके नए काम को बनाने, आपके किसी दूर रिश्तेदार को मनाने और किसी पास बैठे हुए इंसान को ज़िंदगी भर के लिए भगाने के लिए काफ़ी होते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप कुछ भी करने जाएं ना तो ये ज़रूर सोच समझ लें कि आप जो करने वाले हो वो भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है। हो सकता है आज आप सुबह अपने घर में अपनी मम्मी से, अपनी बीवी से, अपने पति से, अपने भाई से लड़कर आए हो किसी बात पर लेकर के, भले ही वो बात कितनी ही छोटी क्यों ना रही हो, और आपने उसी बात बात में कहीं ये बोल दिया कि मैंने थोड़ी कहा था तुमसे, बस एक ये छोटी सी लाइन हो सकता है उनके सारे एफर्ट्स को ख़त्म कर चुके। इसके अलावा हो सकता है वो आगे से एफर्ट्स करने को ही तैयार ना होगी, जब तुमने कहा नहीं तो मैं करूँ क्यों, और आपको लगेगा यार मैंने इतना भी तो कुछ नहीं कहा था, एक छोटी सी तो लाइन थी और हमने ऐसे तो बोल दिया था गुस्से गुस्से में, बट उसका इम्पैक्ट कितना भारी पड़ता है, इसका असर तब पता चलता है जब ये चीज़ हो चुकी होती है घर पे, पूरा तूफान आ करके सब कुछ फैल चुका होता है। बताइए आपको कैसा लगा ये छोटा सा बटरफ्लाई इफेक्ट, जो मेरा बेहद ही पसंदीदा इफेक्ट था, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि आपके छोटे छोटे एक्शंस कितने बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े अंतरों को लेकर बीच में आ जाते हैं, प्लस कितनी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को बना सकते हैं। चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और हाँ आप एंजॉय कीजिए जिस गाने को हमने बीच में ही रोक दिया था, मेड इन चाइना से बालम, स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

हाँ जी, तो अनुराधा श्रीराम की आवाज में आपने एंजॉय किया। आ जाइए, अभी जाइए। और कहाँ हैं आप फिलहाल? दोस्तों, आपको पता है कोई चीज गलत होने वाली हो तो वो गलत ही हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है कि कोई काम हम करने जा रहे हैं और लगता है कि भैया ये काम सही नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, और लो वो गलत हो गया। या फिर आप कोई सामान लेकर चल रहे हो, बहुत सारा सामान आपने हाथ में पकड़ा है और आप सीढ़ियों से उतर रहे हो और भगवान से बस यही दुआ करो, भगवान गिरना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं, और नीचे गया है सामान, आप बच जाते हैं पर सामान चला जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, एक लॉ है जो काम करता है। कभी आपने देखा है कि जिस दिन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है और हम रात में सोच के सोते हैं कि कल सुबह जल्दी उठना है, उसी दिन हम लेट हो रहे होते हैं? या फिर जिस दिन आप लेट उठते हैं उसी दिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होती है और आपको भागना होता है? जिस दिन आप लेट हो रहे होते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ट्रैफिक ना मिले, डेफिनेटली उसी दिन आपको ट्रैफिक मिलता है। क्यों? वैसे सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है, क्या पहले से ही सब प्री प्लान्ड है कि जो हम सोचेंगे उसका उल्टा ही होने वाला है? जिंदगी में कुछ तो परफेक्ट चले यार। जब चाहते हैं कि आज ट्रैफिक मिल जाए तब तो कोई ट्रैफिक नहीं मिलता, जब आज चाहते हैं कि घर पे कोई ना आए तब तो सब टपक जाते हैं, पर जब चाहते हैं कि ट्रैफिक ना मिले, सब कुछ क्लियर रहे, उसी दिन दुनिया भर का ट्रैफिक मिल जाता है। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है, जब भी मुझे अपने आफ्टरनून शो के लिए भागना होता है और मैं सोचती हूँ भैया आज ट्रैफिक नहीं हो, ट्रैफिक नहीं हो, बड़गांव पुलिस चौकी पर डेफिनेटली ट्रैफिक मिलेगा, और जिस दिन बड़गांव पुलिस चौकी पर नहीं मिलता उस दिन जिला अस्पताल पर मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। ट्रैफिक ने मुझे 15-20 मिनट एक जगह पर रोकना ही है तो रोकना है, इसीलिए मैं घर से निकलती हूँ तो ये सोचे बिना निकल जाती हूँ कि बोलूँगी ही नहीं कि ट्रैफिक ना मिले, मिलने दो, देखा जाएगा जो होगा, और जो होता है फिर वो देखा नहीं जाता मुझसे, वो अलग बात है, बट हाँ कोशिश यही रहती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है, इसको हम कहते हैं द मर्फी लॉ। ये वायुसेना के एक इंजीनियर कैप्टन एडवर्ड ए मर्फी जूनियर ने बताया था 1949 में। उन्होंने कहा था कि भैया अगर कुछ गलत तो हो सकता है तो ये डेफिनेटली गलत ही होगा। आप चाहे दुनिया भर में कुछ भी कर लो, कितनी मन्नतें मांग लो, दुआएं मांग लो, भगवान के हाथ पैर जोड़ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके दिमाग को लगता है कि ये चीज़ गलत होने वाली है या आप लेट होने वाले हो तो डेफिनेटली आप लेट होगे। ट्रैफिक नहीं होगा तो ऑटो नहीं मिलेगा, हो सकता है आपकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाए, अगर आपका कुछ इलेक्ट्रॉनिक है तो उसमें कोई डिफेक्ट आ सकता है, गाड़ी पंचर हो जाएगी, लेकिन आप टाइम से नहीं पहुंचेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप घर से एक माइंड पर लेकर चल रहे होते कि यार लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, और उसी दिन आप डेफिनेटली लेट होते ही हो। या तो आप ऑन टाइम पहुंचोगे, और एज यूजुअल ऑन टाइम मतलब आप लेट हैं ऐसा काउंट कर लिया जाता है। भैया ये बात उन्होंने बताई थी, उनका उद्देश्य बस इतना सा था, उन्होंने जब आपके दिमाग को जाना, जब आपके शरीर को जाना, तब उन्हें लगा कि भैया उनके अंदर ना एक जी फोर्स काम करता है, एक अचानक लगने वाला झटका होता है आपके। इसके लिए उन्होंने एक रॉकेट भी छोड़ा था, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी बनाई गई थी जिसको रॉकेट सेलज नाम दिया गया था, जिसमें मानव शरीर पर दबाव जो पड़ता है वो कितना पड़ता है उसको नापा जा रहा था। तो 60 इलेक्ट्रॉनिक सेंसर उसमें लगाए गए थे सिर्फ ये दबाव नापने के लिए कि जो फोर्स लग रहा है मर्फी लॉ में वो क्या है। और ये बात उन्होंने वहाँ से चेक की थी। प्रयोग के दौरान एक टेक्नीशियन ने बताया कि 16 सेंसरों का बिल्कुल उल्टा गलत तरीके से फिट कर दिया गया था। अब ये बात इसलिए कंफर्म थी क्योंकि जब उन्होंने चेक किया था और उनको अंदर डर था कि ये चीज़ें उल्टी ही होने वाली हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बवाल हम कर ही देंगे, हो सकता है ये कहीं ना कहीं फेल हो जाए। और ये बात जब सामने आई कि जब उस सेंसर को जो ह्यूमन शरीर पर लगने वाले यानी कि इंसानी शरीर पर लगने वाले दबाव को जाकर चेक करने वाला था, उसके सारे के सारे सेंसर से उल्टे थे, तो उनकी जो इतनी मेहनत थी जिस पे वो सालों की मेहनत लगा चुके थे, सालों की मेहनत कर चुके थे, वो धरी की धरी रहेगी, वो ख़राब हो चुकी थी। और यहीं सर उन्होंने डिज़ाइन कर दिया द मर्फी लॉ, अपने नाम पर ही एक लॉ तैयार किया और कहा अगर आपके दिमाग को लगता है कोई चीज़ गलत होने वाली है तो वह डेफिनेटली गलत होगी, उसको वहीं पर या तो छोड़ दो या तो रुक जाओ। इसको कई लोग कहते हैं कि आप मैनिफेस्ट कर लेते हो चीज़ों को, यानी कि आपका जो पीछे का दिमाग है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो इन चीज़ों को पहले से ही मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। अगर आपको लगता है कि आप गिरोगे सीढ़ियों चलते टाइम, तो मैं भी आप गिरोगे ही गिरोगे, आपके दिमाग को पता नहीं क्यों लेकिन पहले से ही आभास होने लग जाता है। और इसी चीज़ को समझाते हुए उन्होंने द मर्फी लॉ तैयार कर दिया।
अब आप बताइए आपके साथ होता है? तो बटरफ्लाई इफेक्ट जो हमने बात की, जिसमें एक छोटा सा एक्शन आपकी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बदल सकता है, वहीं पर द मर्फी लॉ जो पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि अगर किसी चीज़ के गलत होने की संभावना आपके दिमाग के अंदर है तो 90% चांस है कि वो चीज़ गलत ही होगी। इसीलिए लोग कहते हैं, दादी नानी कहा करती थी कि किसी भी काम को करने से पहले या घर से निकलने से पहले कभी भी उल्टा नहीं सोचना। बच्चे पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स को छोड़ के पॉजिटिव ही सोचना चाहिए हर जगह पर। अगर आप निगेटिव सोचोगे तो आपके साथ निगेटिव होगा, और यही निगेटिव जो होता है आपके साथ उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ आइडिया, एज अ यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल लॉ, मर्फी लॉ के नाम से। तो अगर आपके साथ तो कुछ कभी गलत होता है ना, तो मुस्कुराइए और कहिए कि आज मर्फी भाई साहब बहुत एक्टिव चल रहे हैं मेरे साथ, शनि राहु भारी नहीं हो रहा है, सिर्फ मर्फी लॉ हमारे साथ थोड़ा एक्टिव चल रहा है। और ऐसा दिखाया भी गया है, एक आपको कार्टून याद होगा जो मर्फी लॉ के ऊपर ही आता था, और उसमें जो लड़का था जो जहां भी जाता था उसके साथ उल्टा ही होता था। अगर वो कहीं गया है तो डेफिनेटली वहां कुछ ना कुछ तूफान आएगा, कुछ ना कुछ टूटेगा, कुछ ना कुछ फूटेगा। होता जरूर कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे उसके फ्रेंड परेशान थे, इवन वो पार्टीज में बुलाना भी मना करते, तुम पार्टी में आओगे मतलब बवाल करोगे। ये वहीं से है। तो अगली बार याद कीजिएगा, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो ये मत कहिएगा मेरी फूटी किस्मत ही ऐसी थी, ना ना ना, आपका मर्फी लॉ थोड़ा स्ट्रांग चल रहा है। चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और एंजॉय कीजिए एक बढ़िया सा खूबसूरत पंजाबी सॉन्ग सतिंदर की आवाज़ में, उदारिया। स्टे ट्यून्ड।

हाँ हाँ पता है, आप भी उन्हीं में से एक हैं जो ऐसी ही बातें किया करते हैं। हूँ मैं खुद से खफा, क्यों ना मैं तुझसे पहले मिला। ये सब करने से अच्छा है ना कि अपने अपने अपने प्रॉब्लम्स को उठाओ, एक पन्ना उठाओ, एक पेन उठाओ, उस पर लिखो और देखो आपकी प्रॉब्लम में आपका सोल्यूशन भी है, आपको मिल जाएगा जवाब। ये पूछने से अच्छा है किसी और से कि मैं खुद से खफा हूँ, मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। यही चीज़ अगर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे ना तो आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि पहले मिल जाते तो आज जो आप तारीफों के पुल बांध रहे हैं वो कैसे बांधते जनाब, बताइए तो ज़रा। इसी को कहते हैं किनलिन लॉ। जी हाँ, ये वो लॉ है जो कहता है सल्यूशन आपके क्वेश्चन में है। वो अलग बात है कि आपने क्वेश्चन को कभी ठीक से पढ़ा ही नहीं है। आपके टीचर्स भी आपको समझाते हैं ना कि देखो बेटा बाइबा में जा रहे हो, कोई भी चीज़ बोलने वाले हो या बताने वाले हो या बोर्ड एग्ज़ाम देने ही क्यों ना जा रहे हो, एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को चार दफ़ा ज़रूर पढ़ना। क्वेश्चन में जवाब छुपा होता है, और हम जैसे जीनियस इंसान आधे क्वेश्चन में से ही आंसर निकाल लिया करते थे, बाकी चार लाइन जो एक्स्ट्रा मैम लिखवाती थी वो याद कर लिया करते थे, क्योंकि इतना लंबा कौन याद करेगा। जब आगे लिखा हुआ है बस जहाँ से बिकॉज लग जाता था मैं बस वहीं से आंसर याद करती थी, उससे पहले पूरा क्वेश्चन से उठाया जा रहा था। और यही आपका किनलिन लॉ भी कहता है। जी हाँ, किनलिन लॉ जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब का लॉ है, और वो इस तरह से है कि अगर आप अपनी समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो अपनी समस्या को एक पेन और पेपर पर लिख डालिए। पेन लीजिए, अपनी समस्या को एक पेपर पर लिख डालिए और उसको ज़रा देखिए गौर से। और आप लिखते जैसे ही जाएंगे ना, और जब तक आपका फुल स्टॉप नहीं आ जाता, जब तक आपका आखिरी शब्द नहीं आ जाता, तब तक आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। और लिखते लिखते लिखते लिखते आपको समझ में आएगा कि अरे जवाब तो सामने ही था यार, हमने राई का पहाड़ बना रखा था, बूंद का सागर बना रखा था, क्या क्या नहीं कर रखा था, ये सारी चीज़ें तो हम पहले से उल्टी उल्टी करते आ रहे थे, लेकिन जवाब तो यही सामने ही रखा हुआ था। और जिस चीज़ का आपको सल्यूशन ना मिले, यकीनन उसका सल्यूशन है ही नहीं, वो प्रॉब्लम भी नहीं है, उसको वहीं पे वैसे ही तथा तुरंत छोड़ दो, कह दो बेटा बेटा तथा अस्तु तुम यहीं बैठो, हम जाता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम तुम नहीं हम हैं, हम यहाँ रुके हैं, यही मेरी गलती है और इसलिए मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ, बस यही कहना होता है आपको। पता नहीं क्यों हम दुनिया भर की टेंशन भी खोपड़ी पे लेके चल रहे होते हैं, जैसे कि अगर हमने सोचना बंद कर दिया तो ब्रह्मांड घूमना बंद कर देगा, पृथ्वी चक्कर लगाना बंद कर देगी, सूरज पीले से सफ़ेद हो जाएगा, एक्चुअली वो सफ़ेद ही होता है, ठीक है, बाकी दिल धड़कना बंद हो जाएगा, हवाएं चलना बंद हो जाएंगी, और इसीलिए हम पूरी दुनिया का भार अपने सर पे लेके चल रहे होते हैं। फिर कहते हैं मेरी ज़िंदगी बहुत टफ है दोस्तों, हालांकि होती है टफ, आई नो वेरी वेल की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस उतार और चढ़ाव में अगर आप चढ़ाव चढ़ाव देखते जाएँ और उतार उतार को लिखते जाएँ पेपर में, तो डेफिनेटली आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बहुत तेज़ी से मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी भी काम को बहुत सही तरीके से करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पूरी दुनिया से पूछ डाला है और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब बस इतना है कि सोल्यूशन आपके अंदर है, बस आपने अभी तक देखा नहीं है। इसीलिए समस्या में ही समाधान है, ये लाइन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रॉब्लम में ही आंसर है, सवाल में ही जवाब है, बस ध्यान से सुनने की देर होती है, उसे देखने की देर होती है। और किनलिन लॉ यही कहता है कि अगर आपके पास कोई समस्या है तो समाधान भी आप ही के पास है, उसे दुनिया भर में ढूंढना बंद करो, वो कहीं नहीं मिलेगा, बस उस समस्या को एक बार गौर से देखो, क्या पता उसका जवाब आपकी आंखों के सामने हो, बट आपने अपने गुस्से, अपने ईगो, अपनी अकड़ के चक्कर में उस जवाब को ही ब्लर कर रखा है, बाकी पूरी दुनिया पे आपका फोकस चल रहा है, जैसे कि हमारे कैमरे के साथ होता है, हमें एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर जब फोकस करना होता है और वो बहुत छोटी सी होती है तो हमारा कैमरा उस चीज़ को छोड़कर पूरे बैकग्राउंड पे फोकस करता है, लेकिन वहाँ पर फोकस नहीं करता, बड़म ज़बरदस्ती उस पर फोकस डलवा देते हैं। किनलिन लॉ भी यही कहता है कि आपके पास समस्या है, पूरी दुनिया जहान पे आपका फोकस है उसको उठाकर एक पेपर पे लिखो, आपका फोकस सीधे ज़बरदस्ती उसी समाधान पर आएगा, उसी सोल्यूशन पर आएगा जिसे आप अभी तक मिस कर रहे थे। तो अब आप बताइए कैसे लगे ये तीन लॉ। यूं तो कहते हैं कि यूनिवर्स के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो आपको समझाने हैं, मुझे बहुत सारे लॉज बाकी हैं, लेकिन ये तीन जो मेजर मैंने आज आपको बताए हैं, इनमें से आपका पसंदीदा कौन सा है? आज का शो आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, और हम चलते हैं हमारे चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस को देखने। तो सबसे पहले मैसेज जो आज के प्रोग्राम में आया था वो था महेंद्र दीपन जी का, राजस्थान, और आज मुझे याद है भाई साहब सूरत में है।
आई थिंक अब मैंने सही बोला होगा। और लिख रहे हैं उन्नति मैम, बटरफ्लाई इफेक्ट वाली जानकारी बहुत ही कमाल की थी, ये सुनकर समझ आया कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी कितना बड़ा असर रख सकती हैं। इतनी बेहतरीन और नई बातें शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी छोटी छोटी कोशिशें बहुत बड़ा बड़ा काम करती हैं। वो अलग बात है कि वक्त रहते या फिर समय के अंदर हमें नहीं दिखता, थोड़ा दूर जाकर दिखाई पड़ता है। एंड थैंक यू सो मच। और मेरा मानना ये है कि सिर्फ साइंस नहीं है, मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ साइंस नहीं है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी लागू होता है। हमारी छोटी सी मदद, मीठी बोली या छोटा सा फैसला भी किसी की दुनिया बदल सकता है। एंड एक्चुअल में ये पॉइंट बिल्कुल सही है और यही आपकी ज़िंदगी का बटरफ्लाई इफेक्ट है, यानी कि वो तितली वाला इफेक्ट कि आपने किसी की छोटी सी मदद की है, किसी का दिन ख़राब गया है और आपका दिन अच्छा गया है और आपने बस उससे इतना पूछ लिया है, हाँ जी भैया कैसा था आपका दिन, और उसने आपको अपने पूरे दिन की कहानी सुना दी। यकीन मानिए उसके पूरे दिन का जो भी स्ट्रेस और टेंशन उसके दिमाग में अभी तक चल रही थी वो कम हो जाती है, और हो सकता है आगे आने वाले कुछ सालों तक वो आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनने वाला है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पास एक सच्चा मित्र है। आपने कुछ कहा तो था नहीं, सिर्फ एक छोटी सी लाइन पूछी थी कि कैसा गया तुम्हारा दिन, समझ गए ना, इसी को कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। एंड उन्नति जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून, ज्ञान ही विज्ञान है, लिखा है हमारे धर्मेंद्र मोहन जी ने आवाज़ विकास से, आपका स्वागत करते हैं ज्ञान सी लाइफ में। एंड ओके सानू, गाना बजा के मेरा दिल जिद्दी सी, ओ तो भैया ये गाना बजाना है क्या मुझे बोला। आइए चलते हैं हमारे अगले कमेंट की तरफ, और वो है कि उन्नति मैम जी, तितली के फड़फड़ाने से तूफान आए ना आए लेकिन सब गलत तो होगा, सोचने से मन में तूफान ज़रूर आ जाता है, ऐसी ही साइकोलॉजी में रिवर्स मैनिफेस्टेशन कहते हैं। क्या गजब टॉपिक छेड़ा है आपने आज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मन को जैसा संचालित करेंगे वैसा ही संचालित मन आपको करेगा, क्या बात है भाई, बहुत ही आसान बहुत ही सरल शब्दों में हमारे धर्मेंद्र मोहन जी ने आपको बता दिया, जिसको मैं अभी तक आपको आती आ रही थी द मर्फी लॉ के नाम से, वो हमारे धर्मेंद्र मोहन जी ने एक छोटी सी लाइन में कह दिया। एंड हमारे साथ हमारी प्यारी सी एक और लिसनर जुड़ गई हैं, लिख रही हैं नमस्कार एवरीवन, हिचकी आई और मैं चली आई, तो हम आपको याद कर रहे थे तो हिचकी कैसी नहीं आती, चलिए आपका भी स्वागत करते हैं। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, इससे पहले कि बटरफ्लाई इफेक्ट हम पर लग जाए और मेरा 2 मिनट लेट होने से ज़्यादा आपका कोई और प्रोग्राम छूट जाए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, कल मिलेंगे आपसे लेकर के बेहतरीन सी बढ़िया सी कहानी, सुनना मत भूलिएगा, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं ज्ञान सी लाइव अपनी आज के साथ 89.6 FM, यही गोना शहर की धड़कन पर। आपका अगला प्रोग्राम है सिहतिया सिंह, स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखिए, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी, हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। 89.6 FM पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया की और उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और किन गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर इस उपचार पर विचार करते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद हैं सेहतिया सिंह जी और हमारी टीकन भाभी। सेहतिया सिंह जी, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में आपने हल्के, मध्यम और गंभीर एनीमिया का जिक्र किया था, एक बार फिर सरल भाषा में समझाइए उसी प्रश्न को।
1: जब खून की जांच में हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो इसे मध्यम एनीमिया कहा जाता है और 7 ग्राम से कम हो तो यह गंभीर एनीमिया माना जाता है।
0: यानी कि जितना कम हीमोग्लोबिन उतनी ज्यादा चिंता।
1: हाँ, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों पर पड़ सकता है।
0: तो क्या मध्यम और गंभीर एनीमिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है।
0: दोस्तों, तो अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं।
2: ये कहानी है सुनीता की। सुनीता 7वें महीने की गर्भवती थी। कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आते थे। थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलने लगती थी। घर का काम भी बड़ी मुश्किल से होने लगा था। घर वाले सोचते थे कि गर्भावस्था में तो ऐसा होता ही है, लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच हुई। रिपोर्ट में पता चला कि उसे मध्यम एनीमिया है।
0: अच्छा, फिर क्या हुआ?
2: स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझा गया, आगे की सलाह दी गई, परिवार को भी बताया गया कि ये केवल कमजोरी नहीं बल्कि इलाज की जरूरत वाली स्थिति है। यही वजह है कि नियमित जांच बहुत जरूरी है।
0: सेहतिया भैया, अगर किसी गर्भवती महिला में मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाता है तो डॉक्टर किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देता है?
1: डॉक्टर पहले स्थिति की गंभीरता को देखेंगे। अगर एनीमिया या आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय होगा। हल्के एनीमिया के मामले में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं।
0: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता?
1: बिल्कुल सही है, IVFCM हर किसी के लिए नहीं है। यह एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद लिया जाता है।
0: अब जरा IVFCM को

0: गंभीर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है या डॉक्टर को लगता है कि तेजी से सुधार जरूरी है, तब इसे विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
1: यानी कि ये सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है।
0: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IBF EFCM नहीं दिया जाता है। पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिला की स्थिति समझी जाती है, उसके बाद डॉक्टर निर्णय लेते हैं।
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार है।
0: बिल्कुल सही, यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं पहले जांच, फिर सलाह, फिर उपचार।
1: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
0: हाँ, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में यह दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय तक महिला को देखा भी जाता है ताकि सब कुछ सम्मान रहे।
1: क्या ये अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जाता है?
0: जरूरी नहीं है, लेकिन ये हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधा पर ही किया जाता है।
1: तो अपने मन से ये उपचार कराना ठीक नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, सही रास्ता हमेशा जांच, डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में है।
2: मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगी। कई बार परिवार डर जाता है कि ड्रिप लगी है तो बीमारी बहुत गंभीर होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। IVFCM को एक प्रभावी उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन ये केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में दिया जाता है।
1: जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। सेहतिया सिंह जी, एक और बात बताइए। कई श्रोता ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार क्यों करते हैं?
0: क्योंकि मध्यम या गंभीर एनीमिया केवल कमजोरी का विषय नहीं है, यहाँ माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जब डॉक्टर को लगता है कि आयरन की कमी को जल्दी और प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है, तब से IVFCM जैसे विकल्प पर विचार कर सकते हैं।
2: और मैं परिवारों से कहना चाहूँगी कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे लेकर डर या अफवाहों में ना पड़े। पहले पूरी जानकारी ले, सवाल पूछें और स्वास्थ्य कर्मी की बात समझें।
1: सेहतिया सिंह जी, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिला की कमजोरी दूर करना है?
0: नहीं, इसका बड़ा उद्देश्य है माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान देना। जब एनीमिया समय पर इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
1: यानी फायदा केवल माँ को नहीं बच्चे को भी होता है।
0: बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है?
2: परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है। पहला, गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से ले। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को ले जाएं और उसमें देरी बिल्कुल ना करें। तीसरा, जांच में उसके साथ जाएं। चौथा, गोली समय पर और सही तरीके से लेने में मदद करें। पांचवा, किसी परेशानी की स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी से बात कराएं। छठा, अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद करें। सातवां, घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाएं। और आठवां, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष ना दें।
1: सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है?
0: हाँ, इलाज के बाद भी फॉलो अप बहुत महत्वपूर्ण है। महिला की पुनः जांच होगी, आवश्यकता होने पर सलाह दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है।
1: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: चलिए, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले IVFCM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं की बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी?
0: गलत। IVF

0: IBFCM देने का निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है। केवल ड्रिप लगाने का मतलब ये नहीं कि स्थिति को नियंत्रण में से बाहर है।
1: IBFCM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए।
2: गलत। IBFCM हर महिला के लिए जरूरी नहीं है। ये केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाता है जहां डॉक्टर को इसकी आवश्यकता दिखाई देती है।
1: अगर IBFCM लग गया तो आगे किसी जांच या फॉलोअप की जरूरत नहीं रहती।
0: बिल्कुल गलत है। फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण है। उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच और निगरानी की जाती है।
1: और IBFCM घर पर भी लगवाया जा सकता है?
2: नहीं, ये हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जाता है।
1: अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को IBFCM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए?
0: हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग होती है। उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होता है।
1: धन्यवाद। इसी के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं, पर चलते चलते आज की चर्चा से तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नज़रअंदाज कतई ना करिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच कराते रहिए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन कीजिए। कुछ स्थितियों में डॉक्टर IBFCM जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं।
2: और मेरी तरफ से एक संदेश, खून की कमी को लंबा मत खींचिए। समय पर जांच कराइए, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिला को परिवार का पूरा सहयोग दीजिए।
0: याद रखिए, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम संभव हैं।
1: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव के बाद की अवस्था यानी PNC के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जन्म से पहले। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा,
1: देश जीतेगा। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं, तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है
5: आरजे अंशिका।
4: जी हाँ, और कहते हैं ना कि जब एक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद जब हम मिलते हैं अपने किसी खास से, अपने अपनों से, तो वो एक फीलिंग बहुत ही ग्लैड वाली फीलिंग होती है, एंड देन हम ना खुशी से भर जाते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही मेरा माहौल है, मेरा मूड बहुत कुछ ऐसा ही है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद हम आ गए हैं, क्योंकि कल नहीं परसों, मतलब पूरे 48 घंटों के बाद हम आपसे। तो भाई 48 घंटों, यानी कि मैं अगर 3 बजे यहाँ से थी तो 3 से 3 24 घंटे, एंड फिर से मैं आ गई हूँ यहाँ पर 1:30 बजे, तो पूरे 48 घंटे हो गए ना। तो यानी मैं और अंशिका, आप दोनों लोग 48 घंटों के बाद आपसे मिलने के लिए फिर से बिल्कुल कहते हैं ना कि तैयार होकर के आ गए हैं, क्योंकि आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
3: सुन सहेली विद
4: आरजे समता
5: आरजे अंशिका।
4: एंड प्यारे से मॉनसून में, यार ये तो मॉनसून जो है ना, ये लवशव वाला मॉनसून है। ये दोपहर भी नहीं लग रही है, ये बारिश भी नहीं पड़ रही है, इसमें तो केवल घूमने वाला है, वो भी स्कूटी या बाइक पे, फोर व्हीलर पे नहीं, फोर व्हीलर वाला घूमने वाला मैं,
5: बाइक पे,
4: स्कूटी या बाइक पे, क्योंकि फोर व्हीलर घूमने वाला जो मेरा एक क्रेजिंग होती थी ना, वो खत्म हो चुकी है।
5: ओके,
4: टोटली खत्म हो चुकी है।
5: स्कूटी पे ज्यादा बेटर,
4: स्कूटी पे बेटर ज्यादा लगता है घूमना, एंड बारिश अगर पड़ जाए उस पे थोड़ी थोड़ी सी, तो ओ माय गॉड, क्या ही है। काश,
5: वाह,
4: आगे बढ़े।
5: या श्योर
4: जी। तो आज वैसे भी बारिश का मौसम है, और आप सोचो कि हम लोग खाते हुए जा रहे हैं, यानी कि अगर हाथ में हमारे भुट्टा हो, पॉपकॉर्न हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जिसे हम खाते पीते जा रहे हैं, और साथ में आप अपने एक बहुत ही पसंदीदा इंसान के साथ, चाहे वो आपकी मेल फ्रेंड हो, फीमेल फ्रेंड हो, आपका भाई हो, आपका हस्बैंड हो, एनीथिंग, कोई भी हो, और आप खाते पीते जा रहे हैं। खाते पीते से मुझे याद आया कि आज मंडे है ना अंशिका।
5: यस मैम।
4: ओहो, और आज हम सभी शिव भक्तों के लिए, भोले बाबा के भक्तों के लिए एक अपार उपहार की बात है, जो कि आज है सावन का शुभ सोमवार और पहला सोमवार।
5: जी बिल्कुल। तो भाई, महाकाल की दृष्टि है सभी पर, महाकाल की दृष्टि है सभी पर, क्योंकि वो रखते हैं पूरी सृष्टि का ध्यान। तो चलिए कुछ हम भी उनका आज ध्यान करेंगे। ध्यान मग्न होने के साथ साथ आपको भोले बाबा के दर्शन तो आप सभी ने कर लिए होंगे, तो भोले बाबा के दर्शन करें, उनकी कृपा को बनाए रखें, और उन्हीं की कृपा के साथ आज हम भी अपने शो को शुरू करेंगे और बताएंगे आज जो भी हमारे पास है, क्योंकि आज मंडे है तो कुछ खाना खजाना तो है, लेकिन आज खाने खजाने में भी हमने थोड़ी सी भक्ति मिलाई है। तो भक्ति के साथ शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले पहले पहले चलिए चलते हैं हमारे सबसे पहले वाले सेगमेंट की तरफ, जो कि होता है पोयम। लेकिन उससे पहले हम जो रोज बोलते हैं वो अभी तक हमने नहीं बोला है, तो वो बोलते हैं।
4: हाँ जी, तो आइए एक साथ एक ही फ्रेम में हम प्यार भरा आप सभी को आमंत्रण देते हैं और बोलते हैं एक साथ एक ही फ्रेम में
5: शुभ दोपहरिया।
4: तो भाई अंशिका, मैं आज अपने शिव भक्तों के लिए, एक्चुअली मैं भी बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी वाली भक्त बन चुकी हूँ
5: जी, जी,
4: और आपको सब आपको भी पता है और मेरे बहुत खासम खास लोगों को भी ये पता है, जानकारी है कि जब से मैं महाकाल से होके आई हूँ ना, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं उस नगरी में फिर से जाऊँ। और मतलब अंशिका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वहां से आने
5: जी,
4: का
5: जी।
4: और इतना ज्यादा सुकून, इतना ज्यादा, मतलब इतने इतने घंटों लाइन लगाने के बावजूद भी, मतलब ये लगता है यार कि हम बस एक बार भोले बाबा के दर्शन करेंगे, हम फिर से क्यों नहीं जाएंगे। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ, हम लोग इधर एक राउंड करके दर्शन निकले एंड देन हम लोगों का मन हुआ हम लोग फिर से चले गए, मतलब टोटल 5-6 घंटे लगने के बाद हम लोग फिर से चले गए अंदर। ऐसी कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति है वहां पर, या ऐसा खिंचाव है, ऐसी एक तेज है, ऐसा उनका सौंदर्य है कि यूं ही थोड़े ही पार्वती माँ इतनी सुंदर, इतनी मतलब जैसे कहते हैं ना कि राजों राजमहल की रानी, मतलब राजों की राजमहल वाली रानी, एक भोले बाबा जो कि एक मतलब कैसे रहते थे, उन पे उनका दिल आया, उन पे उनकी फिदा हुई और उनके प्रेम में पड़ी, मतलब वो उनका प्रेम जो है वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना कि इतिहास में रचने वाला प्रेम है शिव और पार्वती माँ का, मतलब माँ पार्वती का और शिव भोले बाबा का, कि उस पर आज मैंने 4-5 लाइन मैं कुछ लेके आई
5: हूँ। ओह वाह वाह वाह वाह,
4: ताकि मैं अंशिका को सरप्राइज दूंगी।
5: अरे वाह,
4: तो मैं बताऊँ?
5: बिल्कुल बिल्कुल नहीं की, और पूछ तुरंत ही शुरुआत।
4: तो आज मैं खाना खजाना पे कोई पोयम नहीं बोलने वाली हूँ, आज मैं अपने शिव और भोले बाबा की प्रेम, आज मैं अपने शिव और भोले बाबा की प्रेम के ऊपर मैं बोलने वाली
5: हूँ। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल।
4: प्रेम अगर पावन हो, प्रेम अगर पावन हो तो शिव पार्वती सा, जहाँ समर्पण हर पल हो, जहाँ समर्पण हर पल हो और विश्वास सदा हो, न शब्दों का शोर न चाहत का अभिमान, न शब्दों का शोर न चाहत का अभिमान, बस एक दूजे में बसता था पूरा संसार। पार्वती की तपस्या ने प्रेम का अर्थ बताया, पार्वती की तपस्या ने प्रेम का अर्थ बताया, शिव ने उन्हें अपनाकर सच्चे प्रेम को निभाया। शक्ति और शिव का यह अटूट मिलन, शक्ति और शिव का यह अटूट मिलन सिखाता है प्रेम में धैर्य, त्याग और समर्पण। युग बदल जाए, युग बदल जाए, समय बदल जाए, पर उनका प्रेम कभी ना बदल पाए। जो प्रेम में सच्चाई और श्रद्धा अपनाए, शिव पार्वती का आशीर्वाद वही जीवन भर पाए।
5: वाह, मतलब बहुत प्यारा। और कुछ चीजें आप ऐसी सुन लेते हैं ना कि जब हम कहते हैं स्पीचलेस, तो कुछ वैसा मुझे भी महसूस हो रहा है कि बहुत बहुत बहुत प्यारी लाइन्स मैम। और बिल्कुल जैसे कहते नहीं है कि दिल की फीलिंग्स को जब शब्द मिल जाते हैं तो वो बहुत एक प्रभावशाली ढंग से, और बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही इफेक्टिव कि वाकई में शिव और शक्ति जैसा प्रेम तो कोई ना ही करे।
4: एग्जैक्टली, क्योंकि कोई, मतलब मुझे लगता है कि मैं किसी भगवान के लिए नहीं बोलना चाहूंगी, सबका प्रेम अपनी अपनी जगह पे है और उन्होंने भी, हर एक किसी ने प्रेम किया है, चाहे वो राम सीता हो, चाहे वो कृष्ण राधा हो, मतलब सभी का प्रेम अपनी जगह पर एक बहुत ही पवित्र और अटूट है। बट मुझे लगता है कि जो हमारे शिव पार्वती हैं, जो हमारी पार्वती माँ और हमारे भोले बाबा का जो एक प्रेम, अटूट प्रेम है, ये एक लोगों को मिसाल देता है, एक बहुत बड़ी एक त्याग सिखाता है और समर्पण सिखाता है। एंड मतलब मैं क्या बता दूँ कि एक ना एक एक आजीवन रहने वाला एक अटूट जैसे धागा होता है ना
5: जी,
4: तो वो एक धागा कैसे बंधता है और उसको किस तरीके से, क्योंकि देखो अंशिका, बांधने में तो देर नहीं लगती है, हम बांध देते हैं, राह चलते हुए लोगों से बात कर लेते हैं, और आजकल तो जो लोग बच्चे हैं।

0: मतलब एक वो बना लिया है कि ले लिया, चलो प्यार ले लिया, नंबर ले लिया, बातें हो रही हैं, सब कुछ। बट धागा लेना आसान है, धागा बांधना भी आसान है, लेकिन उस बंधे हुए धागे को जीवन भर संभाल के रखना, ये प्यार है, ये एक समर्पण है, ये एक एग्जैक्टली वाला प्यार है।
1: बिल्कुल
0: अच्छी अच्छी बातें करें ना,
2: बहुत अच्छी अच्छी बातें क्या होगी आप। ये असर है मैम, ये हमारे शिव का, हमारी शिव शक्ति का असर है। तो दो लाइन में कहना चाहूंगी, इतना सारा सुन लिया है तो कुछ है दिमाग में, तो कहती हूँ कि शिव और शक्ति का प्रेम है ऐसा, शिव और शक्ति का प्रेम है ऐसा, जग करता है उसका सम्मान। शिव और शक्ति का प्रेम है ऐसा कि जग करता है उसका सम्मान। हम मांगते हैं दुआ, हम मांगते हैं दुआ, हमें भी मिले ऐसा ही प्रेम धन। हम मांगते हैं दुआ, हमें भी मिले
0: ऐसा ही प्रेम धन। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गाना जब बहुत पहले मैंने सुना था, शोहरत दौलत क्या चाहिए, मुझे प्रेम का सहारा है। तो एग्जैक्टली ये जो फीलिंग होती है ना, कि प्यार जब हो जाता है किसी से, या प्यार आपको है किसी से, तो उसके आगे ये दौलत शोहरत कोई काम की नहीं रह जाती है, मतलब मेरे हिसाब से आई फील।
2: बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने कि आप देखिए, अभी मैम ने जब बताया तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कि कहां एक महलों में रहने वाली रानी, मतलब माता पार्वती
0: की राज रानी। बिल्कुल, मतलब किस तरीके से उनके पिता ने, उनकी माता ने, मतलब क्या, जब उनको पता चला कि उन्होंने एक प्रण कर रखा है, वो सदियों से तपस्या करती आ रही है हमारे भोले बाबा की, तो उनके पिताजी ने बहुत ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप जैसे हमेशा से रोकते हैं बच्चों को,
2: जी
0: तुम्हारा वहाँ भविष्य नहीं है, तुम कैसे करोगे, वो मतलब जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, और कैसे उनके आसपास जानवर रहते हैं, और मतलब किस तरीके से तुम रहोगी, उनका खुद का घर नहीं है, ये है वो है, खुद का घर नहीं है।
2: बिल्कुल,
0: तो सोचो ऐसे इंसान के साथ में इंसान जब मतलब मिल जाता है, और एक प्रेम है जो प्रेम ही सब कुछ बना देता है, और ऐसे पवित्र जो रिश्ता है, ऐसा पवित्र अटूट प्रेम है, और आज पूरी दुनिया उन्हें इस तरीके से मान रही है ना, कि और कहते हैं कि हमारे भोले बाबा जो हैं वो एक सादे लोटे के पानी से यार मान जाते हैं, और उनका तो किसी मंदिर मस्जिद में, सॉरी इस मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर में एक छोटी सी शिवलिंग भी है ना, तो अगर आपने वहाँ एक सादा पानी, सादा जल चढ़ा दिया ना, तो समझ लीजिए कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण होते हुए कोई रोक नहीं सकता है, भोले बाबा बिल्कुल ही कर।
2: बिल्कुल, तो भाई शिव हैं और शिव ही शक्ति हैं, शक्ति ही शिव हैं, ये हमेशा याद रखें। तो आज बहुत ही प्यारा सा दिन है, और बहुत ही प्यारे से दिन पर हमने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें ऑलरेडी कर ली हैं, तो मन जो है वो बहुत सारी, कहते हैं ना कि जब ऐसी बातें होती हैं तो मन बहुत सारी चीजों से भर जाता है,
0: पॉजिटिव चीजें। हाँ, तो अंशिका मेरी एक ख्वाहिश है, आई थिंक
2: क्या
0: मैं लिसनर्स की भी ख्वाहिश को जानना चाहूंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि आज, जैसा कि आज सावन का पहला सोमवार है,
2: जी,
0: तो एक हम भोले बाबा और पार्वती माँ पे एक प्यारा सा कोई एक भजन सुनना चाहते हैं।
2: बिल्कुल सुनना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं सुनाऊंगी भी आप सभी को भजन। तो चलिए भजन सुनते हैं, और शिव और शक्ति के प्यार में उनके बंधन में खोते हैं, और भक्ति, भक्ति तो जरूर से हम करेंगे, तो भक्ति है और भक्ति की ही शक्ति है। तो भाई बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो अब मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, और बस यूं गए और यूं आए, आप सभी भी भक्ति करें और भक्ति की शक्ति को पहचानें।

क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
6: RJ अंशिका।
5: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की खाना खजाना की पहली रेसिपी, जो कि आप सभी को पता है कि आज है हमारा लजीज सा मंडे, और लजीज से मिलके मंडे के दिन हम लेकर के आते हैं लजीज लजीज और अजीब व गरीब बहुत सारी डिशेस को। तो भाई सबसे पहले अंशिका अपनी डिशेस को लेकर बोलने वाली है, और साथ ही साथ में उसके बाद फिर हमारे पास है मास्टर शेफ द्वारा बताई गई बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी, एंड देन आपको बताएंगे आपकी आज सप्ताह रेसिपी।
6: तो चलिए चलते हैं, और पहली रेसिपी मैं आपको बताती हूँ, जो कि भाई आज सावन का सोमवार है और हमारी बहुत सारी फीमेल लिसनर है, हमारी जो सहेलियां हैं वो व्रत होंगी, तो आज उनके लिए मैं काजू और मखाने की सब्जी के साथ बताऊंगी आपको कद्दू की। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले कि आपको सब्जी बनानी,
5: कद्दू खा सकते हैं?
6: हाँ
5: व्रत में।
6: हाँ मैम।
5: अच्छा,
6: तो चलिए बताते हैं कि काजू और मखाने की सब्जी के साथ आपको इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले काजू ले लेने हैं आपको 2 कप।
5: 2 कप, 2 कप काजू
6: और 2 कप मखाने।
5: बहुत महंगी सब्जी बना रही है अंशिका आज।
6: ऐसा नहीं है, आप मतलब अपने हिसाब से उसको कम भी ले सकते हैं, ये तो मैंने एक मार्जिन बता दिया कि अगर घर में 4 से 5 लोग हैं तो इतना आप लीजिए, अदरवाइज अगर आपको अपने लिए, जैसे कुछ घरों में होता है कि सिर्फ फीमेल्स ही
5: दो लोग,
6: तो फिर आप उस हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद में आपको टमाटर लेना है, 2 बड़े हुए अच्छे पके हुए टमाटर लेने हैं। फिर अदरक का टुकड़ा ले लीजिए 1 इंच का, हरी मिर्च 2 ले लेनी है, घी ले लेना है 2 बड़े चम्मच, और उसके साथ 1 छोटा चम्मच जीरा आपको ले लेना है, जो कि सावन का व्रत है तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं। बहुत लोग सावन के व्रत में अगर नमक नहीं खाते हैं तो आप उसमें नमक मत डालिएगा, और जो खाते हैं नमक वो सेंधा नमक डाल सकते हैं। काली मिर्च पाउडर ले लेना है आपको 1/2 छोटा चम्मच, हरा धनिया ले लेना है, हरा धनिया बारीक कटा हुआ आप ले लीजिएगा 1/2 कप। और अब इसके बाद आती है बारी कि घर में अगर आपके, जैसे हम घर में दूध से जो मलाई निकालते हैं ना वो प्योर होती है, तो वो आप व्रत में खा सकते हैं। अगर आपके पास घर में निकाली हुई मलाई है तो ही आप डालिएगा, अदरवाइज मार्केट वाली मत डालिएगा
5: जी।
6: उसकी जगह पे आप दही डाल सकते हैं, ताजा फ्रेश, और मुझे लगता है दही तो अमूमन सभी के घरों में होती ही है। तो ये हो गई आपकी इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको बनाने के लिए क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए जो करना है काम, वो ये है कि सबसे पहले चलेंगे और मखाने को हमें क्या करना है, भूनना है। तो आप 1 चम्मच घी डालिए, जब घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आपको उसमें 2 कप मखाना डाल करके, और जो काजू आपने लिए हैं वो डाल करके 3 से 4 मिनट उसे क्रिस्प होने तक आपको भून लें।
5: अच्छा, उसी घी में इसको
6: अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 प्लेट में निकाल करके उन्हें अलग रख दीजिए। अब क्या करना है कि आपको मिक्सी लेनी है, और उसमें कटे हुए टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और बचे हुए जो आपके पास अगर काजू बच गए हैं तो आपको वो भी इसमें ग्राइंड कर लेने हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि बिना पानी के ग्राइंड करिएगा।
5: अच्छा।
6: क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी डाल देंगे ना तो इसमें काजू मिला हुआ है।
5: हाँ।
6: आपने देखा होगा काजू जब आप वो करते हो तो काफी क्रीमी होता है।
5: हाँ, पूरी क्रीमिश बन जाती है।
6: तो पानी कम डालेंगे और उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कि पूरा स्मूथ सा एक पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब आपको अगेन क्या करना है कि कढ़ाई में जो आपने घी डाला था वो थोड़ा सा बचा हुआ होगा, आपको उसमें थोड़े से जीरा डालना है, टमाटर डालना है और ये काजू वाला जो पेस्ट है वो पूरा डाल देना है और उसे और गैस को बिल्कुल सिम कर दीजिएगा और कुछ देर तक इसे भूनना है। कुछ देर का मतलब है लगभग 3 से 4 मिनट आपको इसे अच्छे से भूनना है कि वो जब नीचे लगने लगेगा ना कढ़ाई में तो आपको ये समझ में आएगा कि मसाला जो है वो पूरी तरह रेडी हो गया है।
5: okay.
6: अब आपको क्या करना है कि आपको इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर को डाल देना है और उसके बाद में जो आपने मलाई हो फेटी हुई आपके पास या दही हो वो आपको डाल देनी है। अब आते हैं लास्ट वाले चीज पे कि लास्ट में हमें क्या करना है कि आपकी ग्रेवी जो है वो पूरी तरह बन के तैयार है। अब आपको लास्ट में इसने मखाना और काजू डाल करके सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे रख देना है और उसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है। कुछ देर के लिए आप गैस पे ही इसको रखा रहने दीजिएगा। 5 से 10 मिनट के बाद खोलना है आपको और बारीक जो हरी कटी हुई धनिया आपके पास है वो ऊपर से डाल देनी है, डेकोरेट कर देना है और फिर आप बोल निकालिए, सर्व करिए और आराम से इसे खाइए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ग्रेवी जब वो डालते हैं और ग्रेवी को भूनते हैं उसी वक्त वो मखाना भी डाल देते हैं।
5: हाँ, तो वो ये बताओ अंशिका, जैसे अभी तुमने बताया तो क्या इसमें घी भी छोड़ता है जब आपने मलाई भी डाली है, काजू भी पीस के डाला है, तो जब वो घी छोड़ देता है ऊपर तो वो बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली नहीं हो जाती है सब्जी?
6: मैम ज्यादा ऑयली नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें घी यूज किया है, तो घी आपने जब यूज किया हुआ है तो बहुत ज्यादा ऑयली नहीं होगी, मतलब एक लेवल में ही बनेगी, अच्छी बनेगी, ज्यादा ऑयली नहीं होगी। तो ये आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे कि भाई हमने आपको सब्जी तो बता दी लेकिन सब्जी के साथ खाएंगे तो इसलिए हमें दूसरी चीज भी आपको बतानी पड़ेगी।
5: जी बिल्कुल।
6: दूसरी चीज है कि आज मैं आपको कद्दू की पूरी बताती
5: हूं। ओह माय गॉड,
6: लेकिन इसके साथ
5: ये तो बिल्कुल डिफरेंट है।
6: बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसके साथ आप एक बढ़िया सा यू नो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट? मैंने पिछले साल किया था जब मैंने फास्ट रखा था और इस बार तो मैंने नहीं रखा है फिलहाल। तो ये आप क्या कर सकते हो कि इसमें थोड़ा सा आलू भी मिला दीजिएगा, बहुत बढ़िया, मतलब आपको लगेगा कि आप कुछ खा रहे हो। और कुछ ऐसा जैसे होता है ना फीमेल्स को कह रहे हैं हमें दिन में एक ही बार खाना है, क्योंकि फास्ट होता है तो ये लगता है कि कौन बार बार बनाए, फिर पूरा किचन साफ करो। बहुत लोगों के यहाँ ये भी होता है कि सिर्फ मतलब मम्मी व्रत है या चाची व्रत है, फुल फैमिली अगर फास्ट नहीं रख रही है तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इसको अगर दिन में एक बार आप खा लेंगे ना तो फिर आपको कुछ देर तक ये हुआ कि हाँ मैंने कुछ खाया है, एनर्जी भी लगेगी क्योंकि इसमें काजू है, मखाना है, तो आपको एनर्जी भी लगेगी। अब आते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है कद्दू ले लीजिए और कद्दू को टुकड़ों टुकड़ों में करके उसको रख लीजिए, अच्छे से पहले साफ कर लेना है, छील लेना है, उसके बाद आपको इसे रख लेना है। अब क्या करना है कि जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना कद्दू की, ठीक उसी तरीके से इसको थोड़ा सा पकाना है। थोड़ा सा पकाने का सेंस है कि बहुत हल्का पकाइएगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि कद्दू जो है वो एक अगर आप स्टीम पे देते हो तो वो अच्छे से हो जाता है, इसलिए बहुत हल्का सा पकाना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको कुटू का आटा ले लेना है। कुटू का आटा ले लीजिएगा, 1 कप ले लीजिएगा। और अब इसके बाद आलू आपको ले लेने हैं और आलू भी हमें उबाल लेने हैं। आलू को आप उबाल लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने 4 टुकड़े लिए हुए हैं कद्दू के, ठीक है, तो आपको आलू ले लेना है 2।
5: अच्छा, वो भी क्या कहते हैं बॉइल्ड?
6: हाँ, बॉइल्ड। बॉइल्ड आलू हो गया आपका और बॉइल ही आपका कद्दू हो गया। अब क्या करना है कि हमें इसको अच्छे से मैश करना है। पहले अच्छे से आपने मैश कर लिया, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि अब आपको इसमें सेंधा नमक डालना है, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालनी है और अगर आप खाते हैं तो खड़ा लाल मिर्च और भुना हुआ धनिया डाल दीजिएगा, क्योंकि धनिया और मिर्च ऐसी चीज होती है जो व्रत में भी खाया जाता है। उसमें कोई प्रॉब्लम,
5: उसमें नहीं प्रॉब्लम होती,
6: आराम से।
5: हल्दी थोड़ा अवॉइड करते हैं,
6: हल्दी नहीं खाई जाती है। धनिया और मिर्च आप डाल लीजिए। अब डालने के बाद क्या करना है कि आपको इसे हाथों से
5: सूखी धनिया,
6: हाँ सूखी धनिया,
5: अच्छा
6: पहले सूखी धनिया जो खड़ी वाली आती है उसको आप थोड़ा सा भून लीजिएगा, ऐसे बिना तेल के बिना घी के तावे पे ही थोड़ा सा भून लेना है। और यही हमें मिर्च के साथ भी करना है, जो लाल खड़ी मिर्च होती है। उसके बाद आपको इन दोनों को ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए एक अच्छा सा मसाला बन के तैयार हो जाएगा, इसे व्रत वाला मसाला भी बोलते हैं। आपको इसमें डाल देना है और अच्छे से उसको मैश कर लेना है। अच्छे से मैश होने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपने जो कुटू का आटा सान के रखा हुआ था वो आपको ले लेना है, गूंथ के जो रखा था आपने। फिर उसके बाद आपको जैसे हम लोई बनाते हैं ना, जब पराठे बनाते हैं उसमें से छोटी छोटी लोई आपको बनानी है। और ये जो आपका बैटर है कद्दू और आलू वाला, वो आपको इसमें फिल कर देना है। जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं तो फिल करते हैं ना, स्टफिंग, वैसे फिल कर देना है। छोटी छोटी पूड़ियां उसकी आपको अच्छे से बेल लेनी है। और उसके बाद में मूंगफली के तेल में या देसी घी में, जैसे हो सके, अगर मूंगफली का तेल है तो मूंगफली का तेल, वरना देसी घी है तो देसी घी ले लीजिएगा आप, और अच्छे से इसको उसमें तल लीजिएगा। अगर आप देसी घी में तल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जब हम देसी घी में तलते हैं ना तो कुछ अलग सा टेस्ट आता है। देसी घी में तलिए, आराम से आपकी सब्जी भी तैयार है, पूड़ी भी तैयार है। गरम गरम पूड़ी निकालें और गरम गरम सब्जी के साथ खाएं और इंजॉय करें। लेकिन एक बात और बता दूं कि ये वाली पूड़ी के साथ आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा जैसे बहुत लोग करते हैं ना कि पूरे लाओ तल लें, जितने भी मतलब पाँच छः बना लें और फिर बाद में खाएंगे। ऐसे आप करेंगे ना तो फिर नहीं सही पड़ेगा। आप तुरंत तुरंत कढ़ाई से निकली हुई खा के देखिए, बहुत टेस्टी लगती
5: है, गरम गरम। हाँ, लेकिन अपने मुंह को बचा के।
6: हाँ, लेकिन मुंह को बचा के, मतलब ऐसा नहीं है कि गरम
5: जैसे ठंड रही है वैसे आप खा रहे हैं, ऐसा नहीं।
6: थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद, कहने का सेंस ये है कि बिल्कुल ठंडी ना हो जाए
5: उसको, मतलब रखना नहीं है कि स्टोर करके रख दें आप,
6: क्योंकि फिर उसका पूरा टेस्ट चला जाता है। मैंने जब बनाई थी और खाया था तो ऐसे ही खाया था, तो बहुत टेस्टी लगती है। आप जरूर खाएं और अपने व्रत को जो है वो परिपूर्ण बनाएं, क्योंकि भाई व्रत है तो ऐसा थोड़ी नहीं है
5: कि हम खाएंगे,
6: खाना नहीं है। एनर्जी की जरूरत तो पड़ती है ना, भक्ति के लिए शक्ति की जरूरत तो पड़ती है।
5: ओके,
6: तो
5: बड़ी अच्छे अच्छे आज फूल मुंह से चुन रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं।
6: संगति का असर,
5: संगति का असर
6: कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, वैसा रंग।
5: तो हम पहले चैट बॉक्स में आएंगे अंशिका
6: मैम,
5: और हमारे कुछ लिसनर्स आ गए हैं, देन उनका भी वेलकम कर लेते हैं और उसके बाद ब्रेक की ओर चलते हैं।
6: नागेश्वर जी लिख रहे हैं, मुझे कद्दू का आटा समझ में नहीं आया, तो मैंने कद्दू का आटा कब बताया?
5: वो कद्दू का आटा नहीं, कुट्टू का आटा।
6: नागेश्वर जी आप भी ना,
5: कुट्टू का आटा,
6: कुट्टू का आटा बताया, कद्दू का कौन सा आटा होता है?
5: कद्दू का अब नहीं, अगर अच्छा हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अदरवाइज कुछ लोग तो ऐसे भी करते कि कद्दू को सुखाते, फिर वो चक्की में दे आते और उसका आटा निकलवाते, देन वो फास्ट में खाते,
6: तो फिर तो फास्ट ही चला जाता।
5: ऐसा नहीं है, कुट्टू का आटा,
6: कुट्टू का आटा। और नागेश्वर जी लिख रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है खाना ठंडा होने के बाद खाना चाहिए।
5: मैं तो ठंडा होने के बाद ही खाती हूँ,
6: तो
5: चलिए चाय भी बिल्कुल ठंडी पीती हूँ,
6: कोई बात नहीं। और लिख रहे हैं, हमने आलू का पराठा खाया था, या अंशिका मैम आज कद्दू की पूरी भी खिला रही हैं। बिल्कुल कद्दू की पूरी खिला रहे हैं आपको, खाएं और एंजॉय करें। और इसी के साथ महेंद्र जी हैं जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, और उन्होंने दो लाइन भेजी है, पेड़ की डाली से गिरते हुए पत्तों में भी क्या खूब कहा, अगर बोझ बन जाओ तो अपने ही गिरा दिया कर।
5: ही भावुक समय से आज के दिन, तो जहाँ पर ये लव सीरीज चल रही है वहाँ पर ये बहुत ही भावुक मैसेज आया है। तो चले अंशिका ब्रेक की ओर चलते हैं, और उसके बाद हम आएंगे, हम अपनी मास्टर शेफ की बताई हुई रेसिपीज को सुनेंगे, क्योंकि उनकी रेसिपीज में भी बहुत बड़ा एक धमाल होता है, और बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि एक बड़े बुजुर्गों के हाथ की बात अगर है तो वो, अगर जैसे मेरी माँ है या फिर अंशिका की मम्मी है, तो क्या होता है ना कि वो अगर उल्टे हाथ से भी कुछ बना देंगे ना तो लगता है यार कितना टेस्टी है।
6: बिल्कुल,
5: तो कुछ ऐसे ही हमारी मास्टर शेफ के हाथों में भी कुछ रस है, तो वो हम सब सुनेंगे, सब खाएंगे, लेकिन अभी बारी है कुछ ब्रेक।
6: तो आइए चलती है, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो सुन।

0: सहेली और हम वापस आ गए हैं बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और हमारे साथ हैं हमारी मास्टर शेफ यानी कि रंजना मैम। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं सीधे हमारी मास्टर शेफ से कि आज वो हमारे लिए क्या लाई हैं, हमें क्या खिलाने वाली हैं।
1: भाई देखो, बहुत दिनों बाद, पहले तो मेरा नमस्कार, आप सब स्वीकार करिए।
0: जी मैम।
1: तो अब
0: वेलकम मैम।
1: हाँ, अब सावन आ रहा है, बहुत से लोग व्रत रहते हैं, बहुत से लोग सिर्फ मीठा खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मीठा खुरमा बताते हैं।
0: जी।
1: क्योंकि वो रख दो, बच्चों को भी पसंद है और खुद भी कुछ भी खा के पानी पी लो। तो चलिए सामान लिखना शुरू करें।
0: जी मैम।
1: सबसे पहले आप मैदा ले लेंगे 2 कटोरी। अब आपकी इच्छा कटोरी बड़ी हो या छोटी हो, जो भी हो, लेकिन जो कटोरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं पूरी तौल उसी पे रखिएगा। ये नहीं है कटोरियां बदल दे।
0: जी मैम।
1: एक ही कटोरी रखिएगा। तो मैदा आप 2 कटोरी ले लेंगे, देसी घी 3/4, मतलब 3 हिस्सा भरा रहे, 1 हिस्सा खाली रहे, वो ले लेंगे आप। और मीठा सोडा, अगर आप 2 कटोरी मैदा ले रहे हैं तो 2 चुटकी आप मीठा सोडा ले रहे हैं।
0: जी।
1: अगर आप 1 कटोरी मैदा ले रहे हैं तो 1 कटोरी आप मीठा सोडा ले रहे हैं, चुटकी, 1/4 चुटकी। और चीनी आप 1 कटोरी ले रहे हैं, तो 2 कटोरी मैदा हो गया, देसी घी 3/4 हो गया, मीठा सोडा 2 चुटकी हो गया और चीनी 1 कटोरी।
0: जी।
1: और तलने के लिए तेल, अब चाहे आप रिफाइंड लीजिए, सरसों का तेल छोड़ के आप किसी में भी तल सकती हैं।
0: जी मैम।
1: तो चलिए सबसे पहले तैयारी कर ली अब आपने, अब विधि देखिए। पहला नंबर, मैदे को अच्छी तरह से छान ले, ठीक है।
0: जी।
1: और जहाँ तक हो मैदे को आप 2 बार छानिए छन्नी से।
0: जी मैम।
1: उसके बाद उसमें देसी घी मिला दीजिए, बेकिंग पाउडर मिला दीजिए और अपनी हाथ की उंगलियों से बराबर बराबर चलाते हुए खूब मैदा, घी और बेकिंग पाउडर को आप एक सार कर लीजिए।
0: जी।
1: जब सब मिल जाए तब आप उसमें पानी का छींटा दे सानिए, पानी एकदम से मत डालिएगा।
0: जी मैम।
1: थोड़ा सा चम्मच में लेके आप डालती रहिए, क्योंकि हमें खूब अच्छा कड़ा कड़ा सा डो बनाना है।
0: जी।
1: मुलायम नहीं बनाना है, जैसे हम लोग मठरी अठरी बनाते हैं वैसा नहीं बनाना, कड़ा बनाना।
0: जी मैम।
1: फिर इसको, जो डो हमने तैयार किया है, इसको 10 मिनट के लिए हम कपड़े से ढककर अलग रख देंगे, ठीक है।
0: जी।
1: उसके बाद अब तैयारी क्या करेंगे कि कढ़ाई में जो है वो डालेंगे तेल और धीमी आंच में चढ़ा देंगे गरम होने के लिए।
0: जी मैम।
1: क्योंकि अगर जब हमारा आटा तैयार हो जाएगा तो बेलने में हमें समय नहीं लगेगा, तो हम इधर अपनी धीमी आंच पे गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई और उसके बाद मीडियम आंच कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे कि जो हमने 10 मिनट पहले डो सान के रखा है उसको हाथ से खूब अच्छे से मल लेंगे।
0: जी।
1: और मलने के बाद 2 ही लोई बनेगी 2 प्याले कटोरी में, तो हम आधा कर लेंगे और उसको खूब अच्छे से मल करके और 1 अंगुल बराबर, मतलब मोटा 1 सेंटीमीटर बराबर मोटा बेल लेंगे।
0: जी मैम।
1: और बेलने के बाद चौकोर टुकड़ों में या तिकोनों में, आपकी इच्छा,
0: जैसे आप चाहें,
1: हाँ उस इसमें काट लेंगे, पर मोटा रहेगा।
0: जी।
1: अब आप क्या करेंगे कि कढ़ाई में आपने तेल डाल रखा है, आप एक एक उठा, मतलब एक घान जो आपने बेला है वो उठा के डाल दीजिए और तुरंत नहीं चलाइएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। जब थोड़े खुरमे जो हैं जब ऊपर आने लगे, जब आप तेल में डालेंगी तो पहले नीचे रहेंगे, जब ये थोड़ा घी अब्सॉर्ब कर लेंगे तो ये ऊपर आने लगेंगे।
0: जी मैम।
1: जब ये ऊपर आने लगे आप तभी इसको चलाएंगी।
0: जी।
1: और गुलाबी गुलाबी सेक करके अलग निकाल के पूरे को रख लेंगे।
0: जी मैम।
1: ठीक है। अब आप क्या करेंगी, आपका पूरा खुरमा बन गया, सेक लिया, अलग रख लिया। अब एक और कढ़ाई लेंगे, उसमें हम चीनी डालेंगे, जो हमने जो है चीनी ली है ना 1 कटोरी, और उसको छोड़ जो है आधी कटोरी हम पानी डालेंगे।
0: जी।
1: नाप करके ही डालिएगा और तेज आंच रखेंगे, और जब गाढ़ा बुलबुला सा बनने लगेगा, तुमने देखा होगा चीनी जब पकाओ तो बुलबुल, मतलब पहले खौलती है फिर बुलबुले छोड़ने लगती है।
0: जी।
1: जब बुलबुलें छोड़ने लग जाए। अब आप इसमें हमको चाशनी नहीं देखनी कि एक तार की है कि दो तार की है। जब बुलबुलें आ रहे हैं उसी समय हम जो ये खुरमा बनाए हैं ये सब खुरमे उसमें डाल देंगे
0: जी,
1: भले वो पिघली पिघली रहेगी। उसके बाद आँच हम बंद कर देंगे, थोड़ी देर एक दो मिनट चलाएंगे आँच पे ही, फिर हम आँच बंद कर देंगे और कढ़ाई को उतार लेंगे या उसी पे रखा रहने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे हम उसको चलाते रहेंगे। अब आँच तो है नहीं पर वो चाशनी गर्म है, पिघली हुई भी है, तो हम इसको चलाते जाएंगे और एक समय आएगा कि खुरमा जो है वो पूरा का पूरा चाशनी, क्योंकि हमने तार की तो बनाई नहीं है
0: जी जी,
1: पर वो पूरा खुरमा एब्जॉर्ब कर लेगा चाशनी को
0: जी मैम,
1: और बस आपका तैयार है। और जूसी जब आप खुद खाएंगे बच्चों को खाएंगे तब इसके अंदर हल्की हल्की सी चाशनी आपको मिलेगी खाने के लिए, ऊपर से जो है आप बच्चों को दीजिए सर्व करने को गरम गरम, खुद भी खाइए बच्चों को खिलाइए, शीशी में भर के रख लीजिए, एक महीने तक ये बहुत अच्छा चलेगा।
0: वाह मतलब इतने अच्छे खुरमे सुन के तो मन यही कर रहा है मैम कि घर जाऊं अभी बनाऊं और बस फटाफट से खा
1: लिया, फटाफट खा लिया जाए, बहुत अच्छा बनता है
0: जी।
1: और जैसे हम लोग चाशनी में बनाते हैं फिर हम लोग देखते हैं कि ढाई तार की चाशनी हो जाए या तीन तार की हो गई
0: जी,
1: तब हम लोग डालते हैं तेजी में चीनी सूख जाती है ऊपर ऊपर, फिर हम लोग निकाल लेते हैं, पर ये उससे थोड़ा भिन्न है
0: जी,
1: थोड़ा क्योंकि जूसी मीठा खुरमा है
0: जी,
1: इसमें हल्का हल्का सा जो हमने चाशनी में उतार के बनाया है वो धीरे धीरे अब्सॉर्ब करा है, एक दो घंटा लगेगा आपको, तो हम चलाते जाएंगे थोड़ी देर बाद फिर उलट पुलट दिया फूल, तो इससे वो पूरी चाशनी पी लेगा
0: जी मैम। तो चलिए लिसनर्स चलते हैं और इस मीठे मीठे खुरमे के साथ सुनते हैं एक मीठा मीठा सा सॉन्ग, बस यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: तो बच्चों, आजकल जो है बन बहुत खाते हैं। कभी कहेंगे ना कि हम पाव भाजी खाएंगे
8: जी,
7: कभी कहेंगे कि इसी में मोयनीज लगा दो, हम मोयनीज खाएंगे। तो आज हम आपको बहुत सरल ढंग से बन सिखाना सिखा रहे हैं।
8: अरे वाह।
7: और इसमें कोई ना ज्यादा सामान लगना है, ना ज्यादा ही मेहनत लगनी है
8: जी मैम।
7: और आपको ये बहुत ताजा ताजा, बहुत बाजारों में देखते नहीं है, कोई पैर से सान रहा, कोई हाथ से डबल रोटी सान रहा। एक तो आप अपने घर में तैयार करेंगी तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगी। तो चलिए सामान लिखिए। सबसे पहले तो हम ईस्ट पाउडर बाजार में मिलता है, आप उसको मंगा के अपने घर रख लीजिए
8: जी।
7: तो अब विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक प्याला गुनगुना दूध लेंगे। गुनगुना मतलब ना बहुत तेज गर्म हो ना बहुत ठंडा हो, उंगली में डालिए। आप डालिए जब दूध में उंगली, तो आपका मतलब आराम से महसूस करे कि गुनगुना है
8: जी मैम।
7: अब आप उसमें जो है 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे।
8: पिसी हुई चीनी,
7: हाँ, जो हमारा दूध है उसमें हम 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे
8: जी मैम।
7: उसके बाद हम उसमें 2 चाय का चम्मच ईस्ट पाउडर डाल देंगे
8: जी।
7: और 10 मिनट तक ढक करके इसको अलग करके रख देंगे, ठीक है
8: जी मैम।
7: अब जो है हम मैदा लेंगे 3 कप अलग से, उसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, ठीक है
8: जी मैम।
7: और खूब अच्छे से इसको भी हम मिला लेंगे। अब ये जानती हो मैदा छानेंगे ही हम 2 बार, उसमें तब नमक मिलाएंगे। अब ये बार बार बताने वाली बात नहीं है, जब हम लोग कोई चीज यूज करते हैं तो 2 बार छान ही लेते हैं, खास तौर पे बरसात के समय।
8: जी मैम।
7: और उसमें हम जो है नमक डाल देंगे, फिर हाथों से जो है खूब अच्छे से। अब जो है इसमें हम 3 टेबल स्पून बटर डालेंगे। बटर जो बाजार में आता है ना, जिसको हम लोग लेते हैं, तो इसमें हम 3 टेबल स्पून बटर डालेंगे
8: जी मैम।
7: अब उसके बाद इसको भी खूब हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो हमने ईस्ट का घोल तैयार करा है, जो हमने ईस्ट एक्टिवेट किया है, जो दूध में डाला था, उसको हम इसी मैदे में डालेंगे
8: जी।
7: तो आप जब ये ईस्ट एक्टिवेट हुआ, ये आप कैसे जानेंगी, जानेगी जो दूध है आपका वो जैसे फटा फटा ऊपर नहीं जमने लगता है
8: जी मैम,
7: वैसा जम जाएगा। तब आप जानिए कि ईस्ट हमारा एक्टिवेट हो गया है।
8: ओके मैम।
7: अब आप उसको ले करके और उससे आप मैदे को सान लेंगे,
8: उस ईस्ट से जो हमने पहले ही घोल के रखा हुआ है उसी से मैदा सान,
7: बिल्कुल सान लेंगे
8: जी जी।
7: आप अपने चाहे हाथों से मिलाइए, अगर आपके पास हैंड मिक्सर है, ग्राइंडर, आप उससे चला लीजिए, तो खूब अच्छे से मैं चलाना है
8: जी मैं।
7: अगर हाथ से है तो आप हाथ से खूब अच्छे से। अब आप इसको भी क्या करेंगी कि 10 मिनट तक ढक करके फिर रख देंगी इस मैदे को जो आपने बहुत अच्छे से मिलाया है
8: जी,
7: जो हमने हैंड ग्राइंडर से मिलाया है सब है, उसको 10 मिनट 15 मिनट आप ढक देंगी
8: जी।
7: उसके बाद फिर उठाएंगी। अब हाथ में आप हल्का हल्का बटर या घी लगा लेंगी
8: जी मैम।
7: और हाथ से हथेली से आप लोग जैसे भटूरे लंबे लंबे नहीं मिलाते
8: जी,
7: वैसे खूब अच्छे अच्छे करके मिला लेंगे। मिला लेंगे उसके बाद एक लंबी लोई बनाएंगे इसकी और बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काटने के बाद हम एक ट्रे लेंगे। ट्रे में जो है हम घी लगा लेंगे पहले नीचे, चाहे बटर लगा देंगे। उसके बाद छोटे छोटे गोले जैसे पाव मिलते हैं ना गोल
8: जी,
7: गोल
8: जी,
7: हथेलियों से चला चला करके उसमें आप जब भी यूज करेंगी तो आप जो है बटर लेंगी ठीक है
8: जी।
7: और फैट वाला लीजिएगा, बिना फैट वाला मत लीजिएगा
8: जी मैम।
7: और वो मक्खन से गोल गोल मिला करके आप ट्रे में रख दीजिएगा। ट्रे में रखने के बाद आप जो है इसको 180 डिग्री ओवन पे डाल देंगे
8: जी।
7: और वो हल्का हल्का, अब जिसके घर ओवन नहीं है है ना, तो वो क्या करेगा, अब छोटे बर्तन में जैसे आपके पास जो है वो क्या कहते हैं कुकर है या लंबी जो भी है, उसमें आप नीचे बालू डाल दीजिए या उसको गर्म कर लीजिए छोटे जो है डब्बे में, यही घी लगा के ऊपर से ढक दीजिए बिना पानी आने के, बिना स्टीम के। थोड़ी थोड़ी देर में खोल के आप देखिए तो जैसे कुकर धीमे धीमे गर्म होगा, धीमी आंच पर, धीमी आंच पे रखिए तो ये जो बन है वो भी लाल हो जाएगा
8: जी।
7: और बहुत अच्छे जैसे बिस्किट कुकर में तैयार होते हैं, केक होते हैं, वैसे ये भी तैयार हो जाते हैं ठीक है। तो आप इसको जो है बना के देखिए, जब आप इसको निकाल लेंगी, अब आप चाहती हैं कि भरा रहे तो आजकल तो बच्चे भरा बहुत पसंद करते हैं
8: जी।
7: तो जब आपने गोल गोल लोई तोड़ ली उसके बाद आप इसमें एक एक टुकड़ा चीज का काट काट के धर दीजिए और गोला बना लीजिए और ऊपर से मक्खन लगा करके आप इसको सेक लीजिए। और अगर आप कुकर में कर रही हैं तो भी ये कर सकती हैं। और अब आप क्या करेंगी, चीनी फिर एक टेबल स्पून आप पीस लीजिए खूब अच्छे से महीन
8: जी मैम।
7: और जब आपके ये बन जो है तैयार हो जाए तब इसको हल्का हल्का चीनी में लपेट दीजिए ठीक है। तो जब बच्चे खाएंगे तो ऊपर से खूब अच्छी चीनी लगी हुई है और अंदर चीज लगा हुआ है। चीज आपके ऊपर है, अगर आप चाहती हैं डालना तो भर लीजिए और नहीं चाहती हैं तो सादा ही बन रखिए। और ये डोनट्स देखिएगा इतने अच्छे लगते हैं और इतने हल्के बनते हैं। हमने तो देखा बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको डीप फ्राई भी करते हैं
8: जी मैम।
7: तुम करके देखना, अगर फूट रहा है तो थोड़ा सा मैदा बढ़ा लेना और नहीं तो ऐसे ही डीप फ्राई तेज आंच में आप कर करके अलग निकाल लेंगे
8: जी।
7: और तब आप इस पे चाहे तो छन्नी से चीनी आप इसको जो पीसी है उसको छिड़क दीजिए। इसको निकाल के थाली में रखा और ऊपर से छन्नी डाल से छान लिया तो सब पे चीनी लग जाएगी और बहुत सुंदर लगते हैं। देखिएगा आज की डिश आपके बच्चों के लायक है और बहुत ही अच्छी है और बहुत सरल है। बस इसमें है जब आटा आपका सन जाता है 10 मिनट रख देती हैं, उसके बाद हथेलियों से खूब लंबे लंबे जैसे हम भटूरे बनाते हैं हथेलियों से
8: जी।
7: वैसे ही मलिएगा। मलने के बाद आप जैसा हमने बताया है वैसा रखिए। देखिए कितने सुंदर बन डोनट्स तैयार होते हैं। कभी भी आप इससे पाव भाजी बना सकती हैं, ऊपर चीनी मत छिड़किए। कभी भी ब्रेड बटर में दे सकती हैं, कभी को मोयनीज लगा दे सकती हैं, चाहे जैसे भी दीजिए। और देखिए आज की डिश आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी।
8: बहुत पसंद आएगी और मुझे तो बहुत पसंद आई।
7: सरल भी बहुत है।
8: बहुत सरल है मैम, मतलब इतनी जल्दी आप घर के डोनट्स खा सकते हैं।
7: बिल्कुल।
8: सोचिए वैसे होता है ना कि जब बच्चे कहते हैं मम्मी डोनट्स खाने तो मन में आता है आप बाहर से लेकर
7: ले।
8: लेकिन अब तो ऐसा नहीं करना है। मैम ने जैसे कि अभी बताया घर में तैयार होने वाले ये डोनट्स, तो फटाफट से अपने किचन में जाइए और अपने बच्चों के लिए इसे जरूर बनाइए। थैंक यू सो मच मैम।
7: नमस्कार श्रोताओं।
8: तो चलिए लिसनर्स चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ। बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपयू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है
7: आरजे अंशिका।
6: तो भाई, अभी रेसिपीज को हम लोगों ने सुना एंड अब बारी है आज के ब्यूटीफुल से टिप्स की, जो कि बहुत सारे टिप्स हैं, जिसे कहते हैं ना कि टिप ऑफ द डे। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि आपको आपके किचन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्यों अंशिका?
7: बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज है भाई बहुत ही प्यारा सा दिन और दिन पर हमने बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें की। तो आज हमारा टिप्स ऑफ द डे जो है, हाँ, वो भी बहुत प्यारे प्यारे।
6: तो सबसे पहला जो है वो है हाइड्रेशन और ताजगी। यानी कि जब हम व्रत रहते हैं, जैसे कि आज सोमवार का दिन है और हम लोग जब व्रत रहते हैं, तो व्रत के दिनों में केवल हम सादा पानी पीने के बजाय अगर नींबू, पुदीना या सेंधा नमक मिलाकर पिए, नारियल पानी या छाछ का सेवन दोपहर में करें, इससे शरीर में ना एक इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होती है और कमजोरी महसूस नहीं होती है। तो मतलब नींबू भी हम अमूमन देखा है आपने कि हम लोग कोई भी सैलेड लेते हैं स्पेशली व्रत में, तो नींबू को हम लोग जरूर लेते हैं, पुदीना हम खा सकते हैं या फिर सेंधा नमक। तो इन सब चीजों को पानी में मिला करके अगर हम पिएंगे तो वो हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहेगी और ताजगी बनी रहेगी। ये तो पहला टिप है, ठीक है। दूसरा है कि कुट्टू या सिंघाड़े का परफेक्ट आटा अगर आप ले रहे हैं कहीं से भी, तो आटे को देख करके लें। कई बार ऐसा होता है कि हमें आटे में एक स्मेल सी आती है, बट हमको लगता है कि ये अभी फ्रेश आटा है, इस वजह से वो कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। कुट्टू या सिंघाड़े के आटे में ग्लूटेन नहीं होता है, जिससे पूरियां टूटती हैं। मतलब एक ना एक बाउंडिंग नहीं होती है, जी बाइंडिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से वो टूटती हैं। इसे गूंथते समय हमेशा उबले आलू या कद्दूकस किए हुए आलू या अरबी का इस्तेमाल करें। पानी बहुत कम डालें और आटा गूंदने के तुरंत बाद पूड़ियां बना लें, वरना आटा गीला हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग आटा को कहते हैं गूंद के उसको मतलब साइड रख देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। अरबी भी हम खा सकते हैं व्रत में, तो पहले आप आलू को मैश करिए या फिर आप अरबी को मैश करिए, सेंधा नमक डालिए, हरी मिर्च डालिए, लाल मिर्च डालिए और उसको गूंदने के तुरंत बाद ही आप उसकी पूरियां बना लें, ताकि अगर आप तुरंत पूरियां नहीं बनाएंगे तो ये फिर बाद में और गीला हो जाता है, जिसके कारण से ये पूरियां नहीं बनती है। नेक्स्ट है कि साबूदाना खिचड़ी या वड़ा बनाते समय साबूदाना आपस में चिपक जाता है, इससे बचने के लिए साबूदाने को धोने के बाद सिर्फ उतना ही पानी डालें जिससे साबूदाना डूब जाए। लगभग आधा इंच ऊपर भिगोने के बाद इसे छान लें और बनाने से पहले एक चम्मच मूंगफली का या कोई भी घी जो होता है आप इसमें डाल सकते हैं, जिसके कारण से क्या होगा कि ये जो है ये आपस में चिपकेंगे नहीं। समझ में आया?
7: जी मैम।
6: इसके बाद है कम तेल और घी का कोई विकल्प अगर है तो बताते हैं। जैसे व्रत में क्या हो जाता है कि बहुत ऑयली ऑयली हो जाता है, अगर हमने कुट्टू के आटे की पुड़ियां बनाई हैं, उसको हमने ऐसे तवे पे फैला दिया है, उसकी रोटी बनाई है, तो बिना घी के तो वो बहुत सूख जल्दी जाता है, ये सभी को पता है। तो घी तो लगता ही है, लेकिन अगर हम घी ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर हमारा मुँह पूरा घी घी हो जाता है, ऑयली हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए एक ऑप्शन है जो कि मैं बता रही हूँ कि व्रत के खाने में अक्सर बहुत ज़्यादा घी या तेल, जैसे पूड़ी हो गई, पकौड़े हो गए, हो जाता है। तो उसका इस्तेमाल हम मतलब जी भर के खाते भी हैं क्योंकि वो अच्छी भी लगती हैं।
7: जी बिल्कुल।
6: जिससे सुस्ती आती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि व्रत के खाने के बाद जब हम लोग खा करके बैठते हैं तो हमें सुस्ती आती है। उसका मेन कारण ये होता है कि उसमें घी और तेल की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी जगह आप समा के चावल की इडली, साबुदाने के अप्पे या कद्दू के आटे का चिल्ला नॉनस्टिक तवे पर घी कम घी में बना सकते हैं। ओह माय गॉड, मतलब हम समा के चावल की इडली, एक चावल आता है जिसका नाम है समा
7: जी,
6: उसके चावल की इडली आप बना सकते हैं, साबुदाने के अप्पे बना सकते हैं या कद्दू के आटे का चिल्ला। जैसे मैंने अभी बताया था ना, कद्दू ले आओ, उसको सुखा लो, ठीक है,
7: कद्दू के आटे का।
6: मैं तुमको टेस्ट कर रही थी कि अभी तुम सही से सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो। इट मींस कि आपका ध्यान पूरा हमारी तरफ केंद्रित है। कद्दू नहीं मैडम, कुटू।
7: वही मैंने कहा, कद्दू का आटा कहाँ से आ
6: गया? मतलब तुम ध्यान से सुन रही थी?
7: Yes, of course.
6: Good.
7: आप खाने की बात बहुत ध्यान से।
6: अच्छा हाँ, हम तो भूल ही गए थे। सेंधा नमक जो हम लेते हैं, और व्रत में क्या होता है कि साधारणता नमक की जगह हम सेंधा नमक,
7: हाँ,
6: जिसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो थोड़ा कम नमकीन होता है, मतलब औरों की अपेक्षा
7: जी
6: थोड़ा कम होता है। तो उसको हम भर भर के, अगर हम नॉर्मल डेज में अगर खाना बना रहे हैं तो 2 चम्मच आप भर के डालेंगे ना, तब भी वो फीका ही लगेगा। तो सब्जी या चाट में नमक संतुलित रखने के लिए हमेशा थोड़े से भुने जीरे के पाउडर और नींबू के रस का इस्तेमाल करें, तो स्वाद जो है वो दुगना हो जाएगा।
7: वाह,
6: तुम व्रत हो आज?
7: नहीं,
6: लेकिन ये सब सुनने के बाद व्रत रखने का मन कर रहा है ना।
7: हाँ।
6: कितना कुछ आज हम लोगों ने व्रत के लिए बता दिया है ना,
7: मतलब व्रत रहे तो इसको आप खा सकते हैं। तो जो लोग व्रत नहीं रहते वो कोशिश करें व्रत रहने के लिए।
6: हाँ। तो भाई आप लोग भी, आप लोगों को बहुत सारी आज हम लोगों ने हल्की वाली टिप्स बता दी है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप व्रत रखना तो आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल करिए और अपने व्रत को और बनाएं सात्विक और पौष्टिक, क्योंकि अगर हम सही से खाएंगे नहीं, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हम फिर अपने आप को और एनर्जेटिक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, हमें दे इजाजत और अंशिका को भी दे इजाजत। हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

बिल्कुल जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसी प्यारे से सॉन्ग के साथ एंट्री ले ली है फिर से आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा वाले शो में जो कि है कॉलर ट्यून गोंडा। तो आइए सीधे चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं और फिर हम चलेंगे हमारी फरमाइशों की तरफ। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ सुरेंद्र यादव जी आ गए हैं और इसी के साथ लवली सिंह गोंडा। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कॉलर ट्यून में, और हमारे जो भी लिसनर्स हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है कॉलर ट्यून गोंडा में। जिनका नाम मैं ले पाई हूँ और जिनका नहीं ले पाई हूँ उनका भी। तो आइए अब सीधे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी सबसे पहली फरमाइश किसकी है और कौन सा सॉन्ग है। तो सबसे पहली फरमाइश जो कि है वो है सुनील कुशवाहा जी की, और उनका सॉन्ग भी बड़ा ही प्यारा है, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। तो आइए चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, इन्जॉय करते हैं। आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट वाले प्रोग्राम में जो कि है कॉलर ट्यून गोंडा। एक बात और बता दूं कि अगर हमारे और भी लिसनर्स जो कि हमें सुन रहे हैं वो अपनी फरमाइश हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फ़ोन उठाया डायल करना है 6393316429 और फटाफट से अपने या सॉन्ग को हम तक पहुंचा देना है। तो आइए चलिए सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को। स्टे ट्यून्ड।

सागर के पास कोई रहता है वो तुम, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और आइए अब चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है देवी प्रसाद जी की। तो आइए सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को।

आपको दिलवर न मिलेगा मुझे छोड़ के न जाओ। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। तो आइए चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है साहिबा जी की। तो आइए सुनते हैं साहिबा जी के सॉन्ग को।

सावन भी बरसाते ले आया है और बहुत ही प्यारी सी बरसात लेकर के ये सावन आया है। तो ये चलते हैं आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फरमाइश की तरफ। और हमारी जो अगली फरमाइश है वो है सुरेंद्र यादव जी की। तो आइए सुनते हैं सुरेंद्र जी के सॉन्ग को और इस सॉन्ग के बाद मिलती हूँ आपसे। आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम क्वालिटी उन गुणा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए सुनते हैं सुरेंद्र जी के सॉन्ग को।

शिवम का नारा है और शिव ही सहारा है, बिल्कुल सही। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है साहिद, साहिद अंसारी जी की। और साहिद अंसारी जी का सॉन्ग सुनते हैं और आते हैं इस गाने के उस पार अपनी अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए आप सभी इस प्यारे से सॉन्ग को सुनें और इन्जॉय करें।

अब क्या मांगू, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है अनन्या मिश्रा जी की। तो आइए अब सुनते हैं अनन्या जी के सॉन्ग को और आगे मिलते हैं अपनी अगली फरमाइश के साथ। फिलहाल सुनते हैं ये अनन्या जी का सॉन्ग।

नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इसी बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है राम सागर मौर्य जी की। और आइए सुनते हैं राम सागर मौर्य जी के सॉन्ग को। और एक बार और बता दूं लिसनर्स कि अगर आप भी अपने सॉन्ग को भेजना चाहते हैं हम तक, तो फटाफट से फ़ोन उठाएं, डायल करें 6393316429 और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दें, जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं राम सागर मौर्य जी का सॉन्ग।

बरखुरदार, बहुत खूब। आज तुम्हारी आवाज में वो शिद्दत, दिल में वो दर्द है जिसकी मुझे तलाश थी। आखिरकार इश्क और दर्द, जिंदगी के इन दो महासुरों से तुम्हारा परिचय हो ही गया। जानना चाहते हो मैं कौन हूं? इस नाचीज को बशीर खान कहते हैं। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज की तरफ से मेरा काम है नए कलाकारों को रास्ता दिखाना। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे जायज मकाम तक पहुंचाऊंगा। आओ।

0: राहुल कैसा है तू? बहुत दिनों से तेरी आवाज नहीं सुनी ना, कुछ बोलना यार।
1: क्या बोलू?
0: अरे कुछ भी बोलना यार।
1: क्या और भी कोई मेरी आवाज सुन रहा है?
0: हाँ नहीं नहीं कोई नहीं है यार, मैं अकेला हूँ यार।
1: अन्य की कोई जरूरत नहीं है,

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आशिकी मूवी का। तो आइए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है दुर्गा जी की। तो आइए सुनते हैं दुर्गा जी का सॉन्ग मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय। आइए ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं और मिलते हैं अपनी अगली फरमाइश के साथ।

शिवाय, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो की है राजू, राजू जी की। और राजू जी को जो सॉन्ग सुना है, आइए सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं, और वापस मिलती हूँ अपनी अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

तीखी मिर्ची भिंडी बाजार की, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी राजू जी की। आइए अब चलते बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है अगली फरमाइश इरशाद जी की। आइए सुनते हैं इरशाद जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे आपकी अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए सुनिए सॉन्ग को और इन्जॉय करिए।

फैसला क्या है तेरा फैसला, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी इरशाद जी ने। आइए अब चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है निशा जी की। तो आइए चलिए सुनते हैं निशा जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे अगली फरमाइश के साथ। लेकिन उससे पहले फिर एक बार बता दूँ कि हमारे जो भी लिसनर्स हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं या फिर एप्लीकेशन से, अगर वो अपनी फरमाइश हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फटाफट से फ़ोन उठाना है, डायल करना है 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुँचा देना है। तो आइए चलिए सुनते हैं निशा जी का सॉन्ग।

बिल्कुल, छुप छुप के यूं ही रोते रोते दिन ये गुजर जाते हैं। आइए बढ़ते हैं, ये सॉन्ग था निशा जी का, और आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है सुरेश कुमार जी की, जो कि हमें चौक से सुनते हैं। और सुरेश जी को सुनना है सॉन्ग रिम झिम गाए सावन ये गीत। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इस सॉन्ग के उस पार मिलती हूँ अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में।

पश्चिम के ये गीत सावन गाए, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी सुरेश कुमार जी ने। आइए अब चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है महेंद्र जी की। तो आइए सुनते हैं महेंद्र जी के सॉन्ग को।

बिल्कुल, सारी उम्र दामन थाम चलूं तेरे साथ चलूं। तुम आए बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश थी महेंद्र जी की। आइए अब चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है समायरा जी की। आइए सुनते हैं समायरा जी के सॉन्ग को।

पल पल दिल के पास तुम रहते हो, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है मुमताज़ अंसारी जी की। आइए सुनते हैं मुमताज़ अंसारी जी के सॉन्ग को।

बिल्कुल हाल बड़ा बेहाल है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। आइए अब चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है, हमारी अगली फरमाइश है धर्मेंद्र मोहन जी की, और धर्मेंद्र मोहन जी का सॉन्ग है कहाँ गया बेदर्दी मन बड़ा तड़पा के। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और मिलती हूँ आपसे अगली फरमाइश के साथ।

बिल्कुल मन को तड़पा के दिल का चैन चुरा के कहाँ गया बेदर्दी। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है। हमारी अगली फरमाइश है बहुत ही हमारे प्यारे से लिसनर है राकेश जी, जिनकी फरमाइश है। आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा भजन।

बिल्कुल डमरू वाले बाबा, तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। आइए चलते हैं अब अगली फरमाइश की तरफ, जो की है हमारी अगली फरमाइश राकेश कुमार शुक्ला जी की। तो आइए सुनते हैं उनका सॉन्ग जो की है अनादि अनंत। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग और मिलती हूँ आपसे अगली फरमाइश के साथ।

अनादि अनंता। तो अब आइए बढ़ते हैं हमारी अगली, नहीं कहूँगी मैं उसे, आखिरी फरमाइश कहूँगी हमारी आज के शो की। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ इस शो में अभी तक बने रहने के लिए। तो हम लास्ट सॉन्ग को प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स में हमारे जो भी लिसनर्स हैं, विकास तिवारी जी, लवली जी, महेंद्र जी और बाकी सभी जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, समय थोड़ा सा कम है, उन सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत बहुत थैंक यू। तो आइए चलिए बढ़ते हैं हमारी लास्ट वाली फरमाइश की तरफ, और अब मैं आपसे कल मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, और रेडियो ज्ञान असली को सुनते रहिए। बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे रेडियो 11.6 FM, ये है कोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजी अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम गोधुली, शाम 5 बज चुके हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, और हम आज एक बार फिर से एक ऐसी खास शख्सियत को लेकर के आए हैं जिनसे हमें बातचीत करनी है, उनके बारे में जानना है, एंड उनकी फील्ड जो है वो काफी ज्यादा काम की है, यानी हम जो बताने वाले आप उनके कार्यक्षेत्र से खुद को रिलेट कर पाएंगे और कहेंगे वाह भाई, आज तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। जी हाँ, सो आज हमारे साथ में मौजूद है यंग और डायनेमिक पर्सनालिटी डॉक्टर श्रुति गुप्ता, जो कि MD डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा में। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं अपने इस शो में जिसका नाम है गोधुली।
2: थैंक यू सो मच
1: टू यू। एंड जैसा कि अभी हमने बताया, गोंडावासी आपके बारे में नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर आपके कार्यक्षेत्र के बारे में कि ये जो त्वचा विशेषज्ञ होते हैं इनका काम क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम जानना ये चाहेंगे कि प्लीज आप बताएं आपकी पैदाइश कहाँ की है, आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली में कौन कौन है, पिताजी क्या करते हैं, कितने सिबलिंग्स हैं, और आपकी अर्ली एजुकेशन के बारे में।
2: मेरा नाम डॉक्टर श्रुति गुप्ता है, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ, एक्चुअली वहीं पे पैदा हुई, वहीं पे अर्ली एजुकेशन 12th तक वहीं पे पढ़ी हूँ, उसके बाद प्रिपेयर करके MBBS में एडमिशन हुआ, वो मेरठ में एडमिशन हुआ, 7 साल मेरठ में ही MBBS की पढ़ाई करी पूरी, फिर आगरा से MD में फाइनली एडमिशन मिला, 3 साल MD करके अब यहाँ गोंडा में प्रैक्टिस कर रही हूँ।
1: ऑलराइट, तो ये तो आपने चूंकि डॉक्टर बनने का सफर दावा बताया, अब चलते हैं आपके एक बार वापस से फैमिली की तरफ, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं।
2: मेरे फादर डॉक्टर हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, डॉक्टर अजीत गुप्ता, मुरादाबाद में ही प्रैक्टिस करते हैं, मदर होम मेकर है, और मेरे भाई हैं सिबलिंग, वो डॉक्टर भी हैं, 1 साल बड़े हैं, और डॉक्टर प्रणव गुप्ता नाम है।
1: अच्छा, तो ये ऐसी कौन सी चक्की का आटा खाया था जी, पूरा की पूरी फैमिली डॉक्टर ही बनी, इसके बारे में बताया।
2: चक्की का तो नहीं था।
1: अच्छा, चक्की का नहीं था, मार्केट का था।
2: हाँ, मार्केट का आटा था।
1: अच्छा, वैसे ही होता है कि जिस प्रोफेशन में फादर होते हैं, वालिद होते हैं आपके, कहीं ना कहीं उसका असर होता है बच्चों पे, और कहीं ना कहीं आपने बताया कि आपके भाई भी डॉक्टर हैं और आप खुद भी चूंकि डॉक्टर हैं यहाँ गोंडा में। ये तो आपने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। बच्चे जो होते हैं वो शरारती होते हैं, शैतान होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, आपका बचपना कैसा रहा, मतलब थोड़ा शरारती थी आप या बहुत चुप चुप रहने वाले बच्चों में से थी, क्या थी, कैसी थी आप?
2: बचपन में मैं अपने इस टाइम के एटीट्यूड से बहुत डिफरेंट थी, तब मैं एकदम शांत हुआ करती थी। उस टाइम पे कुछ दोस्तों ने, अब बड़े होते हुए दोस्तों ने ऐसा बना दिया है कि अब बातें कर सकते हैं, पर उस टाइम बहुत शांत स्वभाव के थे।
1: ओके, यानी बड़ी शाय पर्सनालिटी की थी, लेकिन उसके बाद होता ना कि दोस्तों की संगत जो होती है बहुत कुछ सिखा देती है, तो ऐसा बनने के बाद अच्छा लगता है या लगता है कि नहीं गलत किया दोस्तों ने?
2: नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा किया दोस्तों ने, सिखा दिया बातें करनी है, बिल्कुल।
1: ऑलराइट, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये एक अच्छी बात आपकी बात से निकल के आई कि आपके फ्रेंड्स बड़े अच्छे हैं, और मैं तो चाहूंगा कि भाई ऐसे फ्रेंड्स सभी को मिले जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करें। अभी तो बात हो गई ये कि फ्रेंड्स कैसे थे, आप पढ़ने में कैसी थी? आप
2: पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट थी, कभी मतलब हाँ कम नहीं था, पर बहुत ऐसे नहीं पढ़ना होता था, पेरेंट्स का भी फोर्स नहीं करते थे कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, कम क्यों आ रहे हैं नंबर, हमेशा मस्ती करते हुए ही पढ़ाई करी है।
1: अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, बच्चों को जो है वो कुछ चीजों से डर लगता है, आपको किस चीज से डर लगता था बचपन में?
2: पॉलिटिकल साइंस बहुत टफ लगती थी।
1: अच्छा,
2: बस उसी से डर लगता था और कुछ अलग से कुछ नहीं।
1: अच्छा, वैसे मैं एक चीज याद दिला दूं कि बच्चों को सुई से बड़ा डर लगता है, इंजेक्शन से, और फादर भी आपके डॉक्टर रहे हैं, तो कभी फादर ने ऐसा डराने के लिए नहीं कहा कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो इंजेक्शन लगा देंगे?
2: कभी नहीं। मेरे पेरेंट्स का एक ही नियम है, कभी डराना नहीं है बच्चों को।
1: ओके, वाओ,
2: आज भी वही नियम है, कभी डराना नहीं है कि सुई लगा देंगे या पुलिस आ जाएगी।
1: मतलब कह सकते हैं कि फादर से आपकी जो बॉन्डिंग है वो एक फ्रेंड वाली है, उन्होंने मतलब इस तरह से आप लोग को फ्री कर रखा है कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और शायद अपनी लाइफ में जो भी चीजें चल रही है उसको भी आप शेयर करते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग है। वेरी नाइस। मदर से कैसा आपका रिलेशन है आज?
2: मदर तो एकदम फ्रेंड जैसे ही रहती हैं।
1: ओके।
2: उनसे कोई बात नहीं बताई, कोई प्रॉब्लम नहीं बताई तो दिन पूरा नहीं होता है।
1: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो बड़ी एक अच्छा एग्जाम्पल सामने आया आपका कि दिन की जो भी बातें होती है कहीं ना कहीं आप शेयर करते होंगे। एंड जाहिर सी बात है, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठते हैं, वहाँ हर तरह से पेशेंट्स आते हैं, कभी दिन बहुत अच्छा भी जाता होगा, कभी बड़ा हैक्टिक जाता होगा, तो कहीं ना कहीं आप शेयरिंग करते होंगे अपने मदर से, अपने फादर से करते होंगे।
2: हर इंसिडेंट उनको पता होता है।
1: अच्छा, उनको ये भी पता होता है क्या कि सुबह आज नाश्ते में क्या खाया?
2: बिल्कुल।
1: वेरी नाइस।
2: उनसे पूछ के ही मनाना होता है कभी कभी।
1: अच्छा, उनसे पूछ के। मुझे अपना वो दिन याद आ गया, वो दिन बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले की है। पहली बार लाइफ में खिचड़ी बनाया था, बड़ी सिस्टर को वीडियो कॉल पे लेकर के बाकायदा, कि हम क्वांटिटी दिखा सके कि देखो ये हम इतना डाल रहे हैं। एंड यकीन मानी कि बड़ी लाजवाब बनी थी। एंड दूसरी बार जब बनाया कि हम लोग शायद जान गए, कॉन्फिडेंट थे, वो खाने लायक नहीं थी। तो ये खैर होता है, ये सब चीजें चलती रहती है, लाइफ का पार्ट है। मैं ये जानना चाहूंगा कि हर किसी का अपना एक एम्बिशन होता है। सो बचपन में एम्बिशन की अगर हम बात करें, आप और अगर हम अपनी बात करें, जो 90s के बच्चे हैं, उनका ज्यादा बहुत ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट या पायलट एक नाम था, तो ये तीन चार चीजों में चूज करते थे। आपका ऐसा तो नहीं कि कोई और सपना था और उसके बाद आज आप कहीं और हैं?
2: नहीं, सपना हमेशा फादर को देखा, क्योंकि पता ही नहीं था कि कुछ और भी कर सकते हैं। मन में सिर्फ यही था कि डॉक्टर बनना है। कभी पेरेंट्स ने कुछ कहा नहीं, जबकि बड़े होके तो बल्कि पेरेंट्स मना करते थे कि कुछ और कर लो।
1: अच्छा,
2: डॉक्टर में बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत साल, बट क्योंकि बनना था, बचपन से सोच रखा था, तो डॉक्टर ही बनना था।
1: तो कह सकते हैं कि पापा की जो प्रोफेशन की छवि थी वो आप पे पड़ चुकी थी, और कहीं ना कहीं आपका कोई डाउट नहीं था, मुझे बनना है तो डॉक्टर ही बनना है।
2: बिल्कुल।
1: सो आप ये त्वचा रोग विशेषज्ञ जो, इसमें कैसे आपका आना हुआ?
2: त्वचा रोग विशेषज्ञ एक्चुअली रैंक इस टाइम पे बहुत अफेक्ट करती है आपकी ब्रांच। जब रैंक आपकी चॉइस की आ जाती है, उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो पढ़ाई करके रैंक तो आ गई, तो ऑप्शंस खुल गए। मेडिसिन ले सकते थे उस टाइम पे, बट क्योंकि थोड़ा आजकल ऑप्शंस में वो त्वचा रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो बहुत ऊपर होते हैं।
1: अच्छा, ऊपर होते हैं।
2: हाँ, बहुत कम लोगों को मिलते हैं सीट्स, डॉक्टर्स बहुत कम है त्वचा रोग के,
1: लिमिटेड सीट्स,
2: बहुत कम लोग।
1: ओके।
2: और आजकल लोग कॉन्शियस भी हो गए हैं बहुत ज्यादा, समझने लगे हैं इस चीज को कि कुछ दिक्कत है हमें इससे रिलेटेड भी, तो वो डॉक्टर का ओपिनियन सीख भी करते हैं स्किन के लिए। पहले इतना नहीं हुआ करता था,
1: राइट,
2: तो अब थोड़ा सा इस तरफ इंक्लिनेशन हो गया।
1: ऑलराइट, तो मतलब आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो एक ब्रांच है इग्नोर होती है। मतलब पहले तो लोग ऐसे चल जाता था कि जैसा भी है अपने आप, आपने होम रेमेडी को इस्तेमाल किया, घर की कोई चीज सही कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि नहीं, एक बीमारी है। और देखा गया है कि लोग अपनी त्वचा के प्रति, मतलब खुद के लुक्स के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, और सिर्फ महिलाएं नहीं, अभी तक तो समाज में था कि सिर्फ महिलाओं के दो दाने निकल जाते तो परेशान। मैंने अपने कई फ्रेंड्स को देखा है, वो दो दाने निकलते हैं तो सुबह से शाम तक उनको सिर्फ दो दानों की इर्द-गिर्द ही बात करनी होती है। तो इसके लिए आप जैसे लोग होते हैं विशेषज्ञ जो इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी चूंकि आपने काम करना स्टार्ट किया है, आपकी पहली पोस्टिंग ये गोंडा में ही हुई या कहीं और हुई थी?
2: नहीं, पहली पोस्टिंग गोंडा में हुई है। MD के बाद में हमें 2 साल सरकारी सेवा देने होती है, जो 2 साल बॉन्डेड होते हैं हम। तो उसमें हम लोग को जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं ये सब, वहाँ पे पोस्टिंग दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहली पोस्टिंग मेरी गोंडा में मिली है मुझे।
1: ऑलराइट, तो भाई गोंडा पे भी आएंगे, लेकिन गोंडा से पहले भी एक और सफर जो आपने तय किया है एमबीबीएस का, उस पे आते हैं। क्योंकि देखिए, आप जब अपने शहर से बाहर निकलते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहां का माहौल बहुत अलग होता है। वो घर वाला कंफर्ट नहीं मिल पाता है, ना सोना उठना होता है, ना खाने पीने में होता है, ना लोग आपके पास मम्मी और पापा वाले होते हैं कि आपके नखरों को उठा लेंगे, या जैसा आप कहीं बीमार हो गए हैं तो फौरन उस चीज को लेकर के ट्रीटमेंट, तो काफी अलग होता है। एज फीमेल तो थोड़ा सा मुश्किलें भी आती हैं। आपका कितना चैलेंजिंग रहा उस दौरान, जब आप एमबीबीएस में आपने एडमिशन ले लिया और वहां पे आप पढ़ाई कर रही थी, कैसा कुछ रहा?
2: एमबीबीएस मेरे घर के पास था बहुत, एक्चुअली मेरठ मुरादाबाद से बहुत 100 किलोमीटर की रेंज में था।
1: ओके,
2: तो कभी ऐसे घर की कमी महसूस नहीं हुई।
1: ऑलराइट,
2: कभी कुछ दिक्कत हुई तो तुरंत घर चले जाते थे।
1: ओके,
2: और 7 साल बहुत बहुत लंबा टाइम होता है एक्चुअली
1: एमबीबीएस
2: वाला। हाँ, तो प्रिपरेशन एमबीबीएस से पहले भी प्रिपरेशन किया, तब थोड़ा सा प्रिपेयर हो गए कि अब इतने साल बाहर रहना है। फिर एमबीबीएस में तो दोस्त बन जाते हैं जब, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है।
1: ओके, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा कि जब दोस्त बन जाते हैं तो लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो

0: होता था, क्लिनिक्स होते थे, उसमें हम लोग को समझ में आया एक्चुअली में कितना, मतलब लोग कितना परेशान है, इन सब बात कैसे करनी है, जो एक्चुअली पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स से बात करना हम लोग MBBS में सीखते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझना, उनसे किस तरीके से बात करनी, कितनी बात करनी है,
1: यानी पब्लिक डीलिंग।
0: जी, पब्लिक डीलिंग।
1: ओके।
0: वो हम लोगों ने MBBS में सीखी है।
1: और मुझे लगता है ये सबसे जरूरी पार्ट होता है, क्योंकि पढ़ाई जब आप कर रहे होते हैं तो आपका सिर्फ जो सामना होता है या तो अपने कलीग्स जो आपके क्लासमेट्स होते हैं या फिर प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स आपके होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आपका रियल एक्सपीरियंस होता है वो जब डीलिंग आप करते हैं पब्लिक को, पेशेंट्स को जब आप डील करते हैं, वहां पे होता है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी के लिए जब आप कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं आपको लेकर के, और कुछ ऐसे होते हैं कि भड़क भी जाते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को या आपके चैलेंजेस को नहीं समझ पाते, वो शायद सिर्फ अपनी बात आगे रखते हैं। सो ऑफकोर्स ये पब्लिक डीलिंग समझना इस प्रोफेशन के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपने किया होगा, वहां पे देखे होंगे केसेस, तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। देखिए, जिस भी आप ब्रांच में जाइए, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सीडेंटल केसेस आते हैं जिसमें आपको ट्रीट करना ही करना होता है। उस दौरान क्या वो डर लगा था, क्या लगा कि नहीं यार गलत आ गए, डॉक्टर गलत बन के कुछ और बन सकते थे, या कैसा क्या था इसके बारे में?
0: डॉक्टर बन के हमेशा सिर्फ एक सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग थी कि पेशेंट्स की आप हेल्प कर सकते हो। कोई और प्रोफेशन कभी इस तरीके का सैटिस्फैक्शन नहीं गेन कर सकता कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, उनको ठीक कर रहे हो। आजकल समाज में तो ये डिफरेंस आ गया है वैसे, कि पेशेंट्स भी अब इतना नहीं समझते। पहले डॉक्टर्स को इतना भगवान कंसिडर किया जाता था कि ये तो भगवान मिल गए। अभी बोलते हैं बहुत लोग कि हमें तो भगवान मिल गए, बट ठीक है, इंसान ही समझे, बट अच्छा लगता है।
1: बट आपकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी समझे। ऑफ कोर्स डॉक्टर भी एक इंसान होते हैं, और मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन इतना आसान नहीं होता। और जो आपने एक बात कही सेटिस्फैक्शन की, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो शायद ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका कोई टाइमिंग नहीं होता है। बाकी जगह वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं कि आपको इतने घंटे काम करना है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में स्पेशली डॉक्टर्स के लिए, उनके लिए बिल्कुल नहीं पता होता है कि कब केसेस आ जाएंगे, कब आपको उठ के भागना पड़ेगा, या आपको कितना टाइम लग जाएगा, कितने बुरे केसेस आपको देखने होंगे। अच्छा, इस तरह से केसेस देखते हैं, इतना ज्यादा पब्लिक को डील करते हैं, इतने ज्यादा लोगों से आप मिलते हैं, एट द एंड आप भी एग्जॉस्ट हो जाते होंगे। खुद को कूल करने के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए क्या चीजें आप करते हैं?
0: खुद को रिलैक्स करने के लिए दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त हैं, घर वाले हैं, बात करो, कूल डाउन हो जाता है खुद। वैसे मेरी जो ब्रांच है एक्चुअली स्किन में, इतना कभी हाइपर होते ही नहीं हम, सब रिलैक्स रहता है सब कुछ।
1: अच्छा, बहुत रिलैक्स रहता है। लेकिन अभी आपने फ्रेंड्स की बात की, आपके फ्रेंड्स तो बाहर होंगे ना, आप तो गोंडा में है अभी, कैसे मतलब?
0: आजकल सोशल मीडिया है, फोन है, सबसे इजी।
1: अच्छा, जेंजी वाली आपने जो वेपन है वो आपने भी अपना लिया, जैसा हम सभी लोगों ने अपना लिया। बेशक बेशक। एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं फैमिली के साथ में जुड़े रहना, फ्रेंड्स के साथ में जुड़े रहना, यही आपको थोड़ा रिलैक्स कर सकता है, क्योंकि आप अलग अलग जगह जाते हैं और बहुत सारी चीजें आपके साथ दिन भर में होती रहती हैं, जो अगर आप शायद खुद अकेले ही सिर्फ सोचा करेंगे तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप। तो उसको शेयर करना या उन चीजों पर डिस्कस करना,
0: ओपिनियंस लेना, कहां हमने कुछ गलती कर दी, वो लोग भी बताते हैं कि थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, नहीं ऐसा दूसरे का भी कुछ ओपिनियन हो सकता है।
1: एग्जैक्टली। वैसे क्या हम जाना चाहेंगे, डॉक्टर साहिबा को गुस्सा बहुत आता है क्या? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं लग रहा है स्माइल देख के। ऑलराइट। सो खैर, ये पेशा ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंस की आपको खुद भी जरूरत होती है, क्योंकि हर तरह के लोग आपको डील करने होते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी चूंकि हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता से, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही है, त्वचा विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही हैं, और साथ ही साथ अभी हमारे एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के उस पार वापस आने वाले हैं, और त्वचा से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो हम अपनी जनरल लाइफ में फेस करते हैं, उसको लेकर के बातचीत करने वाले हैं। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए अपना इवनिंग वाला शो गोधली अपने फेवरेट आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा, शहर की धड़कन।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान आपके अपने प्रोग्राम गोधुली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM। ये है गोंडा, शहर की धड़कन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बताया था कि आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद है डॉक्टर श्रुति गुप्ता, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ है। जाने से पहले हमने जानने की ये कोशिश की थी कि भाई ये त्वचा रोग विशेषज्ञ का काम क्या होता है। त्वचा से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम्स आती होंगी, सो प्लीज बताएं कि आपके अंडर में किन किन तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, किन प्रॉब्लम्स को आप क्योर करते हैं।
4: तो हमारे अंडर सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्किन की, वो है दाद।
3: दाद
4: जो हर किसी को, हर एज ग्रुप में, फीमेल्स मेल सब में मिल जाता है
3: जी।
4: और स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा लेयरिंग होती है, बहुत ज्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं, कवर करना पड़ता है, तो उनमें ज्यादा मिल जाता है। और क्या बीमारी होती है, आजकल गर्मियां बहुत हैं, गर्मियों में पसीने की वजह से दाद भी बढ़ता है। घमोरियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं आजकल, घमोरी की वजह से दाने आना शरीर पे, प्लस धूप इतनी ज्यादा है, तो धूप की वजह से हमारे शरीर में हम एक रिएक्शंस बोलते हैं, जो लाइट रिएक्शंस हो जाते हैं, वो बहुत कॉमन हो गए हैं। और चीजें होती हैं जो हमारे अंडर हम लोग देखते हैं, वो होते हैं खाज, कि एक दूसरे से फैलने वाली खुजली हो जाना।
3: खाज, बिल्कुल।
4: और हाँ, शरीर पे मोटे मोटे चट्टे हो जाना, जिसमें खाल मोटी मोटी पपड़ी के फॉर्म में निकलने लगती है। कील मुहासे यूथ में स्पेशली बहुत ज्यादा कॉमन है, कि एक्ने होने लग गया है।
3: टीनेजर्स में बहुत देखा जाता है, राइट?
4: तो ये सब कॉमन डिजीज़।
3: हेयर फॉल भी आता है।
4: हेयर फॉल भी आता है।
3: अरे बाप रे, फिर तो मतलब जो मेल्स होते होंगे वो परेशान कर देते होंगे, मैडम ये हेयर फॉल बहुत तेजी से हो रहा है।
4: बहुत ज्यादा, स्पेशली जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशियाज हैं, जो जेनेटिक फॉर्म में आते हैं, पैटर्नड एलोपेशिया होते हैं, वो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो वाले पेशेंट्स। दूसरा, एनवायरमेंटल कॉजेज बहुत हो गए हैं आजकल हेयर फॉल के, पानी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, या फिर जो जितना भी हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं हमारे खाने में, जो हमारी बॉडी में जा रहा है, उस सब की वजह से हमारे को बहुत जल्दी यूथ में 15-16 साल के बच्चों में ग्रे हेयर हो जाना, हेयर फॉल होना, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। वो सब पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो हमारे खाने में है, उन सब की वजह से ज्यादा हो गया है अब।
3: हाँ, एक चीज मैंने अभी बहुत गौर की है कि अभी यंगस्टर्स हैं, इवन मेरी एज से काफी छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, उनके भी हेयर वाइट हो रहे हैं। तो इसके पीछे भी क्या जो आप ये बता रहे कॉजेज, यही वजह है?
4: बिल्कुल, जितने भी हम केमिकल्स पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, हमारे नॉर्मल खाने में जो सब्जियां वगैरह हम खाते हैं, उन सब में भी इतने केमिकल्स हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि जंक फूड मत खाओ सिर्फ, क्योंकि हमारे जो कॉमनली ईटन वेजिटेबल्स हैं, मतलब सबसे कॉमन
3: हेल्दी बोलते हैं,
4: हाँ हेल्दी बोलते हैं, लौकी तोरई टाइप की सब्जियां,
3: राइट,
4: उन सब में भी इतने केमिकल्स हैं। तो वो सब एक्सपोजर जब इतना ज्यादा होगा, तो बच्चों तक में इतने ग्रे हेयर हो रहे हैं,
3: तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स नजर आती है। अच्छा, अभी आपने सबसे पहले जो नाम लिया था वो लिया था दाद का। ये दाद किस वजह से होते हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है?
4: दाद हमारे एक्चुअली एक फंगल इन्फेक्शन है.
3: ओके.
4: तो फंगल इन्फेक्शंस, फंगस हमेशा वहां ग्रो करती है जहां पे डैम्प होता है, जहां पे गीला रहता है शरीर.
3: ओके.
4: तो वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जहां पे हमारे को पसीना ज्यादा आएगा, ग्रोइन में होगा या फिर आर्मपिट्स में होगा. बाकी फंगस एक्चुअली सब जगह ग्रो कर सकती है. एक बार अगर स्टार्ट हो गया वो सब जगह फैल सकता है, सर से लेके पैर के उंगली तक.
3: ओके. मतलब इतना डेंजरस भी होता है.
4: बहुत ज्यादा.
3: ओके. तो आपने कहा कि फंगल इन्फेक्शन होता है और स्पेशली वहां ज्यादा ग्रो करते हैं जहां नमी होती है, जहां गीलापन होता है. ऑलराइट. इसके अलावा जैसे आपने बताया था कि ये एक्ने होता है, कील मुहासे आते हैं, सो टीनेजर्स में तो होता ही होता है. मान लीजिए कोई और है जो 30 प्लस है, 40 प्लस है, उसको अगर हो रहा है तो ये क्या ये भी कॉमन है या कोई बीमारी है?
4: नहीं, ये भी कॉमन है. आजकल स्पेशली फीमेल्स जो गोरा दिखने के लिए बहुत सारे जो OTC मतलब क्रीम्स अवेलेबल होती हैं.
3: ओके.
4: हाँ, वो सब बहुत ज्यादा लगाते हैं क्योंकि गोरा होना है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में कील मुहासे होना बहुत कॉमन हो गया है. कमर्शियली अवेलेबल, क्योंकि हमारे समाज में इतना गोरा होने की इतनी ज्यादा होड़ है. कोई हल्का सा भी नॉर्मल डस्की कॉम्प्लेक्शन भी होता है उसको बहुत परेशान किया जाता है, तो वो परेशानी के चक्कर में क्रीम लगा लगा के गोरा होना चाहते हैं, जिनमें स्टेरॉइड होता है.
3: Okay.
4: उस स्टेरॉइड की वजह से बहुत दाने आते हैं. हॉर्मोन्स जब किसी के ऊपर नीचे हो रहे हो फीमेल्स में, उन लोगों में बहुत सारे दाने आते हैं, स्पेशली लोअर फेस पे. तो एडल्ट्स पॉपुलेशन में भी अबव 30 एक्ने हो सकता है.
3: ओके. उनमें भी ये एक्ने हो सकता है. ऑलराइट. एंड हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस होड़ में कि शायद रंग साफ हो, केमिकल्स हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो नेचुरल तरीका नहीं होता है गोरा करने का, जबकि ये जो प्रोसेस है ये पिगमेंटेशन का है. बट अगर हम फोर्सली बाहर से करते हैं तो उसका हमें ये इस तरह से परिणाम जो है वो भुगतना पड़ता है. अच्छा, इसके अलावा हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि मान लीजिए किसी को त्वचा संबंधी कोई बीमारी हो रही है, कोई रोग हो रहा है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? कोई लक्षण होते हैं कि हम उसको जान पाए कि हमें कोई स्किन रोग हो रहा है?
4: सबसे कॉमन लक्षण तो यही है कि हमारे को खुजली होने लगती है.
3: Okay.
4: स्किन जरा सा भी ड्राई होगी या कोई भी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहला सिम्टम खुजली होती है, उसकी वजह से हम जान सकते हैं. नहीं तो कुछ स्किन पे ड्राइनेस की वजह से कुछ वाइट चट्टे हो जाना, कुछ निशान पड़ जाना, उसकी वजह से हम सबसे पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो.
3: ओके. तो ये तो देखिए ऐसी कई बीमारी हैं जो कॉमनली हम लोग भी जानते हैं कि दाद, खाज, खुजली, ये सब है जिसका ट्रीटमेंट किया जाए तो हो जाता है. लेकिन हम जानना ये भी चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी भी बीमारी होती है जो बड़ी बीमारी कहलाती है त्वचा के लिए? तो अगर है तो वो कौन सी बीमारी और क्या होता है उसमें?
4: बहुत बड़ी बीमारियां होती हैं. इनमें हम लोग सोराइसिस होता है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, जो एक्चुअली में स्किन के साथ में अंदरूनी ऑर्गन्स जितनी भी होती हैं उन सबको भी इन्वॉल्व करता है. तो उसमें मेडिसिन, रूमेटोलॉजी और स्किन एक साथ, तीनों डिसिप्लिनरी अप्रोच का हमें तीनों डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ता है, मतलब सबका ओपिनियन लेना पड़ता है. और भी बीमारियां हैं जिसमें आजकल स्किन कैंसर्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं.
3: राइट.
4: सन एक्सपोजर की वजह से, हम जब क्यूमुलेटिव सन एक्सपोजर जिसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब बहुत टाइम तक धूप में रहते हैं, आजकल बेसल सेल कार्सिनोमा हम बोलते हैं, BCC होता है, जो धूप की वजह से ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा होने लगा है. लोगों को पता ही नहीं है कि मुंह पे इतने बड़े बड़े छाले और निशान हो रहे हैं, वो कैंसर है.
3: ओके. मतलब उनको ये अंदाजा भी नहीं होता है कि उनको कैंसर हो रहा है.
4: जी.
3: अच्छा, तो किस तरह के निशान होते हैं? कोई स्पेसिफिक शेप में होते हैं? क्या क्या होता है उसमें?
4: शेप नहीं होता उसे, हम बोलते भी रोडेंट अल्सर है, जो ऐसा लगता है कि चूहे ने पूरा चेहरा को खा लिया.
3: ओह. ओके.
4: पूरा छाला हो जाना, गड्ढा पड़ जाना चेहरे पर, इस पे आँख के और नाक के पास में यहाँ पे बड़े बड़े निशान होना, गड्ढे हो जाना, बीडेड सी बॉर्डर होती है उसकी, जो उठी उठी सी लगती है, ऐसा लगता है उसके अंदर पूरा किसी चूहे ने खा लिया हो, उस तरीके के निशान हो जाना, वो कैंसर होता है. और वो उन्हीं एरियाज में क्योंकि ज्यादा होता है जहाँ पे सन एक्सपोजर ज्यादा, धूप ज्यादा पड़ रही है.
3: अच्छा, एक कॉज तो आपने बताया कि धूप यानी सूरज की रोशनी जहाँ ज्यादा पड़ती है, और भी कोई कॉजेज होता है स्किन कैंसर होने के पीछे?
4: वो सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, और भी कुछ केमिकल्स की वजह से भी होता है, जो हम लोग बहुत सारे केमिकल्स लगाते हैं ब्लीचेस वगैरह लगाते हैं जो बहुत लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से अंदर हमारे डीएनए को डैमेज कर सकता है, उस सब की वजह से भी कैंसर हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, उसकी वजह से कैंसर्स हो सकते हैं, जो बहुत टाइम तक हमारे वॉट्स किसी के बॉडी में रह रहा है उन सब की वजह से कैंसर्स हो सकते हैं, वो कैंसर में कन्वर्ट कर सकता है।
3: जी, एक बहुत बड़ी बीमारी का नाम हमने जो सुना है मेलानोमा, ये कौन सी बीमारी होती है, इसमें क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या संभव है या नहीं है?
4: मेलानोमा इंडिया में अभी इतना नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे बहुत फेयर लोग होते हैं, जो जैसे कॉकेशियंस हैं, जैसे यूके यूएस के लोग हैं, उन लोगों में ज़्यादा होता है, उसमें भी सन एक्सपोजर की वजह से ज़्यादा होता है, और मोस्टली हमारे नेल बेड्स में इन्फेक्ट मतलब कैंसर डेवलप होता है, वो नेल बेड्स का कैंसर होता है, कभी कभी पूरी बॉडी में फैल सकता है। एक सिंगर हुआ करते थे बॉब मार्ले, उनकी डेथ मेलानोमा से हुई थी जो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया था।
3: ओके।
4: पर इंडिया में अभी ये इतना ज्यादा सोर्स ऑफ वरी नहीं है, क्योंकि इंडिया में मेलानोमास इतने नहीं होते हैं।
3: ओके, तो आपने बताया कि मेलानोमा के जो केसेस हैं वो इंडिया में इतने नहीं है। कहने का सेंस ये, कहीं ना कहीं फिर हम ये मान सकते हैं कि एरिया स्पेसिफिक बड़ी प्रॉब्लम डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप रहते कहाँ हैं, किस रीजन में हैं, किस जगह है, सनलाइट वहाँ पे कैसे आती है, कैसे है,
4: आपकी स्किन क्लाइमेट का कलर क्या है,
3: स्किन का कलर क्या है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि गोरे लोगों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, एक तो हाईलाइट भी हो जाती है, दूसरी बात है प्रॉब्लम्स भी होती है, ऐसा क्या होता है, इसके पीछे क्या?
4: हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग डार्क हैं,
3: डार्क है,
4: हाँ, डस्की हैं। जो लोग बहुत गोरे होते हैं, बहुत फेयर होते हैं, उन लोगों में मेलानिन नहीं होता है। मेलानिन हमारा स्किन का सबसे सेव करने वाली चीज है, मतलब स्किन में मेलानोसाइट्स जो होती हैं वो हमारे सेवियर की तरह समझिए आप।
3: ओके।
4: वो मेलानिन क्रिएट करेंगे जो हमारे को सन एक्सपोजर से बचाएगी। टैनिंग भी हम उसी को कहते हैं, जहाँ पे धूप ज्यादा पड़ रही है वहाँ मेलानिन इंक्रीज हो रहा है, वहाँ बॉडी हमारे को बचा रही है कि हम जल ना जाएं।
3: ओके।
4: कॉकेशियंस में मेलानिन नहीं बन पाता, वहाँ पे स्किन इतनी लाइट होती है, मेलानोसाइट्स इतना कम होते हैं कि वो धूप से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए उन लोगों में धूप की दिक्कतें ज्यादा होती हैं, सनबर्न होना, मेलानोमास, कैंसर्स, ये सब उन लोगों में ज्यादा होते हैं।
3: ओके, तो मतलब जो परेशान होते हैं कि लोग हमें टैनिंग हो गई है, तो ऑफ कोर्स हम ऐसे रीजन से हैं, ऐसे प्लेस से हैं जहाँ पे हमारे लिए मेलानिन बहुत वर्क करता है।
4: जी।
3: ओके, ये तो बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी, मेरे ख्याल से अभी तक कई लोग इससे अनजान रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये कि जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ये इनके पीछे क्या रीजन होता है, ये फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है?
4: फंगल इन्फेक्शन मैंने जैसे बताया बहुत डैम्प कंडीशंस में होता है, कि नमी हो शरीर में, हम लोग गर्मियों में हम लोग ध्यान नहीं देते, गीला हो गया कपड़ा उसी को पहने हैं कि सूख जाएगा, उसका वेट करने में गीला शरीर पे रहेगा, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, ऊपर से एक दूसरे से फैलते भी हैं, दाद है कि आपने हाथ मिलाया एक दूसरे से फैलेगा।
3: ओके।
4: इसीलिए जब हम देखते हैं, हमारे पास जब पेशेंट आता है, एक परिवार में 5 लोगों को एक साथ दाद हो गया।
3: बिल्कुल।
4: वो क्यों हुआ? क्योंकि उन सब के कपड़े एक साथ धुल रहे हैं, फंगस एक दूसरे से कपड़ों में जा रही है, एक दूसरे से फैलेगी, इस वजह से भी फैलता है।
3: अच्छा, ये कह सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये बरसात के सीजन में ज्यादा होता है क्या?
4: क्योंकि पसीने के साथ में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा जब होगी,
3: राइट,
4: तो कपड़ा सूख नहीं पाएगा, हम गीला कपड़ा पहने रहेंगे। हम लोग इसीलिए पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप जब कपड़े पहन भी रहे हैं, वो आप हर कपड़े को प्रेस करके पहनिए।
3: ओके।
4: इवन आपके जितने अंडर गार्मेंट्स वगैरह हैं, वो भी आप प्रेस करके पहनिए, तो जितना फंगस होगा वो खत्म हो जाएगा, गर्माई से, सूखने से, गर्माई
3: से वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्या कॉमन मैन को भी करना चाहिए, क्योंकि ये तो आपने बताया पेशेंट्स के लिए, बट हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, स्पेशली बरसात का सीजन आने वाला है, तो उसमें किस तरह की चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए?
4: अब बरसात आ रही है तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कपड़े अच्छे से सूख के पहने, जितना सूखे हुए कपड़े होंगे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। पैरों में शूज जो होते हैं फुल कवर करे हुए पहनते हैं हम लोग, जिसकी वजह से पैर गीला रहता है, उंगलियों के बीच के स्पेस में बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बारिश में,
3: बेशक,
4: हाँ, तो जितना हो सके हमें खुले टाइप के स्लीपर्स पहनने होते हैं। खुले स्लीपर्स पहनेंगे तो पैरों को ड्राई होने का चांस ज्यादा लगेगा, जल्दी ड्राई हो जाएगा।
3: ओके, मतलब कोशिश ये करनी कि खुले में ज्यादातर रहे और कपड़े ऐसे पहने जिससे हवा आती जाती है और नमी ना बनने दें।
4: बिल्कुल,
3: एक बार में अगर कहा जाए, बेशक ये तो बात बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने कहा था कि भाई खाने पीने से भी बड़ा असर पड़ता है, सो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको ना खाया जाए अगर कोई भी आपकी स्किन संबंधी प्रॉब्लम है, या जनरली अवॉइड किया जाए ऐसी चीजों को जिससे कि इस तरह की चीजें होती हैं, इसको लेके बताएं।
4: सबसे बड़ी चीज शुगर अगर हम अपनी डाइट से कट कर दें तो आधे से ज्यादा इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में वैसे ही कम हो जाता है।
3: ओके,
4: एक्ने भी, जैसे यूथ में हम बोलते हैं वो लोग इतना जंक खाते हैं, इतना शुगर खाते हैं जिसकी वजह से एक्ने और डबल इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो हमें शुगर कट करना है। जंक, मैदा, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन सब से भी हमारी बॉडी का शुगर बढ़ता है, वो भी कम कर सकते हैं। और तीसरी चीज होती है डेयरी प्रोडक्ट्स, तभी दूध, मलाई,
3: मक्खन है, मलाई है,
4: जितना कम कर सकें। घी क्लैरिफाइड बटर होता है,
3: ओके,
4: है ना, वो मतलब उसको अच्छे से बहुत ज्यादा पकाया हुआ होता है। घी से इतना डिफरेंस नहीं आता जितना एक्चुअल डेयरी से आता है, जो फुल फैट टाइप का दूध होगा या मलाई होगा, वो सब
3: उसको अगर मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस इस्तेमाल किया जाएगा तो खतरा बढ़ जाता है, मतलब उसको बस नॉर्मली इस्तेमाल करें। ऑल राइट, तो भाई ये तो बहुत हमने जाना कि आखिर डाइट में किस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विटामिन भी बड़ा अहम रोल अदा करता है, उस बात पे भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि गर्मी के सीजन में अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रखा जाए, सर्दियां जब आती हैं तब क्या किया जाए, बारिश का जो सीजन होता है, मॉनसून का सीजन, उस दौरान अपनी त्वचा की देखभाल कैसे की जाए, ये सारी बातें जानेंगे लेकिन ब्रेक के उस पार। सो बातें होने वाली है बहुत जरूरी, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
5: अरे सुना
6: क्या,
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ,
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं, आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ में आज मौजूद है डॉक्टर श्रुति गुप्ता, जो कि MD डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट गोंडा से। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि अभी हमने जाने से पहले कहा था कि आने के बाद हम बातचीत करने वाले हैं आपसे कि ये विटामिन कितना ज्यादा रोल अदा करता है त्वचा के लिए, क्या किसी विटामिन की कमी से भी होता है ये त्वचा रोग संबंधी जो भी बीमारियां हैं।
4: विटामिन्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, दिखाई नहीं देते इसलिए हम इन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, स्पेशली विटामिन A, D, E। ये तीनों हमारी स्किन का बैरियर, स्किन में कैसे स्किन हमारी रिप्लेनिश होगी, उस सब को बहुत अफेक्ट करता है। विटामिन ए हमारी स्किन को रिजुविनेशन कराने में बहुत हेल्प करता है। डी और ई, ये दोनों भी हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिवर में स्टोर होते हैं, बट ये हमारी स्किन को हेल्दी रखने में बहुत काम आते हैं। ये हो गई फैट सोल्यूबल विटामिन की बात। दूसरी चीज होते हैं जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जिनमें होते हैं विटामिन बी और सी। बी बहुत सारी बीमारियां जिसमें विटामिन बी की कमी हो जाए, उन सब बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पिलाग्रा होता है जिसकी वजह से हमारे स्किन में बहुत सारे रैशेज हो जाना, स्पेशली सन एक्सपोज स्किन पे, वो हो सकता है। और विटामिन सी तो हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे स्किन को पिगमेंटेशन से बचाता है। तो विटामिन सी लेने वाले जितने भी लोग होते हैं, उन सबकी स्किन ज्यादा ग्लो करती है। आजकल हम देख रहे हैं विटामिन सी के सीरम्स भी आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो पिगमेंटेशन रिड्यूस कराने में हेल्प करता है। तो जो हमारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं उसको भूल के लोग ज्यादा आर्टिफिशियल यूज करते हैं, बट जितना भी हम नींबू पानी पी सकते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स जितने भी, ऑरेंजेस खा सकते हैं,
3: खट्टे फल यानी कह सकते हैं ऑफ कोर्स। एंड जैसा कि हमने कोरोना में भी सुना था कि भाई विटामिन सी का इस्तेमाल, क्योंकि इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं बूस्ट करने का काम विटामिन सी करता है, तो आपने कहा कि विटामिन्स जो है वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो यानी हमको ऐसे फूड आइटम्स लेने चाहिए जिसमें प्रॉपर वे में हमको मिल जाए विटामिन्स। चलिए, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई है। अब एक बहुत बड़ी समस्या जिसको हमने बहुत पहले आपसे कहा था, उस पर वापस से आते हैं, हेयर फॉल। ये बालों की झड़ने की समस्या हालांकि मर्दों में ज्यादा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो स्टाइल हम दिखाते हैं वो सिर्फ बालों से पहले दिखाते हैं। अक्सर देखो टीनएजर्स जो होते हैं वो बच्चे अपने बालों को झड़ा करते हैं, हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, मर्दों में बहुत कुछ तो होता नहीं दिखाने के लिए, तो वो हेयर स्टाइल बहुत जरूरी होता है। सो ये जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ये क्यों होती है, इसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं, और इसको इसके लिए उपचार कौन कौन से हैं?
4: ठीक है, स्पेशली मेल्स में जब हम देखते हैं तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है जो बहुत ज्यादा कॉमन होता है। दूसरी चीज होती है टेलोजन एफ्लुवियम, जो सेकेंड मोस्ट कॉमन है। वो फीमेल्स में ज्यादा मिलता है क्योंकि फीमेल्स नर्चर करती हैं, एक बेबी को फीड कराती हैं। बच्चा पैदा करने में हमारे शरीर में जितना ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, वो सब टेलोजन एफ्लुवियम की तरह, मतलब हमारे पूरे सिर में से एक साथ बाल झड़ जाना, स्पेशली बच्चा पैदा होने के बाद में।
3: ओके,
4: वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है, वो फीमेल्स में ज्यादा होता है। आयरन डेफिशिएंसी जो मेरे को लगता है 50% से ज्यादा फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, उस सब की वजह से टेलोजन एफ्लुवियम होता है, जो बाल झड़ने में। आजकल तभी यूथ है, उन सब में हीमोग्लोबिन की इतनी कमी है, आयरन की कमी है, वो सब में हेयर फॉल हो रहा है। और तीसरा हेयर फॉल होता है जब हम कोई ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाती है, जिसे हम एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। आजकल जितने भी ये डायबिटीज है, थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं, उन सब के साथ में एसोसिएटेड हमें मिलता है एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें कहीं कहीं से लोकलाइज्ड बाल गिर जाना, कि सिक्के बन रहे हैं सिर में, खाली हो गया एक जगह से, उसे हम एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। इन सब का ट्रीटमेंट आपकी डॉक्टर जैसे आपको इवेलुएट करेगी कि किस वजह से बाल गिर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है।
3: ओके, और अगर हम कॉमन जैसे प्रॉब्लम्स देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि हमने एक शहर से दूसरे शहर में रहने के लिए हम गए, तो पानी का लोग अक्सर एग्जांपल देते हैं कि भाई पानी चेंज हो गया होगा। पानी ही से चेंज होता है या खाने से भी वहां चेंज से कोई फर्क पड़ता है? कुछ वेदर या क्लाइमेट का भी क्या कोई असर होता है? क्या क्या होते हैं इसमें कॉसेस?
4: सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा न्यूट्रिशन। जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो हमारे शरीर में इतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता कि हम घर का खाना नहीं खा पा रहे हैं। दूसरी चीज होती है कि हार्ड वाटर, पानी अगर ठीक है, सॉफ्ट वाटर आ रहा है उस जगह पे तो ठीक है
3: जी।
4: पर हार्ड वाटर थोड़ा कॉज कराता है हेयर फॉल को। तीसरी चीज है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे आप कह रहे हो कि जहाँ पे बहुत ज्यादा डैम्प रह रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है, सीजनल इसलिए ज्यादा हेयर फॉल होता है बारिश के सीजन में। जब हमारे हेयर फॉलिकल्स गीले बालों में, आपने भी नोटिस किया होगा, जब बाल गीले होते हैं उस टाइम ज्यादा गिरते हैं
3: राइट।
4: हाँ, क्योंकि हमारे फॉलिकल्स जो होते हैं उस टाइम पे बहुत वीक हो जाते हैं। जब गीले बाल रहेंगे, फॉलिकल्स वीक होंगे, तुरंत बाल निकल जाएगा बाहर। तो जितना हो सके हमें स्कैल्प को ड्राई रखना होता है। तो जब पसीना आता है, स्कैल्प ड्राई हो रही है, सिर में बहुत पसीना आता है कुछ लोगों
3: जी,
4: को
3: जी।
4: उसकी वजह से बाल ज्यादा गिरते हैं गर्मी और बारिश के सीजन में।
3: ओके, तो ये आपने बताया कि कहीं ना कहीं कोशिश ये करना, जो हमारा स्कैल्प होता है उसको ड्राई रखने की कोशिश करना है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। एंड इसके अलावा अब चूंकि हमने जान लिया कि न्यूट्रिशन जो होता है वो सबसे ज्यादा इस पर असर डालता है, दूसरी बात है क्लाइमेट की बात है, एंड कोशिश आपको ये करना है कि मैंने अक्सर देखा लोग गलती करते हैं नहाने के बाद भीगे भीगे बाल ऐसे और चले जाते हैं बाहर, तो शायद ये एक अच्छी हैबिट नहीं हो सकती है। इसीलिए शायद टॉयल का इस्तेमाल कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप ड्राई कर लेते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं बाहर, तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। एंड इसके अलावा अब हम एक क्वेश्चन ये करने वाले हैं, आपने स्किन की बात की, स्किन देखिए या तो यूथ में जो अभी हमने एक बात की या यूथ है या अधेड़ उम्र के हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, लेकिन अगर बहुत छोटे बच्चे की बात करें, न्यू बॉर्न बेबी है या बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं तो इनकी स्किन भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। लेकिन अगर स्पेशली हम बात करें बच्चों की, हो सकता है इस वक्त हमें और आपको कई ऐसे लोग सुन रहे हैं जिनके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उनकी केयर किस तरह किया जाए क्योंकि स्किन संबंधी उनको भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
4: जी, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी स्किन बहुत ज्यादा प्रोन होती है क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है आपके वेट के कंपैरिजन, तो हमारी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो सकती है, मतलब बच्चे जो होते हैं उनकी स्किन, तो उनको हमने देखा होगा हमारी माताएं जितनी भी होती हैं वो लोग बहुत मालिश करती हैं।
3: जी,
4: क्योंकि उनको ये चीज एजेस से पता था कि बच्चे की स्किन बहुत ड्राई है, मालिश करने की जरूरत है, ऊपर से ऑयल देना पड़ेगा। और बच्चे का स्किन इतनी जल्दी उस टाइम पे डेवलप भी नहीं हुआ होता है कि वो सब चीजें
3: बर्दाश्त
4: कर सके। सही बात है, तो इसलिए हमको सबसे ज्यादा तो हमको उसको मॉइस्चराइज करने की जरूरत होती है, स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए बच्चों में।
3: ओके।
4: दूसरी चीज, जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से स्किन में ड्राई रिएक्शंस हो जाते हैं कि मतलब शरीर में रैशेज होने लगे हैं, बच्चे के चेहरे पे रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाना, और मच्छर काटने की वजह से बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाना, जो छोटे बच्चों में हम ज्यादा देखते हैं क्योंकि स्किन ज्यादा प्रोन है। जब हमारा स्किन प्रोन होती है तो हमारा स्किन मॉइस्चर जो होता है वो स्किन से निकल जाता है, उसकी वजह से जितना भी बैक्टीरिया फंगस या कुछ भी इंसेक्ट या कुछ भी होगा वो ज्यादा इजिली अट्रैक्ट होगा और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें क्या करना है कि स्किन का बैरियर मेंटेन करना होता है। तो बच्चों में हम कैसे कर सकते हैं, ऊपर से मॉइस्चराइज करके कर सकते हैं, और जितना भी हो सके कि बच्चों को पेट्स से दूर रखना होता है। आजकल लोगों को थोड़ा ज्यादा पेट्स का शौक भी हो गया है, जिसकी वजह से ये जितना भी एनिमल फर डैंडर जो उतना भी होता है उसकी वजह से बच्चे ज्यादा प्रोन हो जाते हैं, उनको एलर्जीज ज्यादा होती हैं, छींके ज्यादा आती हैं, स्किन एलर्जीज भी उसकी वजह से बढ़ गई हैं, तो उनसे दूर रखना होता है। घर में धूल मिट्टी इन सब से सफाई रखना है, बच्चों को उससे दूर ही रखना होता है।
3: ओके। मतलब ये आपने कहा कि कहीं ना कहीं बच्चे की जो स्किन होती है बहुत ड्राई होती है, सो मालिश करना तेल की बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, साफ सफाई का आपने कहा बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए, जिस घर में स्पेशली छोटे बच्चे हैं और जहां पेट्स भी हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके बाल होते हैं उड़ते हैं उससे भी बहुत सारे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है बच्चे को। बेशक ये बिल्कुल सही बात है, और कई सारे ऐसे घर होते हैं जहां बहुत सारे पेट्स पाले जाते हैं, और बच्चों का ख्याल मेरे ख्याल से जितना ज्यादा साफ सफाई रखा जाएगा, इवन जो बच्चे को लेने वाली मदर है गोद में कोई भी ले रहा है उससे पहले खुद के हाथों को साफ कर लेना, सैनिटाइज कर लेना, ये सब बहुत जरूरी बातें हैं। अच्छा, इसके अलावा चूंकि अभी बात हो रही थी स्किन की, तो कुछ सीजन ऐसे भी होते हैं जैसे गर्मी में अगर हम बात करें तो गर्मी में पसीना ज्यादा आता है एंड ठंडक में पसीना कम आता है। अक्सर देखा जाता है कि गर्मी आते ही लोग एसी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पसीना ना आए, इम्प्रेशन ना गलत पड़े। बहुत सारे ऐसे आजकल लिक्विड्स आ रहे हैं, स्प्रे आ रहे हैं, जिससे कि पसीना रोकने की बात कही जाती है, या चाहते हैं कि यार पसीना ना निकले, बस हम ऐसे ही फ्रेश फ्रेश दिखाई दे। पसीना निकलना कितना ज्यादा जरूरी है, कितना नेचुरल है, और नहीं निकलने से क्या प्रॉब्लम्स आती है सामने?
4: जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा पसीना बनता है और निकलता है, वो पोर्स हमारी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। वो बने ही इसलिए हैं ताकि हमारे स्किन में एक्सेस हीट जो इतनी भी डेवलप हो रही है वो बाहर निकल सके। गर्मी में ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। हम लोगों को लगता है कि पसीना नहीं निकलेगा तो हम ज्यादा फ्रेश लगेंगे, बट पसीना निकलना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने भी आजकल लोग डिओड्रेंट्स यूज कर रहे हैं।
3: जी,
4: डिओड्रेंट्स में एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है जो हमारे पोर्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एक्चुअली में पसीना बाहर नहीं निकल पाता,
3: नहीं निकलता। हाँ,
4: तो पसीना नहीं निकलने की वजह से बहुत सारी एक्चुअली में वहाँ पे बीमारियां हो जाएंगी। दाने, पसीना वहाँ पे क्योंकि बना तो है बट निकल नहीं पा रहा,
3: निकल नहीं पा रहा
4: वहाँ पे, वो दाने की फॉर्म में प्रेजेंट करेगा जिससे इचिंग होगी, दाने बनेंगे और उसके बाद में पसीने की वजह से बुखार आ सकता है। जब ज्यादा पसीना आएगा वो सब वहाँ पे हीट क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रही है तो बुखार आएगा, बॉडी टेम्परेचर राइज होगा,
3: बढ़ जाएगा
4: और वो दाने जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है जब उनमें, तो आजकल बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिनमें गर्मी में क्योंकि खेलते हैं और फिर पसीना, कई बार लोगों की स्किन ब्लॉक हो जाती है कि स्किन में पोर्स जो है ब्लॉक हो गए तो पसीने के जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वहाँ पे दानों की तरह प्रेजेंट करते हैं माथे पे, स्पेशली बच्चों के सिर में और माथे पे। तो उन सबको हमें गर्मी पसीने से बचाना है कि पसीना निकल जाए।
3: ओके, बिल्कुल वैसे ही कह सकते हैं जैसे कि अगर ड्रेनेज सिस्टम किसी शहर का अच्छा नहीं है तो पानी भराव की समस्या फिर बड़ी मतलब दिक्कतें आ जाती हैं। तो ऐसी बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है बाहर करने के लिए, आपने कहा हीट करता है या जो भी शायद वेस्ट चीजें होती होंगी उसको निकालने का काम करता है, पसीने का काम ही यही होता है और इसका निकल जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सारी आपने बातें कर ली, क्योंकि इन जनरल हमने हर चीज पे बातें की कि रैशेज हो तो क्या हो, खुजली क्यों होती है, त्वचा संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं, बहुत बड़ी बीमारियां कौन सी है, बच्चों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग कैसे अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि इन जनरल आप सारी बातों को कंक्लूड करते हुए कुछ ऐसी डेली लाइफ में चीजें बताएं जिसको हम और आप सभी लोग करें और कहीं ना कहीं जो स्किन संबंधी प्रॉब्लम है उससे बच जाएं।
4: सबसे इम्पोर्टेंट हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी बॉडी को, पसीने को जब भी आ रहा है तो हम उसको वॉश करके, आजकल गर्मी में हम नहाएं ठंडे पानी से, दिन में दो बार नहा सकते हैं और अच्छे से ड्राई करके ही कपड़ा पहनना है हमेशा
3: जी,
4: ताकि कपड़ा हम कभी भी डैम्प ना हो शरीर पे। फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश करें जिसकी वजह से, नहीं तो डैंड्रफ जब हो जाता है उसकी वजह से शरीर पे बहुत दाने आते हैं। ऑयलिंग, जो हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि हम सिर में ऑयलिंग कर लेंगे उसकी वजह से सब ठीक हो जाएगा, पर ऑयल करने की वजह से बहुत ज्यादा डैंड्रफ, चेहरे पे दाने आना, आजकल जितनी भी यूथ है ये जिम करते हैं
3: जी,
4: वो प्रोटीन पाउडर बाहर से वे पाउडर लेना
3: राइट,
4: उसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्ने डेवलप होता है तो वो अवॉइड करें। और जब भी हम जिम जा रहे हैं तो हमारा इक्विपमेंट हमेशा क्लीन हो और उसके बाद में शावर जरूर लें।
3: और पानी की शायद मात्रा बढ़ाना चाहिए जितना पानी पिएंगे उतना डिटॉक्स करता है।
4: पानी तो पीना चाहिए, उसके लिए वाटर अलार्म्स लगा लें।
3: अच्छा वाटर अलार्म्स जरूरी है, यानी अपने को जगाने के लिए कि आप सो गए और आपको पानी पीना है। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरती से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, क्योंकि बहुत जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन संबंधी, उस पर हमने चर्चा किया और आपने सभी हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब चूंकि अंतिम दो प्रश्न की तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो पहला जो प्रश्न है वो मेरा ये है कि अब इन सारी चीजों से हट के मैं वापस से आप पे आता हूं जहां से शुरुआत की थी कि आपको जाना जाए, तो डॉक्टर श्रुति गुप्ता की वैल्यूज क्या है, यानी लाइफ में कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिनको वो फॉलो करती हैं और वो नॉन निगोशिएबल है, उसको निगोशिएट बिल्कुल भी नहीं करेंगी।
4: वैल्यूज यही हैं जो हमेशा पेरेंट्स से देखा, कि जितना किसी भी पेशेंट के साथ में एम्पैथी रखनी है,
3: एम्पैथी रखनी है पेशेंट्स के साथ में।
4: वो लोग बहुत परेशान कंडीशन में आते हैं हॉस्पिटल, कभी कोई खुश कंडीशन में नहीं आता है,
3: बेशक बहुत बड़ी बात है।
4: उनके साथ एम्पैथी रखनी होती है, आप किसी भी कंडीशन में, आप खुद कितना ही परेशान हो, पर उन लोगों को हमेशा कंसिडर ही करना पड़ता है कि आप उन लोगों को हर्ट नहीं करो, क्योंकि वो परेशान ही है, कोई खुश नहीं आ रहा है हॉस्पिटल,
3: हॉस्पिटल कोई बड़े केक नहीं काटने आ रहा है।
4: दूसरी चीज ये है कि किसी के साथ चीट नहीं करना है कि दवाई जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है उसको भी लिख दिया।
3: राइट, ओके, ये तो पेशेंट्स की बात हो गई। अब मैं इन जनरल भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ की वो वैल्यूज बताइए जिसको आप फॉलो करते ही करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। बहुत से लोग ऑनेस्टी मानते हैं, रेस्पेक्ट करना लोगों की, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, या सेल्फ लव की एक बात होती है, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा आप फॉलो करते हैं, कोई अगर एक आप बताना चाहे तो। ओके, तो अब हम अपने अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। आप बैठी हैं रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम के स्टूडियो में, जो कि गोंडा का पहला एफएम और इस पूरे देवी पाटन डिवीजन मंडल का पहला एफएम है। जिस तरह से प्रोग्राम्स जाते हैं, आप भी एक प्रोग्राम में शामिल होने आई हैं। आपको क्या लगता है, इसको सुनने वाले जो हमारे श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, गोंडा के हैं, गोंडा के बाहर के हैं, जो इसको सुनते हैं, आने वाले दिनों में ये क्या चेंज गोंडा के लिए ला रहा होगा और जो इसको सुनते हैं उन पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा होगा?
4: आजकल के यूथ को बहुत ज्यादा एनर्जी है और नॉलेज कम है, तो आप लोग आई थिंक बहुत ज्यादा इस चीज में एक रोल प्ले कर रहे हो, जो लोगों को जरूर हेल्प कर रहा होगा कि क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं जॉब्स में, अपने बिजनेस करने में। क्योंकि हम हर चीज सोच सकते हैं कि हमें ये करना है, बट कैसे करना है वो बहुत जरूरी होता है, कहीं से गाइडेंस मिल जाए तो वो बहुत जरूरी है। आप जो कर रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो सोसाइटी के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच।
3: थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच। और ऑफ कोर्स हमको आप सभी लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती जाती है और हमारे लिए हमारी अर्निंग आपकी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि जितना आप अपना ब्लेसिंग्स हमको देते हैं, दुआएं देते हैं, जितना नवाजते हैं उस चीज से, और हमारे हौसले और भी बुलंद होते जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने उसी विजन उसी मिशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। सो थैंक यू सो मच टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने इतनी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और इतने अहम मुद्दे पे बात की। इवन गोंडावासी जो आपको नहीं जानते थे, आज उन्होंने जरूर आपको सुना होगा, उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स का आपने सॉल्यूशन इसी टॉक शो में दे दिया है। और मुझे ऐसा लगता है जिनको और प्रॉब्लम है या स्किन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, आपके डिपार्टमेंट में आके संपर्क करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें, यानी आपसे मिल सकते हैं या कहीं पे भी जो उनके नियर बाय जो भी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू यू।
4: थैंक यू।
3: सो श्रोताओं, आपने आज का टॉक शो सुना और ऑफ कोर्स आपके बहुत सारे प्रश्नों का आज उत्तर मिल गया होगा। फिर से हम हाजिर होंगे इसी शो में अगले मेहमान के साथ, तब तक के लिए आप सुनते रहिए अपना गोंडा वाला एफएम रेडियो 99.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
6: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
7: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
6: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
7: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
6: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
8: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
9: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
8: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
9: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
8: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
9: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
8: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
7: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
8: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
7: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
9: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
10: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
9: डिलीशियस
11: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
9: और क्या क्या है खास?
11: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
9: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है।

सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बेहद शुभकामनाएं। और आज गोंडा शहर में हमारे दुखरनाथ भगवान के दर पे क्या भीड़ लगी है भक्तों की। सब हाथ में लोटा लिए, मन में आस्था लिए, जल के साथ पता नहीं कितनी मनोकामनाएं इच्छाएं प्रभु को सौंप रहे हैं। और भगवान शिव भी उन मनोकामनाओं को अपना बनाने के लिए आतुर बैठे हैं। तो मुझे ये बताइए, आप लोग में से कौन कौन ऐसा है जो बिल्कुल तैयार है आज की शाम के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि ईश्वर से बड़ा कोई दोस्त ही नहीं है। वो दोस्त है जो कभी आप पे नाराज नहीं होता, कभी अपनी इच्छाएं नहीं थोपता, कभी आपसे कुछ मांगता नहीं। तो ऐसा दोस्त तो हर किसी को चाहिए, तो ईश्वर से बेहतरीन तो कोई दोस्त हो नहीं सकता। सो आपको फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, जो कि कल था लेकिन आज हम लोग अपने इवनिंग में सेलिब्रेट करने वाले हैं। एंड उम्मीद करती हूँ कि आज की सेलिब्रेशन बेहतरीन होगी, और ना सिर्फ बेहतरीन होगी बल्कि हम आपके साथ करेंगे बहुत सारी गुफ्तगू। हाँ हाँ, गुफ्तगू मतलब कि आप लोगों को आज मेरे साथ चलना है उस गाड़ी में बैठ के जहाँ हम सवार होंगे। और सवार होके कहाँ जाएंगे? जी हाँ, हम जाएंगे एक ऐसी जर्नी पे जहाँ पे हम दोस्ती की बातें करेंगे, दोस्ती की चर्चाएं करेंगे। और क्या करेंगे? जी हाँ, हम एक दूसरे के साथ इस शाम को बेहतरीन बनाएंगे। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी गॉसिप्स होंगी, ना सिर्फ गॉसिप्स होंगी बल्कि दोस्ती के हर, जो कहते हैं ना, परिभाषा को समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी रेडी मत, मतलब ये मत सोचिएगा कि आज की शाम ऐसे ही छूट जाएगी। ना ना ना ना, आज की शाम हम लोग सिर्फ और सिर्फ करेंगे आप लोग के साथ बातें बहुत सारी, जिनका इंतज़ार तो आप लोग काफ़ी दिनों से वैसे कर रहे थे, लेकिन दोस्ती की बातें दोस्ती वाले दिनों तो ज़्यादा बेहतर है। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक। कोई कहीं नहीं जाएगा, शिव का नाम लेके आज की संध्या की शुरुआत करते हैं। शिव जी सत्य हैं, शिव जी सुंदर, शिव जी शिव जी सबके अंदर। तो ये बात तो सच है कि शिव सत्य भी है, शिव सुंदर भी है, और शिव सबसे खास बात है सबके अंदर है। तो चलिए, उस देवता को बनाना ज़्यादा आसान है जो आसानी से मान जाए। और कहते हैं शिव जो हैं तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे हैं, बहुत आसानी से गुस्सा भी हो जाते हैं और बहुत आसानी से मान भी जाते हैं। तो फिलहाल शिव को मनाइए और आज बीना के साथ चलिए दोस्ती स्पेशल इवनिंग सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हो जाइए। कोई कहीं नहीं जाएगा क्योंकि आज बीना इज देयर, देन फिक्र काहे को डेयर। तो बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत मत करिएगा और चलिए म्यूजिकल जर्नी पे चलते हैं। और आप लोग को पता ही, आज कॉलिंग वाली इवनिंग है तो कोई कहीं कहीं नहीं जाएगा। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, और इस याराना को निभाना आपका काम है मेरे दोस्त। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक।

0: यारी प्यारी है कि नहीं ये जानने के लिए सबसे पहला कॉल देखते हैं। हेलो
1: हेलो मैम, गुड इवनिंग। नमस्ते।
0: गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपका। गुड गुड नेम
1: मैम, मैं पिंकी बात कर रही हूँ जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर लाइब्रेरी से।
0: ओहो क्या बात है, क्या नाम है? पिंकी
1: जी। दीदी
0: क्या बात है पिंकी, पहले तो बहुत अच्छा लगा दीवानों के शहर से कॉल किया है, तो मतलब ऑब्वियसली आपके मन में दीवानगी तो होगी ही गानों को लेके।
1: जी बिल्कुल मैम, मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: ओ वाह, मतलब मुझे अच्छा लगा जान के कि लोगों की अभी भी मतलब हॉबी है रेडियो सुनना, क्या बात है। तो पिंकी,
1: मेरे यहाँ तो मैम मैं सबसे ज्यादा हम ही लोग मतलब रेडियो सुनते हैं और रेडियो पे कॉल भी करते रहते हैं।
0: क्या बात है क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप कॉल करते हैं और आपका कॉल लग भी जाता है।
1: और दीदी आपको और आपका कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रिंकी पिंकी की तरफ से आज सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: थैंक यू सो मच। फिलहाल तो पहला सोमवार है, लेकिन हाँ पिछले सोमवार को भी हम लोगों ने सावन में ही कैलकुलेट कर लिया था क्योंकि मेरे बहुत सारे लिस्टनर्स,
1: लेकिन मैम हम जुड़ नहीं पाए थे, तो आज जुड़े तो आज सबको बधाई दे रहे हैं सावन की और सावन की सोमवार।
0: बिल्कुल, और मेरे मतलब बहुत सारे लिस्नर ऐसे जिन्होंने पिछली बार कहा कि ये आज ही से हम लोग कंसीडर करते हैं क्योंकि आज से मतलब लगभग हमारा जो सोमवार है वो कैलकुलेट होने लगता है। तो पिंकी ये बताइए, आज हम लोग दोस्ती दिवस पे थोड़ी सी बातें करें क्योंकि कल ही अभी फ्रेंडशिप डे गया है, बहुत सारे लोगों ने मतलब अच्छे से सेलिब्रेट किया, किसी ने किसी को गिफ्ट दिया। अब आप बताइए आपके कोई बेस्ट फ्रेंड्स हैं?
1: मैम रेडियो के माध्यम से तो मैम थोड़े बहुत से मेरे दोस्त हैं, बाकी इतने खास मेरे अभी कोई दोस्त नहीं है कि मैम कोई हमें गिफ्ट दे और हम उसको दें, बस ऐसी बातें हो जाती हैं आप लोगों के माध्यम से। आप लोगों से तो आप ही लोग मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और मेरा रेडियो बचपन से मेरा सबसे अच्छा दोस्त है।
0: जब आपके साथ जो जी
1: और मैं सुबह से लेकर रात 12 बजे तक रेडियो सुनती रहती हूँ, मेरा सबसे मित्र सच्चा यही है जो हर पल मेरे साथ रहता है और इससे बड़ा मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं है।
0: ओहो क्या बात है, तो बिल्कुल आपके साथ हमेशा हमारा जो ये साथ है बना रहेगा, और मतलब ये फ्रिक्वेंसी चाहे मतलब फ्रिक्वेंसी ज़रूर बदलती हैं लेकिन जो भावनाएं हैं जो रेडियो कनेक्ट करता है वो हमेशा सेम रहती है, म्यूजिक सेम रहता
1: है। दीदी क्योंकि चैनल कोई भी हो लेकिन हर चैनल के अलग अलग खास बात होती है, लेकिन माध्यम वही होता है कि वो हर पल अपने श्रोताओं के साथ रहता है।
0: तो ये बताइए अपने रेडियो दोस्त के लिए आप कोई गाना गाना चाहेंगे आज?
1: जी बिल्कुल गाएंगे।
0: क्या बात है।
1: ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है।
0: क्या बात है क्या बात है, इतना अच्छा गाना सुनाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा
1: जी। और एक गाना हम आपको भी डेडिकेट करेंगे दीदी।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि आप भी हमारी दोस्त मतलब दोस्त भी हैं और हमारी सिस्टर भी हैं, तो मैं एक गाना आपके लिए भी गाना चाहूंगी।
0: सो स्वीट, चलिए सुनाइए
1: जी। 1000 में मेरी बहना है, चांद सितारों का सबका गहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। 1000 में मेरी बहना है, चांद सितारों का सबका कहना है।
0: थैंक यू सो मच पिंकी, आपने गाना नहीं डेडिकेट किया, ये आपने एक कनेक्शन अपने और मेरे दिल से बना दिया है। तो ये कनेक्शन आपकी जैसे आपकी धड़कने धड़केंगी, मेरी धड़कने धड़केंगी, एक दूसरों को फील होगा। तो मैं भी आपको दो लाइनें डेडिकेट करती हूँ क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक है। वैसे तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा, पर हाँ लिसनर के साथ अगर आरजे ना हो या आरजे के साथ अगर लिसनर ना हो तो ये रेडियो का जो साथ है वो अधूरा है। एक दूसरे
1: जी बिल्कुल दीदी, तभी तो हम लोग इतनी दूर होते हुए भी दिल से दिल का रिश्ता जो है, इतनी दूर होते हुए भी हम लोग चले आते हैं आपके पास और आप लोग चले आते हैं अपने श्रोताओं के पास।
0: आपको डेडिकेट करना चाहूंगी मैं गाना।

0: थैंक यू सो मच पिंकी
1: कॉल करने के लिए। बहुत अच्छा गाया और मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये।
0: थैंक यू सो मच पिंकी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: और दीदी आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा, और मैंने आज दूसरी बार आपके कार्यक्रम में कॉल किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे ही नमस्ते दीदी, और सावन के सोमवार की कृपा, महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। थैंक यू। तो भाई पिंकी से बात हो गई है और मज़ा आ गया भाई मुझे इस बात का, मतलब अच्छा लग रहा है कि आप लोग कितने दिल से कनेक्ट हो रहे हैं। और अगले कॉल की बारी है, और मंडे हो और कॉल कनेक्ट ना हो आप लोग के, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका। हेलो, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, कैसी हैं? निशा, मैं आपकी आवाज पहचान गई। मैं आपकी आवाज़ पहचान गई, ये बताइए निशा कैसी हैं आप?
2: जी
0: मैं
2: आपके आवाज़ से बिल्कुल अच्छी हूँ।
0: क्या बात है, और आप ऐसे ही हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं चहलुम की मेरी तरफ से।
2: जी आपसे बात करके ना मुझे बहुत खुशी हुई।
0: बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और मैं यही कहूँगी
2: ना, हम आपको एकदम अपनी सिस्टर का नाम मानते हैं।
0: क्या बात, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आज निशा आपको फ्रेंडशिप डे पे कोई गाना सुनाना है, दोस्ती पे कौन सा गाना सुनाएंगे?
2: किस अक्षर से?
0: अक्षर से नहीं सुनाना है, दोस्ती से। दोस्ती पे कोई भी गाना आप सुना सकती हैं, अपने दोस्त के लिए कोई गाना, जैसे याराना है, कोई भी गाना आप सुना सकते हैं।
2: दुश्मन न करे गाने।
0: बिल्कुल।
2: दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर कदम हमने इनाम दिया है।
0: क्या
2: नहीं आती है?
0: अच्छा ये बताइए निशा, आपके स्कूल में आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड थी?
2: जी हमारे तो बेस्ट फ्रेंड बहुत है, लेकिन साथ छूट गई ना।
0: साथ छूट गया सबसे, कोई एक आध है जो कॉन्टेक्ट में आपको जिनसे बात बात?
2: सबके साथ छूट गई, हम लोग अलग रहने लगे, अलग घर बन गए तेरी।
0: ओह आप अलग हो गई, लेकिन आप मोबाइल से बात तो करती होंगी कि नहीं करती हैं?
2: जी जी जी बात होती है कभी कभार।
0: अच्छा ये बताइए आपकी, मतलब कौन सी ऐसी फ्रेंड थी जो जब भी आप मुश्किल में हो तो आपको उसी की याद आती है?
2: मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुश्किल में होते हैं तो उनका नाम भी लड़की है, उसको वो याद आती है। जिसे वो याद आती है, उसकी आती है, उसका नाम लेते हैं ना मन, वो मरीज की बंद हो जाती है तुरंत। मेरी बेस्ट फ्रेंड है,
0: मतलब हिचकी वाली दोस्त है आपके पास?
2: जी हम लोग एक दूसरे से हम हंसी मस्ती बस करते थे।
0: क्या बात है निशा,
2: एक दूसरे के कुछ कहते थे बुरा नहीं मानते थे हम लोग।
0: तो दोस्त का मतलब यही है कि किसी भी तरह का, मतलब अगर वो हो, परेशानी हो, तो मुझे लगता है कि दोस्त का साथ जरूरी है।
2: जी मैं आज मिलने गई थी।
0: अरे वाह क्या बात है।
2: जी परसों गई थी और आज भी गई थी मिलने के लिए।
0: अरे वाह क्या बात है,
2: सुबह तो मिल के आए हैं बस।
0: तो मुझे लगता है कि यार दोस्ती फिर से जमा हो गई आपकी।
2: जी हाँ रात सुबह गई थी, देखा मुलाकात नहीं करे, वो 3-4 साल हो गए मुलाकात नहीं हुई है।
0: चलिए आपके दोस्त के लिए एक गाना प्ले करती हूँ, अपनी दोस्त को कॉल करके बता दीजिए कि मैम ने आपके लिए गाना प्ले किया। थैंक यू सो मच।
2: जी मैम वो डेडिकेट कर देंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको बता दीजिएगा। थैंक यू।
2: बिल्कुल अच्छे ही आप। ओके निशा,
0: थैंक यू निशा। तो भाई सबकी भाई दोस्ती बड़ी हसीन है, और ये वाली दोस्ती तो और ज़्यादा हसीन है, क्योंकि इसमें एक दूसरे को क्या कहते हैं कि सपोर्ट करने की भावना है, क्योंकि यहाँ हिचकी एक को आ रही है, दूसरे को भी आने लग रही है, दूसरा याद करता है दोस्त का नाम लेता है तो हिचकी रुक जा रही है, मतलब दोस्ती पक्की है फिलहाल। साइंटिफिकली ऐसा कोई हमें मतलब वो तो नहीं मिला है एविडेंस, लेकिन मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, नाम लेने से हिचकी रुक जाती है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? ज़रा जल्दी से मुझे चैट रूम में बताएं। अभी चैट रूम में मेरे साथ हैं मेरे काफ़ी सारे प्यारे प्यारे से लिसनर, सबका नाम ले लेती हूँ मैं। कौन कौन है भाई? अभी तो दीपक कुमार हैं, कोई हालात को नहीं समझता, कोई जज्बात को नहीं समझता, ये तो बस अपनी अपनी समझ है, कोई कोरा कागज़ भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। क्या बात है दीपक, लग रहा है कि आपको भी किसी ने धोखा दिया है। सविता जी हमारे साथ है, सविता दुबे और अनोखी शर्मा, धर्मेश त्रिपाठी, धर्मेंद्र मोहन जी लिखते हैं, दोस्त गलत सही नहीं देखते, वे नहीं देखें कि तू तू गलत है कि है, मैं तेरे साथ नहीं दूंगा। दोस्त वो है जो अपनी गलतियों आपकी गलतियों पर आपको समझाएं और बोलें कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना तेरे साथ। अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाए तो उसे पकड़ लो, जकड़ लो, कहीं जाने मत दो, क्योंकि ऐसे दोस्त कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। तेरा यार हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। गुड इवनिंग सबलू सावंत जी मुंबई से, यानी कि सबलू जी पहुँच गए हैं मुंबई और सभी का साथ ये इवनिंग है बेमिसाल। आगे भी बात करेंगे, लेकिन चलिए सुनते हैं पहले गाना और देखते कॉल भी आया हुआ है, आवाज़ सुनते हैं किसकी है। हेलो,
3: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग देवी प्रसाद जी, तो दोस्ती की बात चल रही है, तो ये बताइए आपका कोई दोस्त है?
3: हमारा सबसे फेवरेट दोस्त तो इस समय यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, पता नहीं कहीं चले गए हैं या अलग ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है।
0: हेलो, सो हमें लग रहा है कि देवी प्रसाद जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है और एक और कॉल आ रहा है, देखते हैं देवी जी का है किसका है। हेलो,
4: हेलो,
0: गुड इवनिंग, कैसी हैं सविता जी? आपकी आवाज़ से मैं आपको पहचान गई, कैसी हैं आप?
4: मैं ठीक हूँ।
0: आपको फ्रेंडशिप दोस्ती दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
4: आपको भी।
0: तो ये बताइए, दोस्ती पे आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ सुनाना चाहेंगी?
4: हाँ, दोस्ती मतलब कि दोस्ती कोई इंसान हो वो भी नहीं, दोस्ती आप पेड़ पौधे से भी कर सकते हैं, आप तो कोई जानवर से भी कर सकते हैं, कोई छोटा सा घर में कुछ पाल ले उनसे भी दोस्ती हो सकता है।
0: ये बात
4: ऐसा नहीं कि खाली इंसान से ही हो, आप खाना पीना भी अच्छी तरह से, खाना पीना से भी दोस्ती कर, खाना पीना बनाना भी अच्छा चाहिए, ताकि हर चीज से दोस्ती हो सकता है, पर मन लगा रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, जिससे आपका कनेक्शन हो जाए, जिसके साथ आपका टाइम ज्यादा स्पेंड हो जाए, मुझे लगता है वही आपकी दोस्ती का साधन। और बताइए कैसी हैं आप?
4: मैं ठीक हूँ, और सबसे ज्यादा दोस्त मुझे ज्ञान स्टिली चैनल से चैट बुक से हुआ, और आप लोग आज से भी बहुत अच्छा दोस्ती हो गई मेरी।
0: क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसे ही किसी दोस्त का इंतज़ार था जो मुझे बताए कि हम भी उसके दोस्त हैं। तो आप कोई गाना सुनाना चाहेंगे अपने दोस्तों के लिए?
4: जी, दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और सबसे अच्छा दोस्त तो रेडियो है, मैं रेडियो तो बचपन से ही मैं दीवानी हूँ।
0: अरे वाह, मतलब हम आपकी मतलब दोस्ती वाली लिस्ट में सबसे ऊपर है, क्या बात है।
4: रेडियो,
0: थैंक यू सो मच।
4: शुक्रिया मैम।
0: तो ये दोस्ती हम भी नहीं तोड़ने वाले सविता जी, आपके साथ बरकरार रखने वाले। और एक गाना डेडिकेट करने की बात हुई थी निशा के लिए, तो चलिए गाना सुनते हैं निशा की दोस्त के लिए ये।

0: तो एक और कॉल हमारे साथ, चलिए सुनते हैं आवाज़ किसकी है हमारे पास। हेलो,
1: शुभ संध्या मैम।
0: शुभ संध्या, कैसे हैं सबू जी, क्या हाल है?
1: मैं तो ठीक हूँ, और आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और यहाँ मौसम भी काफी अच्छा है शहर गोंडा में। आप बताइए, आप फिलहाल बिहार में हैं या मुंबई में? मुझे जहाँ तक लग रहा है मुंबई आ गए आप।
1: मुंबई नहीं सर, अभी अभी यहीं पे हैं, घर पे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो क्या चल रहा है आजकल आपके शहर में?
1: क्या चलेगा, बारिश तो दिन रात यहाँ भी लगले है। दोस्ती एक सच्चा दिल से भी दोस्ती होता है, एक दोस्ती जो है जरा हट के भी होता है। तो हम चाहेंगे कि दोस्ती एक ऐसा हो कि जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद तक भी दोस्ती निभा दिया जाता है, उसी को पक्का दोस्ती बोला जाता है। जो दोस्त कभी सुख में ना शामिल हो, दुख में शामिल हो, तो वही सच्चा दोस्त होता है।
0: ये बात तो सही है। तो आज कविता गाएंगे दोस्ती के लिए या गाना सुनाएंगे?
1: कविता ही सुना देंगे।
0: क्या बात है, चलिए स्वागत है आपकी आवाज का,
1: और फरमाइएगा।
0: जी जी बिल्कुल, स्वागत है।
1: यह नदिया मुल्क ए पानी भी भरपूर, बोतल भी बिकता है 20 रुपया शुल्क। यह गरीबों का मुल्क है, जनसंख्या भी भरपूर है, परिवार नियोजन मानते नहीं, जबकि नसबंदी निःशुल्क है।
0: वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, बहुत।
1: यह अजीब मुल्क है, नियमों का हर शुल्क है, अगर आप बाहुबली हर सुविधा निःशुल्क है। यह अपना मुल्क है, कर कुछ सकते नहीं, कुछ कह सकते नहीं, जबकि बोलना निःशुल्क है।
0: बिल्कुल, क्या बात है।
1: यह शादियों का मुल्क है, दान दक्षिणा भी खूब है, शादी करने का पैसा नहीं, जबकि कोर्ट मैरिज भी निःशुल्क है।
0: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
1: यह पैटर्न का मुल्क है, बस रेल भी खूब है, बिना टिकट पकड़े गए तो रोटी कपड़ा निःशुल्क है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: यह अजीब मुल्क है, जरूरत पर शुल्क है, ढूंढ कर देते लोग पर सलाह निःशुल्क है।
0: क्या बात है।
1: वह आगाम व मुल्क में रहकर भी चुनने का हक है, वोट देने जाते नहीं, जबकि मतदान निःशुल्क है। बेचारा आदमी जब सर के बाल ना आए तो दवाई ढूंढता है, और जब आ जाते हैं तो नाई ढूंढता है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और जब काले रहते हैं तो लुगाई ढूंढता है, और जब सफेद हो जाते हैं तो फिर डाई ढूंढता है। मुस्कुराइए निःशुल्क है, मुस्कुराइए निःशुल्क है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: जब तक दोस्ती यारी है, आपस में प्रेम है, और हंसता सबसे बड़ा जीवन है। बिना जी जब तक जिंदगी है, हंस कर जिए, चाहे गम हो या खुशी, ये जीने का फितूल है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया, क्या कहना। निःशुल्क कविता सुनाने के लिए, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। वही सबलू जी ने अपनी बेहतरीन सी कविता सुना के हमें हंसा दिया, और मुझे लगता है ये वाली बात बड़ी अच्छी थी, जब तक बाल काले हैं तब तक तलाश लुगाई की है, और जब बाल सफ़ेद हैं तो डाई की है, क्या बात है। तो चलिए वो प्यारा सा गाना सुनते हैं जिसकी शुरुआत हो गई थी, ये दोस्ती तेरे दम से।
2: ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती।

0: तो चलिए अगले कॉल की ओर रुक करते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम
2: बताओ बताओ।
0: हेलो
2: हेलो
0: हेलो जी हाँ, आपका नाम
2: जी? भोलेनाथ जी बोल रहे हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार भोलेनाथ जी, और स्वागत है आपकी आवाज का। और कैसे हैं आप?
2: अच्छे हैं सब।
0: तो आज दोस्ती की बात हो रही है, तो आप आज गाना सुनाएंगे दोस्ती पर या कोई कविता?
2: गाना तो हम सुनने के लिए मिला है हमें।
0: तो अभी गाने की फरमाइश का समय तो नहीं है, वो तो 7:45 से होगा। अगर आप कुछ सुनाना चाहते हैं तो बेशक सुना सकते हैं।
2: अब हम क्या गाना सुनाएं, अब हम सुनना चाहते हैं।
0: तो भाई हमारे श्रोता को गाना सुनना है तो ये फ़ोन करेंगे अब थोड़ी देर बाद। लेकिन क्या कहें, आप लोग की फरमाइशें नहीं ख़त्म होती, दिन भर अपनी पसंद के गाने सुनते हैं, कभी कुछ सुना भी दिया करिए जनाब। तो चलिए एक गाना मेरी तरफ से आप लोग सुनिए, मेरी तरफ से सुनिए, बड़ा प्यारा सा गाना है। और आज महादेव का दिन है तो शिव से अपने दोस्त को मांगना तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, मुझे लगता है कि ये गाना बेहतरीन होगा अपने दोस्त को मनाने का, अपने भगवान से कहने का कि मेरे यार से मिला दे तू प्यार फिर लौटा दे। तो चलिए सुनते हैं ओ भोले भोले।

0: प्यार तो जगाएंगे लेकिन आपकी आवाज़ के साथ। और पहला जो कहते हैं ना कि कॉल जो कि अपने दोस्त को मनाने वाला है, चलिए सुनते हैं किसका है। हेलो।
1: तो संध्या मैम, पहले सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई।
0: आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं इस सावन के सोमवार की, और आपको दोस्ती दिवस की भी शुभकामनाएं क्योंकि आप मेरी बेहतरीन दोस्त हैं। क्योंकि दो ढाई साल का साल हो गया, साथ हो गया हमारा। अब इस साथ को जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा बनाना पड़ेगा। फिलहाल आप बताइए कि आज आप क्या सुनाने वाली हैं।
1: मैम, आज सावन सोमवार मौका हाथ लगा है तो भजन सुनाएंगे शिव जी का।
2: क्या बात है, सुनाइए स्वागत है डमरू बजाओ भोलेनाथ हमारे घर आंगन में गौरा संगे आओ भोलेनाथ, गौरा संगे आओ भोलेनाथ

की डाली अमुआ पे झूलो भोलेनाथ गोर संगे झूलो भोलेनाथ हमारे घर आंगन में गोर संगे झूलो भोलेनाथ हमारे घर आंगन में डमरू बजाओ भोलेनाथ हमारे घर आंगन में हमारे घर आंगन में मोरी अंगना में चंदन की चौकी मोरी अंगना में चंदन का आसन आसन पे मैंने फूलों से सजाया आसन को मैंने फूलों से सजा गोरा संग बैठो भोलेनाथ गोरा संग बैठो भोलेनाथ हमारे घर

0: बेलपत्र चुने चुने हार बनाया, बेलपत्र चुने चुने हार बनाया, हार बनाया तुझे तेरे हार बनाया, तेरे गले पहनाया, हार बनाया तेरे गले पहनाया, अपने घर आंगन में पहनाऊं भोलेनाथ, हमारे घर आंगन में डमरू बजाओ भोलेनाथ, हमारे घर आंगन में सावन महीना तेरे कांवर लाऊं, सावन महीना तेरे कांवर लाऊं, कांवर लाऊं गंगा जल भर लाऊं, कृपा बरसाओ भोलेनाथ, मुझ पर कृपा बरसाओ भोलेनाथ, हमारे घर आंगन में गोरा संग आओ भोलेनाथ, गोरा संग आओ भोलेनाथ, हमारे घर आंगन में, हमारे घर आंगन में डमरू बजाओ भोलेनाथ, हमारे घर आंगन में, हमारे घर आंगन में हर महादेव।
1: क्या बात है, मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन तो मुझे नहीं लगता कोई गाना हो सकता है सावन के लिए, क्योंकि भोलेनाथ को अपने घर बुलाना बहुत बड़ी बात है।
2: और सावन कोशिश करूंगी भोलेनाथ का ही सावन सोमवार सुनाऊं।
1: क्या बात है, और मैं चाहूंगी एक आध लिख के भी कुछ सुना दीजिए आप, लिखना बंद कर रखा है आपने।
2: हाँ मैम, अब लिखा है, कविताएं बहुत लिखी है, सुनाएंगे जरूर।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच।
2: थैंक्स मैम, थैंक्स।
1: चलिए हम भी सुनते हैं भोलेनाथ का वो गाना जो हमने शुरू कर रखा था, भोले ओ भोले।

0: हाँ जी भैया जी
1: जी, आपका नाम? शुभ संध्या।
0: हमारा नाम देवी दयाल है जी।
1: जी देवी दयाल जी, शुभ संध्या, क्या सुनाना चाहेंगे आज?
0: आज हम आपको सुनाना क्या चाहेंगे, सुनना चाहते हैं, सावन है, भोलेनाथ का गाना सुनना है जी।
1: तो अभी गाना सुनाने का समय नहीं हुआ है, अगर आप अपनी फरमाइश का गाना सुनना चाहते हैं तो 4 बजे कॉल करके सुन सकते हैं, अदरवाइज 7:45 से आप चैट रूम में फरमाइश कर सकते हैं, कॉल पे फरमाइश नहीं ली जाएगी। शुक्रिया। तो हमारे लिसनर्स जो हैं वो सुनते ही नहीं है मुझे लगता है रेडियो, वो सिर्फ गाना फरमाइश करने के लिए कॉल करते हैं। क्या कहें क्या कहें, आप लोग भी बड़े कमाल हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, कमाल के हैं लेकिन जैसे भी हैं, कहते हैं ना कि दोस्त हैं आप लोग मेरे। तो आगे बात करते हुए मुझे दिख रहा है कि चैट रूम में हमारे बहुत सारे लिसनर दोस्त दिख रहे हैं, धर्मेंद्र मोहन जी, और हमारे साथ हैं हमारे अनूप जी। कैसे हैं अनूप जी, आपकी तबीयत कैसी है और आपका पैर कैसा है पहले तो ये बताइए। सनी पांडे हमारे साथ, गुड इवनिंग। प्रीति जी हैं और कॉल आ चुका है, आवाज़ सुनते हैं, देखते हैं किसकी है। हेलो,
0: नमस्कार, गुड इवनिंग,
1: शुभ संध्या, कैसे हैं?
0: हाँ ठीक है।
1: तो
0: क्या हुआ अनूप जी का हाल चाल लिया?
1: जी जी बिल्कुल अनूप जी, बिल्कुल परेशान है, थोड़ा सा पैर में फ्रैक्चर हो गया, बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। हाँ। फिलहाल आपसे जानना चाहते हैं, आज दोस्ती का मतलब हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो चाहूंगी कि आप भी अपनी पुरानी जो गीतों की डायरी है उसमें से एक प्यारा सा गाना दोस्ती पे सुनाएं आज।
0: अच्छा अच्छा, वैसे हम अनु भाई गए थे, अनूप से मिलके चले आए थे, गए थे
1: तो। हेलो,
0: हाँ सब ठीक ठाक है, 1 महीना लगेगा प्लास्टर खुलने में, फिर ठीक हो जाएंगे।
1: जी बिल्कुल। और गीत कौन सा सुना रहे हैं ये बताइए।
0: गीत सुना रहे हैं आपको एक रफी की आवाज है। आखिरी गीत मोहब्बत के सुना लो तो चलो, आखिरी गीत मोहब्बत के सुना लो तो चलो, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, तो सुबह लूं तो चलूं आखिरी दिन। तेरी दुनिया से

फिर न आने की कसम आज मैं खा लूं तो चलूं आखिरी दिन। आज मैं गैरू कुछ दिन हुए मैं गैर न था आज।

0: सुबहानु तो चलो
1: क्या बात है, समा बांध देते हैं आप अपनी आवाज से, ना सिर्फ गाना सुनाते हैं, एक दौर को वापस खींच के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अच्छा निभा पाए,
1: बिल्कुल, मतलब निभाना निभाना तो उसे कहते हैं जो बस गाना गा दिया जाता है, समय को वापस ले आना, वक्त को लाके सामने खड़ा कर देना, यही एक अच्छे मुझे लगता है फनकार का मतलब गुण होता है, और आपने बेहद खूबसूरत गाया, क्या कहना।
2: अब क्या करें, पुरानी गीत है, जैसा आता है वैसा निभा पाता हूँ तो निभा लेता हूँ, सिर्फ कोशिश रहती है हमारी, बाकी अब भगवान जाने अच्छा लगा नहीं लगा उसके लिए तो मैं क्या कर सकता
1: हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा,
2: ठीक है।
1: चलिए सुरेश जी की आवाज़ में हमने बहुत प्यारा सा गाना सुना, और अब देखते हैं अगले कॉल की बारी है, कौन है हमारे साथ। हेलो, गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग,
1: कैसी हैं, हमारी एक और मैत्री आ गई है साथ में, नाम है इनका आशु जी, क्या हाल है। दिवस की शुभकामनाएं ये बताइए कैसी हैं आप, और क्या सुनाने वाली हैं, शहर का मौसम कैसा है आपके।
3: मैं कल से बहुत बारी है लेकिन बहुत गर्मी हो रखी है, आज तो बहुत गर्मी थी।
1: ये बात तो है, मौसम बदल भी रहा है लेकिन जरा धीरे
3: धीरे।
1: चलिए कोई बात नहीं, ये मौसम का बदलना हम भी देख लेंगे, मौसम कब तक अपनी जिद पे लगा रहेगा। ये बताइए आज आप क्या सुनाने वाली हैं।
3: मैं भोले बाबा के ऊपर मैं भी सुनाऊंगी सॉन्ग।
1: अरे वाह, क्या बात है, सब महादेव को खुश करने में लगे हैं, सब ये वाला ट्रिक तो जानते ही हैं कि भोलेनाथ जल्दी मान जाते हैं, जल्दी इसीलिए जल्दी से उन्हीं को खुश किया जाए। क्या बात है, स्वागत है, स्वागत है।
3: भोले बाबा हजारों तेरे नाम है, भोले बाबा हजारों तेरे नाम है, एक नाम लिया मैंने गणपति जी आए, एक नाम लिया मैंने गणपति जी आए, भोले बाबा वेदों में तेरा नाम है, भोले बाबा हजारों तेरे नाम है, एक नाम लिया मैंने ब्रह्मा जी आए, भोले बाबा सृष्टि में तेरा नाम है, भोले बाबा हजारों तेरे नाम।

बाबा सृष्टि में तेरा नाम है, भोले बाबा हजारों तेरे नाम है, एक नाम लिया मैंने विष्णु जी आए, भोले बाबा शाखाओं में तेरा नाम है, भोले बाबा

0: भक्तों में तेरा नाम है भोले बाबा, हजारों तेरे नाम है भोले बाबा, हजारों तेरे नाम है।
1: क्या बात है, आपने भी एकदम मतलब ना सिर्फ भगवान को अर्पित एक गाना सुनाया बल्कि शाम बना दी, क्या बात है, मज़ा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आशु जी की आवाज़ में हमने सुन लिया ये प्यारा सा गाना और उम्मीद करते हैं कि सुन के मज़ा आ गया। गुड इवनिंग अगेन, सभी को वापस से स्वागत है। और ये शाम ऐसे मतलब रुकने नहीं वाली है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी धीरे धीरे से शाम के अंदर आएँ और ना सिर्फ आएँ और अपनी आवाज़ से मतलब कहते हैं ना कि अपनी हाजिरी लगाएं। तो अगले कॉल को ऑन एयर करने का टाइम है।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: अनन्या मिश्रा।
1: अनन्या, गुड इवनिंग अनन्या, कैसे हैं
2: आपको भी गुड इवनिंग हमारी तरफ से। आपको सावन सोमवार, पहले श्रावण सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच अनन्या सिंह। और पास में रेडियो या कुछ बज रहा है तो उसे हटा दें।
2: हम केवल कॉलिंग से बात कर रहे हैं।
1: आवाज बहुत रिपीट हो रही है।
2: धीमी आ रही है आवाज?
1: नहीं, रिपीट हो रही है।
2: बार बार रिपीट हो रही है
1: जी।
2: गाना सुनाना है
1: जी। कौन सा गाना सुनाएंगे?
2: अब तो आवाज रिपीट नहीं हो रही है।
1: नहीं नहीं, सुनाइए कौन सा गाना सुनाएंगे आप।
2: किशोर कुमार का गाना। एक लड़की भीगी भागी सी जो सोती रातों में जागी थी, मिले एक अजनबी से कोई आगे न पूछे पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है, तन भीगा है सर गीला है, कोई पेंच भी इसका ढीला है, चाल बहकी है। मिले एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। और दूसरा गाना सुनाना है। यादों की सुलगती छाँव में हम दिल थाम के रोया करते हैं, क्या खूब हैं हम भी दीवाने जो उनकी तमन्ना करते हैं, ये राज हमें मालूम है वो किसी और को चाहा करते हैं, ये प्यार न हो कभी कम मेरे हमदम दुआ करना। यही गाना सुनाना था।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा सुनाया आपने। काफी जल्दीबाजी में भी थी आप लेकिन बहुत अच्छा सुनाया। थैंक यू सो मच अनन्या, मजा आ गया। तो अनन्या की आवाज में गाना सुन लिया हम लोगों ने और बहुत अच्छा सा गाना सुनाया। और एक गाना जो मैं काफी देर से आप लोग को सोच रही थी सुना दूं, तो चलिए सुनते हैं। शाम का टाइम है और एक अच्छा सा गाना सुनने का भी टाइम है, तो चलिए एंजॉय करते हैं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की
4: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
5: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
4: सच में? क्या खास है वहाँ?
5: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
4: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
5: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
4: और फोटोग्राफी वगैरह?
5: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमैटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
4: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
5: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
4: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: तो लिसनर्स, वापस से आरजुबीना आपके साथ है और आपके साथ अब दूसरी आवाज भी जुड़ने वाली है. नाम है आन्या पांडे का. हेलो आन्या, वापस से स्वागत है आपका.
1: हेलो मैम. नमस्ते मैम.
0: नमस्ते. और आन्या, जैसे कि फ्रेंडशिप डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज आप क्या सुनाने वाली हैं दोस्ती पर?
1: क्या मैम?
0: आज हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज आप दोस्ती पे क्या सुनाने वाली हैं? कविता, गाना, क्या?
1: मैम याद करना पड़ेगा.
0: ओ, याद करना पड़ेगा. वैसे ये बताइए, आपकी कोई दोस्त है?
1: हाँ.
0: उनमें
1: बहुत
0: पक्की वाली दोस्त कौन सी? पक्की वाली.
1: पक्की वाली
0: मतलब जिसको कहना कि हाँ जिगर का टुकड़ा.
1: जिगर तो मैं सबको मानती हूँ, जितनी है ज्यादा है ही नहीं. हाँ. और दो है तो दो को मानती हूँ मैं.
0: मतलब दो है, दोनों को माना जाता है, और दोनों मतलब जिगर का टुकड़ा है, मतलब जिगर के दो टुकड़े कह सकते हैं.
1: हाँ.
0: तो जिगर के टुकड़ों को कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगी, सुनाएंगी आप?
1: हाँ मैम.
0: स्वागत है.
1: बस याद करना पड़ेगा मैम.
0: अरे याद कर,
1: कोई और सुना दूँ?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी सुना दीजिए आप.
1: मुझे सॉन्ग याद नहीं था, बस आपसे बात करने के लिए कॉल की थी. तो कुछ सुना दूँ? एक लाइन, दो लाइन, कुछ भी और सुना दूँ?
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: ठीक है, बीच से सुनाऊंगी बस थोड़ी सी. ठीक है. जब से तुमसे

जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम, जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम।

0: थैंक यू मैम।
1: क्या बात है, कितना अच्छा गाया आपने मतलब आन्या, मैं ये कहूँगी अपनी आवाज को बचाने से अच्छा है मंडे को कॉल करके जरूर कुछ ना कुछ सुना दिया करें, मजा आ जाएगा।
0: मैम थोड़ा सा और सॉन्ग ऐसे सुना दूं, वो भी बीच से?
1: क्या बात है, स्वागत है।
0: मेरे दिल ने

0: गुण है तेरा कि मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। मैं अपने फ्रेंड को डेडिकेट कर रही हूँ।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा, और गाना भी बहुत अच्छा आपने चुना, मतलब मजा आ गया सुन के। अन्यम टू गुड, बहुत सुरीला गाया आपने, बिना प्रिपरेशन के इतना अच्छा, और अगले मंडे प्रिपरेशन के साथ सुनेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय। और भाई अब सबकी आवाज़ें सुन के मज़ा आ जाता है, क्या कहने। प्रमुख हमारे साथ आ गए हैं लुधियाना से, काफ़ी दूर से सुन रहे हैं लोग, और बहुत सारे कॉल्स का इंतज़ार भी, और मैं किसी कॉल को भी मिस भी नहीं करने वाली। अनिल शास्त्री जी, शुभ संध्या जुगल जी, शुभ संध्या इम्तियाज़, गुड इवनिंग, कैसे हैं शुभ संध्या, और आशु जी भी आ गई हैं, तो चलिए आवाज़ सुनते हैं किसकी है। हेलो,
2: नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार, कैसे हैं शुभ संध्या, हमारे साथ रही
2: जी?
1: तो रही जी, क्या हाल है?
2: मैं एकदम ठीक हूँ, आप ठीक ठाक हूँ?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और कुछ सुनाने वाले हैं
2: जी। कोशिश करता हूँ सर।
1: क्या बात है, सबसे पहले मेरी तरफ से चाह लूँ कि आपको अग्रिम शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद, शुक्रिया। कोशिश करता हूँ। अभी दोस्ती पे बोला ना आपने,
1: जी
2: तो दोस्ती के लिए दो लाइन सुना देता हूँ।
1: क्या बात है, स्वागत।
2: बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दस्ताना हमारा, सलामत रहे दस्ताना। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दस्ताना हमारा। ये दोस्ती के लिए था।
1: क्या बात,
2: और दो लाइन अपने तरफ सुना देता हूँ।
1: क्या बात है,
2: शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्या कहा, फिर से दोहरा दोहरा। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। नाना पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है।
1: क्या बात,
2: ठीक तुम 4 बजे घर चले आना, मेरा हाथ मांग लेना, जरन शर्माना। अरे नहीं नहीं बाबा, शादी नहीं करना, इतनी अदाओं पर तो हाय, अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। बस इतना ही मैडम।
1: क्या बात है, क्या बात है, और आपको बॉलीवुड में होना चाहिए, इतना इतने अंदाज से आप गाते हैं, और इतना अंदाज है आपके अंदर, इतनी बेफिक्री है, ये हर किसी के अंदर नहीं होती, और क्या बात है, मजा आ गया, शुक्रिया,
2: थैंक यू
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई रईस जी ने इतने अच्छे से गाना गाया, और ये गाना स्पेशली इसको एनर्जी का चाहिए, ये शायद मेरी शादी का ख्याल, ये गाना हर किसी के बस का नहीं, हर कोई इतनी एनर्जी से, इतनी भावनाओं से गा नहीं सकता जैसा इन्होंने गाया। क्या बात है, मज़ा आ गया, मतलब आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल, मतलब क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। वैसे आप लोग बताइए, आप लोग क्या क्या सुनाने वाले हैं, और गाना तो एक और मुझे सुनाने का मन है आप लोग को, तब तक के लिए देखते हैं किसी का कॉल आता है, क्योंकि टाइम अभी हो चुका है मेरे भी जाने का, और मैं चाह रही हूँ कि जाने से पहले एक दो कॉल जो भी हैं वो मैं लेके जाऊँ, और किसी को भी मतलब ऐसा ना लगे कि आज मेरा कॉल नहीं उठा। वैसे ये बात है कि आप लोग शुरू से कॉल नहीं करते, थोड़ा सा लेट में कॉल ट्राई करना शुरू करते हैं, इस वजह से थोड़े से ओवरलैप्स हो जाते हैं कॉल, और कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है मस्त है। चलिए सुनते हैं एक गाना आप लोग के साथ।

भाई दोस्ताना तो सलामत रहेगा, लेकिन दोस्तों से ये ज़रूर कहिएगा कि मिलना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको ये कहूँगी कि मेरे जाने के पहले ये गाना आप सुन दीजिए, कल फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी कभी नहीं ट्यूसडे को होगी, आपकी शाम ठीक 6 बजे गोंडा में सुनसाना।

0: इस बेहतरीन से गाने के पहले एक बेहतरीन सा कॉल, चलिए सुनते हैं आवाज किसकी है। हेलो,
1: शुभ संध्या भैया जी।
0: शुभ संध्या, कैसे हैं अनूप जी, क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल ठीक है, आराम कर रहे हैं,
0: रिकवर कर रहे हैं। और डॉक्टर ने क्या कहा आपको, कितने दिन में आप फुल्ली रिकवर हो जाएंगे?
1: एक महीना सात दिन, मतलब सवा महीना।
0: सवा महीना, चलिए कोई बात नहीं, ये टाइम भी निकल जाएगा। और अच्छा है कि थोड़े से मतलब चीज में निकले हैं और फ्रैक्चर जो है वो बहुत कम है। फिलहाल ये बताइए, आप कितने लोगों के दिलों में फ्रैक्चर कर चुके हैं कॉल ना करके, उसका क्या करेंगे?
1: मैं सबको मनाने के लिए गाना गा रहा हूँ आज।
0: मतलब बहुत सारे दिलों में फ्रैक्चर आ चुका है, मैं तो बता बता के थक गई। अब ये बात आप ही बताइए कि आप सबके फ्रैक्चर को एक साथ कैसे प्लास्टर लगाएंगे, पक्का प्लास्टर करेंगे कच्चा?
1: कोशिश करा जाएगी कि परमानेंट प्लास्टर चढ़ा दें।
0: क्या बात है, क्या बात है, चलिए
1: ना कच्चा ना पक्का,
0: क्या बात है, स्वागत है।
1: सनम तेरी कसम मूवी का तेरा चेहरा गाना है।
0: क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है।
1: मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाए,

जब नजर आए, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना आँखों से भीगा भीगा प्यार बह जाता है, मेरी तन्हाइयों को नूर मिल जाए। चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए, मेरा तुझे दुआ करूं तेरे लिए मैं जियो मरूं, चारों पहर तुझे देखा करूं मेरा जहां, ये तुझ पे खोना करूं, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना हो तो के तेरा एहसान रह जाता है, तेरे हर रास्ते को मंजिल मिल जाए, तेरा चेहरा

0: हवाए, बस मैम इतना ही याद है।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। लास्ट मोमेंट पे कॉल किया आपने, पर गाना बहुत अच्छा सुनाया, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कुछ दिलों को तो मरहम मिल गया होगा, बाकियों के लिए हम मरहम की व्यवस्था करते हैं बुधवार को।
0: बिल्कुल मैम, ना जैसे वो समय ऐसा रहता है कि वो अर्चना रहती नहीं है, मैक्सिमम टाइम पे ये रहता है कि अर्चना रहती है, और दोनों बच्चे शाम के समय एकदम अपने जैसा कहते हैं ना कि मैक्सिमम पे रहते हैं अपने
1: पीक पे। कोई बात नहीं, कोई बात
0: नहीं। तो इसीलिए दिक्कत होती है, मैं फोन लेता हूँ, फोन छीनता है। इसीलिए बट आई विल ट्राई।
1: ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनूप जी, और जल्दी से रिकवर कर जाइए और सबके दिलों के फ्रैक्चर को सही कर दीजिए। तो अनूप जी की आवाज़ हमने सुनी, और समय भी हो चुका आप लोगों से जुदा होने का। जुदा होके भी तुझ में कहीं बाकी हूँ। तो फिलहाल मिलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल आपसे यहीं पे इसी समय आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला आर्च पीने वाला में। एंड दोस्ती की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखो दोस्त कैसा भी हो भाई, दोस्त होना चाहिए। कहते नहीं है कि शम्मा कहीं भी चाहे शहर में मेरे या कहीं जलनी चाहिए। फिलहाल मैं आपसे ये कहूँगी कि दोस्त वही था जिसने बचपन में आपके टिफ़िन ना लाने पे अपना शेयर किया था टिफ़िन। दोस्त वो नहीं जो हर तस्वीर में साथ हो, दोस्त वो है जो तकलीफ़ में साथ हो। बचपन में टिफ़िन शेयर करने वाला, स्कूल की वो आखिरी बेंच पे खुद आगे बैठा हो और तुम्हें पीछे देखे तो पीछे भाग के आने वाला, कॉलेज में आपके साथ मस्ती करने वाला, बिना वजह घंटों बातें करने वाला, आपके होमवर्क ना करने पे खुद भी ये कहने वाला यार मैंने भी नहीं किया, मैम मुझे भी पीटेंगी तो तुम भी पीट जाओ, वो दोस्त होता है। दोस्ती की बात हो और दोस्ती के जो कहते हैं ना कि रूल्स ना बताए जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्ती एक दूसरे को समर्पित वाली होनी चाहिए, दोस्ती में गिव एंड टेक नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आप शायद दूसरे की हेल्प ना कर पाए, लेकिन आपका दोस्त अगर हेल्प करे तो उसके मन में ये नहीं आना चाहिए यार ये तो मुझे मदद ही नहीं करता, इसकी तो मैं मदद नहीं करूँगा, बस काम पे फ़ोन करता है। दोस्ती में उसकी हंसी के साथ चाहे आपकी हंसी ना बटे, पर हाँ उसके आंसू के साथ आपके आंसू ज़रूर बटने चाहिए। दोस्त जो है वो एक शब्द नहीं है, दोस्ती एक शब्द नहीं है, ये दिल का एहसास है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब ये साथ आता है और लगता है कि पूरी दुनिया साथ खड़ी है। दोस्तों रिश्तों को निभाना किस्मत की बात मान सकते हैं, लेकिन दोस्ती दिल से निभाई जाए तो किस्मत भी बदल सकती है। और अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो आपसे नाराज़ है, दुखी है, या आपकी वजह से लग रहा है कि मैसेज नहीं किया, आपने कॉल नहीं किया तो डिस्टेंस आ गया, तो नंबर घुमाइए, कॉल करिए, कैसे हो यार, कहाँ हो यार, कब मिलोगे, कब आ रहे हो, तुम कर नहीं आते तो मैं आ जाता हूँ, एक सॉरी बोल दीजिए अगर आपका कोई दोस्त आपसे नाराज़ है। अगर बात नहीं हो रही तो एक कॉल कर लीजिए और इसे एक मैसेज कर दीजिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो बाय बाय, टेक केयर, चलिए मुझे दीजिए इजाज़त इस बेहतरीन से शाम से, और आगे कंटिन्यू करिए अपनी डिमांड्स आरजे सिंपल के साथ। आप कुछ अच्छा सुन रहे थे तो डेफिनेटली यान सिटी 9.6 FM पे आरजे बीना के साथ शो गोंडा मैसेज मसाला सुन रहे थे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए 9.6 FM। स्टे ट्यून्ड।

वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो परमाईशी विद योर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की।

आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइशी में, आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। सजन लोगों ने अपनी परमाइशी की गठरी को नई खोली है। ओहो, आज तो है सावन का पहला वाला सोमवार। तो अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए एकदम से अपने जज्बात से मैच करता हुआ, और लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए, लगा दीजिए डेफिनेटली जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। कैसे हैं आप सब? और कल था संडे तो आप लोगों ने मुझे कितना सारा मिस किया, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन उसके पहले दिल से इस्तकबाल है महेंद्र राजस्थान से, मालवी नगर से राजेश सिंह जी, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, रानी गुप्ता जुगल किशोर वर्मा एमपी से, उषा कश्यप गोंडा से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, सनी पांडे, शगुन तिवारी गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, और नागेश्वर धाकड़ आपका भी स्वागत है इंडिया से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, इम्तियाज अहमद गोंडा से, रौनक तिवारी गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा मीन्स जग्गू दादाजी एमपी से, ऋतिक साहू आपका भी स्वागत है, आलोक और शगुन वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, बजीरानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में। और अब चलिए चलते हैं, क्योंकि वक्त हो चुका है हमारे जज्बातों की गठरी की तरफ चलने का। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में पहली फरमाइश जानते हैं किसकी है, महेंद्र की राजस्थान से, और महेंद्र को राजस्थान से सुनना है गाना ये नखरा लड़की का। सो एंजॉय करते हैं सुहाग मूवी का ये सुपर डुपर हिट सदाबहार नगमा हमारे सदाबहार महेंद्र की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की ऑब्वियसली खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक कराने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास गोंडा से।

वैसे हम लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफें हमें एंजॉय की हैं दोस्तों, लड़के की नखरे के लिए और लड़कियों के नखरे के लिए। वैसे अगर लड़के नखरे नहीं दिखाएंगे तो लड़के कहाँ से कहलाएंगे, और लड़कियां नखरे नहीं दिखाएंगी तो लड़कियां कैसे कहलाएंगी, मुझे ये लोचा नहीं समझ में आ रहा। फिलहाल आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं अपनी इस कंफ्यूज्ड और मिक्स्ड आरजेस सिंपल को। फिलहाल वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आशा मिश्रा जी लखनऊ से और रौनक तिवारी गोंडा से आपका स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग इन योर शो, और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। तो दोस्तों अब हम चलेंगे थोड़ा सा टाइम जोन में पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ चल के हम एंजॉय करेंगे मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, किशोर कुमार जी की ओल्ड इज गोल्ड वाली आवाज में हम एंजॉय करेंगे रुक मेरी रानी। सो एंजॉय करते हैं ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, दिल दौलत दुनिया का नगमा, हमारे हमारे हमारे ओल्ड इज गोल्ड, मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश। पर स्टे ट्यून्ड एवरीवन। सावन के पहले सोमवार की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।

हमने एंजॉय किया है किशोर कुमार की आवाज में ये तड़कता भड़कता से एनर्जी से भरपूर वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है रोहित के गोंडा से। रोहित को गोंडा से सुनना है गाना नाउ कागज की गहरा है पानी। तो लता जी की आवाज में और रफी जी की आवाज में दुनियादारी का ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा फिर से एंजॉय करते हैं, लेकिन इस बार रोहित की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन एंड वेलकम इन योर शो रोहित।

नाउ कागज की गहरा है, इतनी गहरी आवाज थी मोहम्मद रफी जी के और लता मंगेशकर जी की। दुनियादारी का ये गाना हमने एंजॉय किया है रोहित की फरमाइश पर, थैंक यू सो मच रोहित, रियलिटी चेक कराने वाली फरमाइश को हम तक साझा करने के लिए, थैंक यू सो मच। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से, और अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा। सो एंजॉय करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, लेकिन AI वर्जन वाला, सिर्फ और सिर्फ अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अनोखी शर्मा, आवाज विकास गोंडा से रवि, और कार्तिक कश्यप आपका भी स्वागत है, रवि राजू सीतापुर से आपका भी स्वागत है, स्टे ट्यून्ड। ओह म्यूजिक तो अच्छी लगती है।

बनो कि मैं खुद बेघर बेचारा। आई रियली लव दिस सॉन्ग, मुझे ये गाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और वो कहती है ना दोस्तों कि आजकल की जो जनरेशन है उनको 90s के, 70s के, 80s के गाने बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ गाने 20s के भी बहुत अच्छे लगते हैं। अभी आजकल वाले उनके टाइम वाले गाने उनको अच्छे लगे चाहे ना लगे, लेकिन वो जो सुनहरे नगमे, सुनहरी आवाज में, सुनहरे जज्बातों के साथ में लिखे गए हैं, गाए गए हैं, उसको शायद हम कभी भी ऐसे डिनाई नहीं कर पाएंगे, हमें ऑल टाइम एक्सेप्ट करना ही होगा। सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। रानी गुप्ता को सुनना है गाना जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं। तो कुमार सानू की आवाज में एंजॉय करते हैं दिलवाले मूवी का ये नगमा, 90s का सुपर डुपर हिट नगमा। रानी गुप्ता की फरमाइश पर उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया है महेंद्र को जो कि है राजस्थान से। स्टे ट्यून्ड।

वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो तबीश खान लखनऊ से आपका स्वागत है। श्याम नाम की पगली मींस सुमित्रा जी स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से आपका भी तहे दिल से स्वागत है, नमस्ते एंड स्टे ट्यून्ड। मोहम्मद मुशीर जी दिल पे काशिक फ्रॉम बाराबंकी स्टे ट्यून्ड।

सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से। जुगल किशोर वर्मा जी को आज सावन के सोमवार के हिसाब से एक डिवोशनल प्लेलिस्ट से एंजॉय करना है शिव आराधना एल्बम का जय भोले जय भंडारी। सो एंजॉय करते हैं ये डिवोशनल सॉन्ग एंड वंस अगेन हैप्पी सावन। और सावन का पहला सोमवार आप सभी को ढेर सारी खुशियां और ढेर सारा सुकून दे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। हमने एंजॉय किया है डिवोशनल सॉन्ग आज मंडे की प्लेलिस्ट से सिर्फ और सिर्फ जग्गू दादा की फरमाइश पे। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों की फरमाइश हमारे पास में है, आप भी ऐसे ही करेंगे इस गाने को सुनने के बाद में, क्योंकि अगली फरमाइश है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से। और धर्मेश त्रिपाठी को गोंडा से सुनना है क्योंकि का गाना, दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके और दे चुके तुझे दिल ये दिल दे चुके। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में हमने एंजॉय किया ये सुपर डुपर हिट नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रीति शुक्ला जी की बहराइच से। उनको सुनना है खुद गर्ज का नगमा, जिंदगी का नाम दोस्ती। सो प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पर एंजॉय करते हैं ये फ्रेंडशिप फॉरएवर वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

जिंदगी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि रिश्तेदार काम आए चाहे ना आए आपके बुरे वक्त में, रिश्तेदार काम आए चाहे ना आए लेकिन यार और व्यवहार जरूर काम आते हैं आपके गिरे वक्त में, आपके बुरे वक्त में। जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो तब, सीढ़ियां चढ़ चुके होते हो तो बहुत आएंगे, अरे मुझे तो पता ही था तू कल ले जाएगी, आई नो ना, मुझे तो पता ही था तुझे तू कल ले जाएगा, भाई मुझे तो पहले से अंदाजा था, इससे पूछ मैं इससे बोलता था, है ना, ये बोलने सब आएंगे। सो हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, लव यू मेरे आज से लेके, मतलब जब से मैंने जन्म लिया हो तब से लेके अभी तक जितने भी दोस्त मेरे आज तक रहे, क्योंकि मेरी जिंदगी में वही लोग रहे हैं जो सच में मुझसे प्यार करते हैं। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और ये गाना डेडिकेट करती हूँ मैं आप सभी को। फिलहाल ये तो फरमाइश थी प्रीति शुक्ला जी की, लेकिन काफी फ्लैशबैक में लेके चला गया ये गाना मुझे। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में शगुन तिवारी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना छोटा बच्चा समझ के मुझको ना तड़पाना रे। सो एंजॉय करते हैं मासूम का ये आदित्य नारायण की आवाज में नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। और ये फरमाइश है शगुन तिवारी की, और शगुन तिवारी हैं गोंडा से।

का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप मासूम का ये गाना हमने एंजॉय किया है आदित्य नारायण की आवाज में। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है और रौनक तिवारी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा हाउ रोमांटिक वाला नगमा, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आशिकी 2 का बहुत दिनों बाद। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कितने दिनों बाद सुन रहे हो, कितने मिनट बाद सुन रहे हो, कितने सेकंड बाद सुन रहे हो, आई रियली डोंट नो, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये गाना शायद मैं काफी सालों बाद सुनने जा रही हूँ। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा सिर्फ और सिर्फ रौनक तिवारी की फरमाइश पर। थैंक यू सो मच इस गाने को फिर से याद दिलाने के लिए।

आशिकी तुम ही हो। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, थैंक यू सो मच रौनक तिवारी फ्रॉम गोंडा। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन जी की आवाज विकास गोंडा से, और धर्मेंद्र मोहन जी को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना साडे दिल ते चलाई छुरियां। सो एंजॉय करते हैं दलेर मेहंदी का ये पंजाबी वाला नगमा। ओ माय गॉड, हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

एंड थैंक यू सो मच धर्मेंद्र मोहन फ्रॉम आवाज विकास गोंडा, आपने बहुत ही खूबसूरत सा नगमा फरमाइश किया था, तो इसका प्ले होना ना प्ले होना इसे कैसे पॉसिबल हो सकता था कि गाना बजेगा नहीं? भैया बज गया। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। सो एंजॉय करते हैं ये डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ आशु जी की फरमाइश पर आज सावन की सोमवार के, आज सावन के पहले सोमवार के उपलक्ष्य में। आशु जी थैंक यू, और अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा इस छोटी सी क्यूटी सी रियलिटी चेक करवाने वाली थोड़ी सी कड़वी सी और सिंपल नॉट सो सिंपल पर। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, और इसी के साथ मैं दोस्तों बताना चाहूंगी कि इस फरमाइश गीत की उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। जी हां दोस्तों, जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है, जिनको फलाहार भी करना है, कुछ लोग आज के दिन व्रत होंगे तो जिनको फलाहार करना है आप भी पेट पूजा कर लो, और जिनको अन्नाहार करना है, व्हाटएवर सब कुछ खाना है, वो लोग भी जो मन वो खाओ, और पेट पूजा करके दनादन से सीधे 9 बजे फरमाइशी की महफिल में वापस आओ। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये डिवोशनल सॉन्ग। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, लेकिन अच्छी वाली वो मनोकामनाएं भगवान आप सभी की पूरी करें जो मनोकामनाएं आपके जीवन के लिए थोड़ी सी हेल्दी हो, क्योंकि मनोकामनाएं तो हमारी बहुत कुछ होती हैं, सब कुछ थोड़ी पूरी होनी चाहिए। सब कुछ पूरी हो जाएंगी तब तो गलत ही हो जाएगा ना दोस्तों, खिचड़ी बन जाएगी जिंदगी की।

0: न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
6: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
7: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
8: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
9: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
9: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है। और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
10: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वंस अगेन वेलकम बैक इन योर शो फरमाइशी वीडियो आज सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, फरमाइशी की महफिल में हम लोग सब फिर से एक बार एकत्रित हो चुके हैं और अपनी फरमाइशी की तो को एंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के प्यार के साथ में ढेर सारा आनंद लेंगे, सुकून का, प्यार का, गीत का, जज्बात का, क्यों सही कहा ना मैंने। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू की सीतापुर से, उनको सुनना है गाना पी के शंकर जी की बूटी। सो एंजॉय करते हैं ये सावन स्पेशल वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ राजू की फरमाइश पर और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन अपनी आरजे सिंपल

सी और पिला दे यार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है पीके शंकर जी की बूटी की। यहाँ शंकर जी की बूटी को प्रसाद लेने की बातें हो रही थी। फिलहाल बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी राजू की सीतापुर से, और अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है हमारे पास में। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों कैलाश खेर के गाने की। जी हाँ दोस्तों, हमारे हर हर महादेव के गाने की। सो एंजॉय करते हैं ये फरमाइश जो आई है चांदनी की गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, हैप्पी सावन एवरीवन। ओहो

जी हमने एंजॉय किया कैलाश खेर का ये डिवोशनल सॉन्ग एंजॉय करते हैं। हमारी आज की अगली फरमाइश, अगली फरमाइश हमारे पास में है कार्तिक कश्यप की। कार्तिक कश्यप को सुनना है गाना आरंभ है प्रचंड, सो एंजॉय करते हैं आरंभ है प्रचंड सिर्फ और सिर्फ कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। वैसे शिव बोलते ही, शिव का नाम लेते ही, शिव का स्मरण करते ही शक्ति अपने आप आनी जाती दोस्तों।

प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंद की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या की

जान ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है।

डिवोशनल और मोटिवेशनल सॉन्ग हमने एंजॉय किया है। अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकर। नागेश्वर धाकर को भी सुनना है, अपने तो बॉस हैं बाबा महाकाल, सो एंजॉय करते हैं ये सावन वाला महाकाल वाला डिवोशनल सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

ही कोई चिंता ना ही कोई जाल, अपने तो बॉस हैं बाबा महाकाल। हमने एंजॉय किया है ये साउंड स्पेशल वाला गाना नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से। मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना दिल लगी का धुम धुम लक लक। सो एंजॉय करते हैं सुखविंदर सिंह का, महेंद्र कपूर का, शंकर महादेवन का ये तड़कता भड़कता सा नगमा सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुशीब की फरमाइश पर जो की है बाराबंकी से। स्टे ट्यून्ड।

जी मोहम्मद मुशीर जी की बाराबंकी से अगली फरमाइश हमारे पास में है आवाज विकास गोंडा से रवि की। इंजॉय करते हैं रवि की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों हमने एंजॉय किया है ये सीरियल का टाइटल ट्रैक हमारे आवाज विकास गोंडा से रवि की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश है हमारी आज की आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश है दोस्तों मोहित की मालवे नगर गोंडा से। उनको सुनना है गाना अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। सो एंजॉय करेंगे फिर से सावन स्पेशल वाली प्लेलिस्ट से गाना और इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो दोस्तों हंसते रहना मुस्कुराते रहना गुनगुनाते रहना अपना ख्याल रखना अपनों का ख्याल रखना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। So guys have a very very very very great night. Take care of yourself and your family as well. Someone special का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय लव यू ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। हैप्पी सावन थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार बहुत सारी विशेष आप सभी के लिए बहुत सारा सुकून आप सभी के लिए और आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी खट्टी मीठी कड़वी और रियलिटी चेक कराने वाली आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। बाय बाय एवरीवन स्टे ट्यून्ड मुस्तफा जी साउदी से।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, इस्तकबाल आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी हाँ, सावन के श्रावण मास के प्रथम सोमवार की आप सभी को शुभकामनाएं। देवों के देव महादेव हम सभी के सभी मनोरथों को पूरा करें, ऐसी शुभकामना, ऐसी हमारी मंगल कामना आप सभी के प्रति और स्वयं के भी प्रति। और अब चलते हैं गजलों की दुनिया में। आज बात करेंगे जिस कलमकार की, उनका नाम है डॉक्टर नवाज देवबंदी। एक ऐसा नाम जिसने उर्दू महफिल की दुनिया में इल्म से लेकर के और फिल्म तक का सफर भी तय किया। उनकी कुछ गजलें बहुत महान गायकों ने गाई और जिंदगी के कई ऐसे पहलू थे जिनको छूती हुई उनकी गजलें निकलती हैं, नज्में निकलती हैं, उनके शेर निकलते हैं। उन्होंने कहा कि कोई मुझ में है, मैं किसी में हूं, कोई मुझ में है, मैं किसी में हूं, मैं अंधेरा हूं, रोशनी में हूं, कोई मुझ में है, मैं किसी में हूं, मैं अंधेरा हूं, रोशनी में हूं, तेरे गम में हूं मैं, खुशी में हूं, धूप में और चांदनी में हूं। मौत जिससे निजात देती है, मौत जिससे निजात देती है, कैद ऐसी जिंदगी में हूं, क्यों मेरे दोस्त मुझसे बचते हैं, क्यों मेरे दोस्त मुझसे बचते हैं, ऐसा लगता है मुफलिसी में हूं। गरीबी, इंसान के पास जब पैसे नहीं रहते तो शायद दोस्तों का अकाल सा पड़ जाता है, क्यों मेरे दोस्त मुझसे बचते हैं, ऐसा लगता है मुफलिसी में हूं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ मांग बैठे उनसे, मेरे ऐबो हुनर छुपे हैं कैसे, मेरे ऐब हुनर मतलब अच्छाई और बुराई, मेरे ऐबो हुनर छुपे कैसे, मैं नवाज अपनी शायरी में हूं। जी हाँ, तो ये है नवाज देवबंदी साहब जो गजब की शायरी करते हैं। हमारे साथ श्री सविता शास्त्री जी हैं, चरण स्पर्श आपको और शुभ संध्या आपको, श्रावण मास के प्रथम सोमवार की शुभकामना भी आपको। और अब चलते हैं और बहारों की दुनिया में, गजलों की दुनिया में। आइए शुरुआत करते हैं मखमली आवाज़, और जब मैं मखमली आवाज़ बोलूँ इसका मतलब सिर्फ एक आवाज़ होती है गजल में और उसका नाम जगजीत सिंह होता है। आइए सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल और मिलते हैं आपसे इस संगीत में अंतराल के उस पाल। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे,

जी अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे। अच्छा, अगर इसका आप दूसरा पहलू देखें तो दूसरा पहलू क्या हो सकता है? हमारे कहने से अगर वो मुस्कुरा दिए तो दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि हमने अपना गम सुनाया और वो रो पड़े, ये भी तो होना चाहिए। सवाल जब एहसासात का होता है तो इंसान भीतर ही भीतर सोचता है कि काश मुझे कोई समझने वाला होता। और अक्सर यह होता है कि लोग समझने की जगह समझा के चले जाते हैं, और शायद इसीलिए हमारे दिल का कोई कोना कभी कभी खाली सा होता है, अकेला सा होता है, तन्हा सा होता है। हम चाहते हैं कि कोई हमको समझे, लेकिन लोग समझाते हैं। नवाज देवबंदी साहब लिखते हैं कि तेग अपनी जगह, मतलब तेग कहते हैं तलवार को, तेग अपनी जगह, दाद अपनी जगह, दाद का मतलब घर, तेग अपनी जगह, दाद अपनी जगह, और हकीकत का इजहार अपनी जगह। अब खंडहर है खंडहर ही कहो दोस्तों, अब खंडहर है खंडहर ही कहो दोस्तों, शीश महलों का आसार अपनी जगह। आसार मतलब विशेषताएं। तूर पर लाख मूसा से हो गुफ्तगू, तुर मतलब स्वरूप, रंग या ढंग, जो कुछ आप कहें, पद्धति, अंदाज। तूर पर लाख मूसा से हो गुफ्तगू, अर्से आजम पे दीदार अपनी जगह। मूसा एक बहुत बड़े पैगंबर हुए हमारे। मुख्तसर ये बता सर बकफ कौन था, वो बहादुर कौन है, जीत अपनी जगह, हार अपनी जगह। देखिए, अगर कोई व्यक्ति लड़ाई में जीता तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बहादुर ही रहा हो। समटाइम्स जिंदगी में कभी कभी कमजोर इंसान भी बाजियां जीत जाते हैं। सत्रह बार कोई हारा हो और 18वीं बार जीता हो, ये हमारे देश के इतिहास में है। आप लोग ने इतिहास, आप सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन 18वीं बार जब वो जीते तो उन्होंने सामने वाले को मुआफ नहीं किया। तो जीतना या हारना ये नसीब की भी कहीं कहीं बात हो जाती है। कभी कभी बहादुर भी हार जाते हैं, कभी कभी कुछ परिस्थितियां भी होती हैं जिसके कारण इंसान ठीक ढंग से लड़ नहीं पाता। और उन्होंने कहा कि भाई से भाई के भी कुछ तकाजे हैं, मतलब बातचीत है। सहन के बीच की दीवार अपनी जगह। लेकिन अगर एक भाई बोले और दूसरा भाई बर्दाश्त कर ले तो शायद परिवार बहुत खूबसूरत हो सकता है। मेरा जहाँ तक अपना व्यक्तिगत अनुभव है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी हो, मैंने देखा कि अगर आप कभी कभी कसूरवार नहीं होते और फिर भी सामने वाला आपको कसूरवार मानकर डांट रहा है, तो बहस करने के बजाय जी गलती हो गई और आइंदा नहीं होगी, शायद ये बोलकर निकल जाना बुद्धिमानी है। मतलब आप सोचिए कि अगर बंटवारे होते हैं और बंटवारे की जड़ में जाएं आप, तो कहीं ना कहीं बात होती है। जब
दिलों में दीवारें खिंच जाती हैं तो भाई और भाई के बीच बंटवारा होता है। दीवारें पहले आंगन में नहीं खिंचती, पहले एहसासात में खिंचती हैं। बड़े नाजुक हैं खून के रिश्ते, बड़े नाजुक हैं खून के रिश्ते, तू इसे शर्मसार न कर। मेरा हिस्सा भी तू ले ले भाई, मगर घर में दीवार न कर। स्थिति ये भी आती है कि घर में दीवार नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमने आपको एक प्यारी सी गजल सुनाई कि अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें। सोचता हूं इसका विलोम क्या होगा, क्या इसका विरोधाभास भी हो सकता है कि हमने कहा और उन्होंने मुस्कुरा दिया। कितना ही अच्छा हो अगर हम अपना गम बयां करें और आंसू सामने वाले की आंखों से निकल जाए। जानते हैं ऐसे रिश्तों में बड़ा सुकून मिलता है। कहीं किसी ने कहा था कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो ये तो अच्छी बात है कि हमने उनसे कहा और उन्होंने मुस्कुरा दिया। लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि अपना दुखड़ा हमने उनसे कहा और आंसू हमारी आंखों की जगह उनकी आंखों में आ गए। कुछ इसी प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करता हुआ ये प्यारा सा नगमा हम ढूंढ कर लाए हैं आपके लिए। हमारे साथ अनिल शास्त्री जी उपस्थित हैं। चरण स्पर्श आपको दादा, और सावन के पहले सोमवार की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब चलते हैं अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें इसका दूसरा पहलू देखते हैं इस प्यारे नगमे में, और बताइएगा कि ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा, खुशी का भी और गम का भी।

थी जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। और होता भी है यही तो साहब, कि अपनी तकलीफ हम बयां करें और आंसू आपके निकल जाए। डॉक्टर नवाज देवबंदी कहते हैं कि वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, उसने मुझे रुलाया लेकिन खुद बहुत देर तक नहीं हंस पाया। वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। इंसान वास्तव में रुदन में बड़ा सुकून होता है। आप अगर फूट फूट कर रो लें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी मुश्किलों से निजात मिल जाती है। या आपने कभी गौर किया हो कि किसी का बहुत ही नियर एंड डियर वन, किसी की डेथ हो जाए और इंसान अगर न रोए तो लोग जबरदस्ती रुलाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये रोएंगे नहीं तो फिर पागल होने की स्थिति आ सकती है। तो रोना गम को बाहर निकालने का सबसे सशक्त माध्यम है। वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। भूलना चाहा कभी उसको अगर, भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। खुद बखुद बेखास्ता मैं हंस पड़ा, उसने इस दर्जा रुलाया देर तक। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, पंक्ति आ रही है संभालिएगा, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। ऐसे भी गरीब हैं, बच्चे से कहा खाना बन रहा है, खाली पानी उबाल के रख दिया है। जिंदगी में कुछ ऐसे सत्य, ऐसी कहानियां भी हैं। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। न बहुत देर तक धूप रहती है और न बहुत देर तक शाम रहती है, दोनों की अपनी एक अवधि है, एक समय है और इसके पश्चात वो गुजर जाते हैं। कल अंधेरी रात में मेरी तरह एक जुगनू जगमगाया देर तक। मतलब कितना भी घना अंधकार हो लेकिन जुगनू की तरह हम चमकेंगे, थोड़ा सा जो हमारे बस का है उतना उजाला तो हम करेंगे ही करेंगे। बाकी अंधेरे का अपना एक वजूद है, वो रहेगा, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। क्या बात है भाई, महेंद्र जी आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, आपका ही शो है जी बहार गज़ल। खामोशी भी एक जवाब है और ये जवाब बहुत कुछ कह जाती है। रास्ते बदल गए पर मंजिल आज भी वही है, कुछ लोग बदल गए पर यादें आज भी वही है। क्या बात है, सही बात है, यादें कहाँ किसी का पीछा छोड़ती हैं साहब। और मुशीफ लिखते हैं, गुड इवनिंग डियर आर्जमनु भाई, कैसे हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे। और धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवाज़ विकास से, मनुसर जी आपका गज़लों की दुनिया में स्वागत है। दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, एक जाए मंदिर को एक जाए मैं खाने को। नहीं साहब, अगर आप ध्यान से देखें तो ईश्वर हर जगह है। अभी छोटी सी कहानी याद आ गई, आपको सुनाते हैं। एक संत थे, तो
अपना उनका आश्रम चलता था और उनके दो परम शिष्य थे। तो जिंदगी है साहब, चलती है चलती है, और एक दिन इंसान को, इस दुनिया के हर इंसान को गद्दी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि हमारा और आपका जीवन एक निश्चित समय के लिए है, उसके ऊपर शायद हम नहीं जा सकते। तो गुरुजी का स्वास्थ्य बिगड़ा, उम्र ज्यादा हो गई थी, तो यह हुआ कि हमारे बाद इस गद्दी पर कौन बैठेगा। तो उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और एक एक फल दिया दोनों को, खाने वाला फल, और कहा कि तुम दोनों में से कोई एक जो ऐसी जगह फल खाकर आएगा जहां पर उसे कोई ना देख रहा हो, उसको ये गुरु की गद्दी मिलेगी। दोनों शिष्य ने फल लिया और चले गए। एक शिष्य गया और उसने कमरा बंद किया, देखा कोई देख नहीं रहा है, नहीं देख रहा है, फल उसने खा लिया। दूसरा शिष्य वो जंगल में गया, कमरा बंद करके देखा, लेकिन उसको याद आया कि उसके गुरु ने बताया था कि ईश्वर हर जगह होता है, मतलब वो तो देख रहा है, इंसान नहीं देख रहा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जहां कोई ना देख रहा हो, और ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं। अपनी हार स्वीकार करके वो गुरुदेव के पास आया। दूसरा शिष्य भी आ गया तो उसने बेटा फल खा लिया, तो उसने कहा हाँ गुरुजी, कमरा बंद किया और फल खा लिया, किसी ने नहीं देखा। दूसरे वाले ने वो फल वापस किया गुरुदेव को, उसने कहा कि गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन ऐसी कोई जगह मिली नहीं मुझको जहां पर कोई ना देख रहा हो, क्योंकि आपने बताया है कि ईश्वर हमको हर जगह देखता है, तो मेरी निगाह में ऐसी कोई जगह नहीं आई जहां पर वो ना हो। गुरु को यही जवाब सुनना था। उन्होंने कहा तुमने अपनी जिंदगी में जो सुना है उसे अपने जीवन में उतारा है, इस गद्दी के असली अधिकारी तुम हो, और उनको अपना गद्दी दे दी। सीख ये मिलती है कि हम बताते तो हैं, जानते तो हैं कि ईश्वर हर जगह है, लेकिन सोचते हैं कमरा बंद करके करेंगे तो कोई देख नहीं पाएगा। जिंदगी की यही कहानी है साहब हमारी आपकी। जान देने की घड़ी थी और मैं जिंदा रहा, जान देने की घड़ी थी और मैं जिंदा रहा, आज उसकी रुखसती थी, रुखसती मतलब विदाई, आज उसकी रुखसती थी और मैं जिंदा रहा, अब कहीं भी डूब मरने की भी गुंजाइश नहीं, अब कहीं भी डूब मरने की भी गुंजाइश नहीं, उसकी आंखों में नमी थी और मैं जिंदा रहा। जिनकी गर्दन झुक गई थी वो तो कब के मर गए, जिनकी गर्दन झुक गई थी वो तो कब के मर गए, मेरी गर्दन कट गई थी और मैं जिंदा रहा, किस तरह नजरें मिलाऊं अब मैं उसके हिज्र से, हिज्र मतलब जुदाई, किस तरह नजरें मिलाऊं अब मैं उसके हिज्र से, बात मरने की हुई थी और मैं जिंदा रहा, सबको मेरे हौसले की दाद देनी चाहिए, सबको मेरे हौसले की दाद देनी चाहिए, इतनी जालिम जिंदगी थी और मैं जिंदा रहा। जी हाँ, इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो दिल के गम होते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर आने चाहिए, और बाहर आने के लिए आंसू होने चाहिए, आंसू बाहर निकल जाए, और आंसू उसके सामने निकलते हैं जिसके पहलू में आपको ये यकीन हो कि वो कंधा आपके गम को समझेगा और कभी निराश नहीं करेगा। और जहां तक मेरा मानना है कि इस दुनिया में
हमारे देश में। लता जी ने एक गीत गाया, एक गजल गाई, एक नगमा गाया कि जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। और लता का जवाब, जहां तक मेरा अपना मानना है, केवल रफी साहब के पास है। तो लता जी ने कहा था, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। रफी जी बताते हैं

जी तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, क्या बात है, आपके पहलू में आके रो दिए, क्या बात है भाई, आज तो हम लेजेंड की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर नवाज देवबंदी कहते हैं कि वो बेवफा है, उसे बेवफा कहूं कैसे, सच जानना लेकिन सच बोलना दोनों में बहुत अंतर है। वो बेवफा है उसे बेवफा कहूं कैसे, बुरा जरूर है लेकिन बुरा कहूं कैसे। जो कश्तियों को डुबोता है ला के साहिल पर, कश्ती मतलब नाव और साहिल मतलब किनारा, जो कश्तियों को डुबाता है ला के साहिल पर, तुम ही बताओ उसे ना खुदा कहूं कैसे। उसको हम कैसे नाविक मान लें, ये और बात बुरे को बुरा नहीं कहता, ये और बात बुरे को बुरा नहीं कहता, बुरा बुरा है बुरे को भला कहूं कैसे। वो मेरी सांसों में, दिल में, नजर में, गजलों में, वो मेरी सांसों में, दिल में, नजर में, गजलों में, मैं अपने आप से इससे जुदा कहूं कैसे। जो तुझसे कहना है दुनिया से वो छुपाना है, जो तुझसे कहना है दुनिया से वो छुपाना है, अगर गजल न कहूं तो बता कहूं कैसे। हवा की शह पे जलता है घर गरीबों का, हवा की शह पे जलता है घर गरीबों का, नवाज ऐसे दिए को दिया कहूं कैसे। जो दिया दूसरों का घर जला दे उसे कैसे मैं दिया कहूं। जी हाँ, हमारे साथ सविता जी ने कहा है बहुत ही बेहतरीन गजल, धन्यवाद सर जी। जी हाँ, और आइए अब आपको ले चलते हैं भाई किशोर, आपने सुन लिया लता जी को, सुन लिया रफ़ी साहब को, एक आइए इस मौजू पर एक बहुत ही प्यारा नगमा मुझको याद आ रहा है, अब आपको सुनाते हैं, और घड़ी की सुइयां भी अब आज्ञा नहीं दे रही हैं, और अब आपसे लेते हैं अनुमति। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठ पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक 9:30 बजे आपके ही कार्यक्रम बाहर है गजल में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गायन स्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। चलते चलते एक खूबसूरत सा नगमा आप सभी के लिए।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जस बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी परफेक्ट मैच। आओ तुम यहां बैठ जाओ। समीर ने प्रीति को अपने बगल में खड़ा देखा तो अपनी सीट से उठते हुए कहा, नहीं तुम बैठो, मुझे अगले स्टैंड पर ही उतरना है। प्रीति बोली, तुम बैठो, तुम्हें खड़े होने में तकलीफ हो रही है। उसने फिर आग्रह किया तो प्रीति उसकी सीट पर बैठ गई। बस में खचा खच भीड़ थी, तिल भर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। प्रीति का एक पैर खराब था इसलिए थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। नीलम ठीक उसके पीछे खड़ी थी, मुस्कुराती हुई बोली, चलो तुम्हारी तकलीफ समझने वाला कोई तो मिला। अगले स्टैंड पर दोनों सहेलियां उतर गईं। समीर भी उनके पीछे पीछे उतरा। तुम्हारी सहेली के साथ मैंने अन्याय किया, वो प्रीति को देखकर मुस्कुरा कर बोला, लेकिन क्या करूं, सीट एक थी और तुम दो। कोई बात नहीं, अगली बार तुम मुझे लिफ्ट दे देना। नीलम भी मुस्कुराते हुए बोली। तो समीर ने पूछा, वैसे तुम दोनों यहां कहां रहती हो? बगल में ही, गर्ल्स हॉस्टल में, नीलम ने बताया। अच्छा है, अब तो हमारा इसी स्टैंड से कॉलेज आना जाना होता रहेगा। मैं भी थोड़ी दूर पर ही रहता हूँ। समीर, प्रीति और नीलम एक ही कॉलेज में थे। आज कॉलेज में उनका पहला दिन था। प्रीति आगरा की रहने वाली थी और नीलम लखनऊ की। दोनों गर्ल्स हॉस्टल में एक ही रूम में रहती थीं। प्रीति को शुरू से ही साइकोलॉजी में बहुत रुचि थी और बीए में भी उसका ये फेवरेट सब्जेक्ट था, इसीलिए उसने इसी सब्जेक्ट से एमए करने का विचार किया। वो साइकोलॉजी में रिसर्च करना चाहती थी और भविष्य में किसी कॉलेज में लेक्चरर बनने की ख्वाहिश पाले हुए थी। नीलम एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके पिताजी चाहते थे कि उनकी बेटी दिल्ली के किसी कॉलेज से एमए कर ले और उसकी सोसाइटी मॉडर्न हो जाए, क्योंकि आजकल बिजनेसमैन के लड़के भी एक पढ़ी लिखी लड़की को शादी के लिए प्रेफर करते हैं। इसीलिए उसने दिल्ली के इसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और साइकोलॉजी से एमए करना चाहती थी। समीर के पिताजी उसे आईएएस बनाना चाहते थे और समीर भी इसके लिए इच्छुक था, इसीलिए वो भी साइकोलॉजी से एमए करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिए हुए था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है परफेक्ट मैच। अब तक आपने सुना प्रीति, नीलम और समीर ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। अब आगे, प्रीति एक साधारण परिवार की थी और स्वभाव से भी बहुत ही सरल, इसलिए उसकी वेशभूषा और पोशाकें भी साधारण थी, पर वो सुंदर और स्मार्ट थी। उसे बनाव श्रृंगार और मेकअप पसंद नहीं था। लेकिन दूसरी ओर नीलम बहुत सुंदर और गोरी लड़की थी और अपनी सुंदरता पर सबसे ज्यादा ध्यान देती थी। वो मेकअप करती थी और हर दिन नई नई ड्रेसेस पहनती थी। कॉलेज में जहां प्रीति अपनी किताबों में उलझी रहती, वहीं नीलम अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारती और मस्ती करती। एक दिन प्रीति लंच के समय कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ किताबों से नोट्स तैयार कर रही थी, तभी नीलम उसके पास आई और बोली, अरे पढ़ाकू, ये लंच का समय है और तुम किताबों से माथापच्ची कर रही हो, चलो चलकर कैफेटेरिया में चाय पीते हैं। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, प्रीति ने कहा तो नीलम चली गई। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर पीछे की ओर देखा तो समीर था। बस में मिलने के बाद समीर आज पहली बार उसके पास आकर खड़ा हुआ था। क्लास में कभी कभी उसकी ओर देख लिया करता था, लेकिन बात नहीं करता था। प्रीति, सभी लोग कैफेटेरिया में चाय पी रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर नोट्स बना रही हो, अभी तो एग्जाम होने में काफी टाइम है, चलो चाय पीते हैं, समीर ने प्रीति से कहा। बाद में आऊंगी समीर, थोड़े से नोट्स बनाने बाकी हैं, पूरा कर लेती हूँ, प्रीति बोली। अब बंद भी करो, समीर ने उसकी नोटबुक को समेटते हुए कहा। अच्छा चलो, प्रीति भी किताबों को नोटबुक के साथ हाथ में उठाए हुए उठ खड़ी हुई। जब समीर और प्रीति कैफेटेरिया में पहुंचे तो वहां पहले से ही नीलम अपनी कुछ क्लासमेट्स के साथ बैठकर चाय पी रही थी। अगल बगल और भी कई लड़के लड़कियां थीं। आ गई पढ़ाकू, सविता ने उसको देखते हुए चुटकी ली। मैंने कहा तो मेरे साथ नहीं आई, अब समीर के कहने पर एक बार में आ गई। हाँ भाई, उस दिन बस में उठकर अपनी सीट जो तुम्हें ऑफर की थी, अब उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। नीलम की बात सुनकर सभी सहेलियां हंसने लगी। समीर कुछ झेप सा गया, बात आई गई हो गई। लेकिन इसके बाद प्रीति और समीर अक्सर आपस में मिलते। प्रीति को साइकोलॉजी के कई टॉपिक्स पर बहुत अच्छी पकड़ थी, समीर को उसके पढ़ने में काफी मदद मिलती। समय के साथ साथ उनके बीच आपसी लगाव बढ़ रहा था। उनके बीच का गहराता संबंध कॉलेज में चर्चा का विषय था। कुछ साथी उस पर चुटकियां लेने से भी नहीं चूकते थे, पर समीर कभी भी कुछ नहीं कहता।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है परफेक्ट मैच। अब तक आपने सुना प्रीति, नीलम और समीर एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उन तीनों ने एक ही सब्जेक्ट ले रखा था। धीरे धीरे प्रीति और समीर के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही थी। अब आगे समीर अपने करियर के प्रति सीरियस था। उसे आईएएस की तैयारी करनी थी जिसमें साइकोलॉजी को मुख्य विषय रखना था। उधर प्रीति को इसी विषय के किसी टॉपिक पर रिसर्च करना था, इसलिए दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट थे। लेकिन लगातार एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने के कारण उनके अंदर प्रेम का भी अंकुरण होने लगा था, जिसको दोनों महसूस तो करते किंतु इसकी आपस में कभी भी चर्चा नहीं करते। ऐसे ही कब 2 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। दोनों ने एमए फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिया। फिर समीर ने आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली में ही एक कोचिंग ज्वाइन कर ली और प्रीति एक प्रोफेसर के अंडर पीएचडी करने लगी। नीलम ने किसी तरह एमए किया और घर चली गई। उसके पिता ने उसकी शादी एक बिजनेसमैन से कर दी। उसके निमंत्रण पर प्रीति उसकी शादी में गई। उसने समीर को भी निमंत्रण दिया था लेकिन किसी कारणवश समीर नहीं पहुंच पाया। बिछड़ते वक्त दोनों सहेलियां खूब रोईं। इधर समीर और प्रीति के बीच दूरी बढ़ी तो लगाव भी कम होने लगा। उनके बीच कुछ महीनों तक तो फोन पर संपर्क होता रहा, फिर धीरे धीरे वो भी समाप्त हो गया। यही दुनियादारी है। कभी समीर जब तक उसे एक बार नहीं मिल लेता उसे चैन नहीं मिलता था। अब उसे उसकी याद ही नहीं रही। प्रीति ने भी उससे बात करनी बंद कर दी। जीवन किसी का भी हर वक्त एक जैसा कहाँ रहता है? ये कोई जानता भी तो नहीं कि कब किसके साथ क्या घट जाए। प्रीति अभी दिल्ली में ही थी कि एक दिन सुबह सुबह ही उसे खबर मिली कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में भर्ती है। सुनते ही वो आगरा के लिए भागी, किंतु वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि उसकी माँ अब दुनिया में नहीं रही। प्रीति पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब उसका एकमात्र सहारा माँ भी उसे छोड़ गई थी। अस्पताल में वो माँ के पास खड़ी रो रही थी। उसको सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ के ऑफिस वाले आए हुए थे। उन लोगों ने कहा, बेटी अब अपने को संभालो, ये रोने का समय नहीं है, तुम्हें ही सब कुछ करना है। इस दुख भरी घड़ी में अपनों की कितनी याद आती है। उसने समीर को फोन लगाया लेकिन उसका फोन तो डेड था, शायद उसने नंबर बदल लिया था। अंतिम बार जब उससे भेंट हुई थी तो कहा था उसने कि अब दूसरा सिम लेगा। थक हार कर उसने नीलम को याद किया। नीलम खबर पाते ही आगरा के लिए अपनी गाड़ी से चल पड़ी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है परफेक्ट मैच। अब तक आपने सुना प्रीति, नीलम और समीर कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। कॉलेज में पढ़ने के दौरान प्रीति और समीर में काफी नजदीकियां हो गईं, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद धीरे धीरे उनका एक दूसरे से बातचीत करना बंद हो गया। नीलम की शादी हो गई। फिर एक दिन प्रीति को मालूम पड़ा कि उसकी माँ का देहांत हो गया है और उस वक्त उसे अपनी मदद के लिए सिर्फ वही दोनों दोस्त याद आए। समीर का तो फोन डेड बता रहा था। नीलम तुरंत उसके पास चल पड़ी। अब आगे प्रीति के जिम्मे अभी काफी काम थे। अस्पताल का बिल चुकाना था, अकेले पड़े घर को संभालना था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे और माँ के बैंक अकाउंट का उसके पास कोई लेखा जोखा नहीं था। नीलम से वो कुछ मांगना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इसलिए उसने उससे कुछ मदद करने के लिए कहा। नीलम ने अस्पताल के सारे बिल भर दिए और सारी विधियां पूरी करने में प्रीति का पूरा साथ दिया और सारे खर्चे को भी वहन किया। जब तक सारे काम अच्छी तरह नहीं निपट गए, नीलम प्रीति के साथ ही रही। परिस्थितियां चाहे जितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, मनुष्य को उससे तो बाहर निकलना ही पड़ता है, और प्रीति भी इससे निकल तो गई, लेकिन वो जिस खालीपन का एहसास कर रही थी उसे भरना बहुत ही मुश्किल था। कुछ समय बाद प्रीति को पता चला कि उसकी माँ ने अपने नाम से एक इंश्योरेंस भी कराया था, जिसका अच्छा खासा पैसा नॉमिनी होने के कारण उसे मिल गया। माँ के बैंक अकाउंट में भी काफी पैसे थे, इसलिए उसको अपने रिसर्च के काम में कोई दिक्कत नहीं आई। उसने नीलम का सारा पैसा लौटा दिया। समय बीतता गया और उसके साथ साथ प्रीति भी पहले से ज्यादा समझदार और परिपक्व होती गई। उसे आगरा के ही एक कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी भी मिल गई। अब प्रीति का एक ही मकसद था, घर से कॉलेज जाना, वहां मनोयोग से छात्रों को पढ़ाना और शाम को घर लौटकर मनोविज्ञान की पुस्तकों का गहरा अध्ययन करना। एक दिन सुबह उसने अखबार में देखा कि समीर नाम का कोई आईएएस अधिकारी उसके शहर में जिलाधिकारी बनकर आया हुआ है। समीर नाम से ही उसके दिल में हलचल पैदा हो गई। वो सोचने लगी, ये वही समीर तो नहीं जो कभी उसके दिल के बहुत करीब हुआ करता था और घंटों मनोविज्ञान के किसी टॉपिक पर उससे चर्चा करता रहता था। क्या समीर आईएएस बन गया? ये प्रश्न उसके जहन में कौंध रहा था और वो बहुत देर तक समीर के साथ बिताए उन पलों को याद कर रही थी, जो 5 साल बाद भी अभी तक वैसे ही तरोताजा थे जैसे ये सब बस कुछ पलों पहले की ही बात हो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है परफेक्ट मैच। अब तक आपने सुना नीलम, प्रीति और समीर कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। कॉलेज के बाद नीलम की शादी हो गई, प्रीति एक कॉलेज में लेक्चरर बन गई और फिर एक दिन प्रीति ने अखबार में पढ़ा कि कोई समीर नाम का जिलाधिकारी उसके शहर में आया है। वो समीर की यादों में खो गई। अब आगे प्रीति ने एक किताब लिखी थी, उसके विमोचन के लिए कॉलेज में समारोह होना था और उस समारोह में शहर के जिलाधिकारी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। जब प्रीति कॉलेज पहुंची तो अधिकतर मेहमान आ चुके थे, सब जिलाधिकारी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्टेज पर प्रीति की कुर्सी ठीक जिलाधिकारी के बगल में ही लगी थी। प्रीति ने समीर को देखकर हाथ जोड़े तो वो अप्रत्याशित रूप से उसको स्टेज पर देखकर विस्मित होते हुए बोला, अरे तुम प्रीति यहाँ? क्या आप एक दूसरे को पहचानते हैं? प्रिंसिपल ने पूछा। हम दोनों ने एक ही साथ दिल्ली में एक ही कॉलेज से साइकोलॉजी में एमए किया है, जिलाधिकारी बोले। समारोह के बाद समीर ने प्रीति के घर आके उससे मिलने का वादा किया और संडे को अपने वादे के मुताबिक प्रीति के घर पहुंचा। उसके घर पहुंचकर समीर का पहला सवाल यही था कि प्रीति क्या तुमको कभी मेरी याद नहीं आई? प्रीति बोली, ऐसी बात नहीं है समीर, मैंने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारा नंबर भी बदल गया था और मुझे कुछ पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। समीर ने प्रीति से कहा, जिंदगी इसी का नाम है, ये कोई नहीं जानता कि किसकी जिंदगी उसको किस तरह जीने के लिए मजबूर करेगी। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं एक बॉयज हॉस्टल में शिफ्ट कर गया जहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लड़के रहते थे। घर में पढ़ने का माहौल नहीं था। वहाँ एक दिन किसी ने मेरा स्मार्टफोन चुरा लिया। उस फोन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी थी और तुम्हारा नंबर भी। मैंने तुम्हें खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। मेरे माँ बाबू जी हर हफ्ते यहाँ घूमने आते हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। प्रीति बोली, हाँ समीर, मुझे भी उनसे मिलने की बहुत इच्छा है, पर तुम अपनी पत्नी को लेकर क्यों नहीं आए? समीर ने हंसते हुए कहा, अभी तुम्हारी जैसी कोई मिली ही नहीं। क्यों मजाक करते हो समीर, मेरी जैसी कोई क्यों मिलेगी तुम्हें? हैंडीकैप्ड होना एक अभिशाप से कम नहीं है, प्रीति बोली। ये तो प्रीति नहीं जानती थी कि समीर के साथ उसका क्या रिश्ता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये जानकर खुश हुई थी कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। फिर एक दिन समीर ने उसे अपने घर बुलाकर अपने माँ बाबूजी से मिलवाया। माँ बोली, समीर तुम्हारी हमेशा चर्चा करता है, बेटी अब आगे क्या करना है? बाबूजी बोले, क्या करूंगी बाबूजी, दिन में कॉलेज में पढ़ाती हूँ, रात में अध्ययन, कुछ लेखन, उसने नम्रता से कहा। बेटी तुम्हारी शादी की कहीं बात चल रही है क्या? माँ बोली। प्रीति कुछ नहीं बोल पाई, जवाब देती भी क्या, उसकी शादी के लिए कौन बात करने वाला था। समझ गई बेटी, अब तो तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा कोई है नहीं जिससे तुम्हारी शादी के बारे में बात की जाए,
समीर तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है। क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? लेकिन माँ जी, कहाँ समीर की पोस्ट और कहाँ मैं एक साधारण कॉलेज की लेक्चरर, और वो भी विकलांग। प्रीति बोली, अब लज्जित ना करो प्रीति। समीर बोला, मेरे और तुम्हारे संबंधों के बीच हमारी पोस्ट और हैसियत कहाँ से आ गई? इसी से बचने के लिए तो आज तक मैंने कोई शादी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। प्रीति ने लज्जा से सिर झुका लिया। उसने समीर के माँ बाबूजी के पैर छूते हुए कहा, आप लोगों का आदेश मेरे लिए आज्ञा से कम नहीं। फिर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। समीर उसे छोड़ने उसके घर तक गया। जब वो लौटने लगा तो उसने प्रीति को अपने गले से लगा लिया और बोला, प्रीति, पति पत्नी का रिश्ता बराबर का होता है। आज भी मैं वही समीर हूँ जो कॉलेज के दिनों में हुआ करता था, और आगे भी वैसा ही रहूंगा। समीर के गले लगी प्रीति को ऐसा लगा मानो सारे जहां की खुशियां उसे मिल गई हैं। रात का स्याह अंधेरा अब समाप्त हो चुका था। सुबह की नई किरणें

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी परफेक्ट मैच। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, हर मुस्कान में जैसे

0: हजारों जवाब थे। पर्दे पर आई तो चांद भी शर्मा गया। मधुबाला नाम ही सिनेमा का खूबसूरत गुलाब थी। संघर्ष की राह पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हर किरदार में अपनी आत्मा पूरी उतारी। दर्द दिल में था मगर चेहरे पर मुस्कान रहती थी। यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची अदाकारी थी।
1: प्रेम मिला, बिछड़ना भी मिला, फिर भी कभी शिकायत न की। जिंदगी ने जितनी परीक्षाएं ली उतनी ही शिद्दत से जी। कम उम्र में दुनिया छोड़ गई पर अमर हो गई। हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना गई। मधुबाला हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, सच्ची पहचान इंसान के कर्मों और मुस्कान में होती है। वो आज भी हर दिल में एक चमकता सितारा है। भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और अमर धरोहर है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश।
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: आज लेकर के आ रहे हैं उस सिनेमा की खूबसूरत धरोहर के बारे में, जो कि आज भी हमारे दिलों में सिर्फ एक प्यार भरा जब नाम आता है तो प्यारी सी गुदगुदाहट सी होने लगती है। वो प्यारा सा नाम मधुबाला। मधुबाला के नाम से ही हमारे सामने हमारी एक बहुत ही प्यारी सी प्रकृति सामने आती है। एक खूबसूरत सी प्रकृति, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक खूबसूरत सी आवाज, एक खूबसूरत सी अदाकारा। तो आइए चलते हैं आज की सफर में। हम इसी खूबसूरत सफर को लेकर के साथ में उनकी कई चीजों को, उनके कई बातों को आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी महकती यादों के बारे में। तो आज का सफर होने वाला है भूले बिसरे गीत में मधुबाला को लेकर के। तो आइए सुनते हैं एक प्यारे से गीत को।

0: मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने लगभग 22 वर्षों के फिल्मी करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर अभिनेत्री माना जाता है।
1: मधुबाला का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म बसंत, जो कि 1942 में थी। बाद में निर्देशक किरदास शर्मा ने उन्हें नीलकमल 1947 में पहली बार मुख्य अभिनेत्री में अवसर दिया। तो आइए उन्हीं की फिल्म बसंत से एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: 1954 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और मधुबाला की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक और गंभीर हर प्रकार की भूमिका निभाई।
1: मधुबाला केवल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, असल में उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था, बल्कि अपने विनम्र स्वभाव, मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थी। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था। वे समय की पाबंद, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थी। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो कहा जाता है ना कि सूरत से सुंदर सीरत होनी चाहिए, और मधुबाला की सीरत उनके व्यक्तित्व का दर्पण थी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि मधुबाला के दर्पण में उनकी प्यारी सी छवि को दिखाता है।

हमारे भारतीय सिनेमा में प्रेम कहानियों का भी अपना ही दौर है। ऐसी एक प्रेम कहानी थी मधुबाला और दिलीप कुमार जी की, बहुत ही चर्चित। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने 1960 से 61 के आसपास किशोर कुमार से विवाह कर लिया। तो आइए चलिए सुनते हैं मधुबाला जी का एक प्यारा संगीत।

मधुबाला का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार आज भी अभिनय की महान मिसाल माना जाता है। उनकी मुस्कान, मासूमियत और अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। अगर हम संक्षेप में यूं कहें कि मधुबाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेम, पीड़ा और अमर विरासत सब कुछ समाहित है। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ऐसी अमर फिल्मों में से जो एक है।

0: प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसके पीछे दो सबसे बड़े किस्से बहुत ही मशहूर हैं। नौशाद और गीतकार शकील इस गाने की धुन को और बोल को तैयार कर रहे थे। दोनों पूरी रात जागते रहे लेकिन सही बोल नहीं मिल रहे थे। सुबह तड़के नौशाद को एक लोक गीत की पंक्ति याद आई, प्रेम किया क्या चोरी की। इसी को आधार बनाकर शकील ने तुरंत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की।
1: आइए अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने में, जो कि मधुबाला ने बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर झेला, भारी जंजीरों का असली दर्द उन्होंने अपने ऊपर इस कदर से झेला था कि इस गाने और पूरी फिल्म में जब अनारकली यानी मधुबाला को जेल में दिखाया गया था तो उन पर असली और बेहद भारी लोहे की जंजीरें बांधी गई थी। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थी लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और उसके बावजूद इतनी प्यारी अदाकारा होने के साथ साथ इस गाने को आज भी जब भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो जरा सा भी फील नहीं कर पाते हैं, जरा सा महसूस नहीं कर पाते हैं कि इतनी भारी जंजीरों का दर्द उन्होंने कैसे झेला होगा। भारी जंजीरों के कारण उनकी त्वचा भी छिल गई थी और वे दर्द से तड़प रही थी लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को एक नए अंदाज में।

एक लड़की भीगी भागी सी। ये बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांटिक बारिश के गानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी काफी मजेदार है। किशोर कुमार हॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूजिक के बहुत बड़े दीवाने थे। वे इस गाने के लिए कुछ अनोखा संगीत चाहते थे। उन्होंने संगीतकार एसडी वर्मन से जिद की, गाने की शुरुआत किसी वाग यंत्र से नहीं बल्कि गैराज के औजारों की आवाज से होनी चाहिए, और फिर वैसा ही हुआ। और जब ये गाना बना और सभी ने सुना तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, ये सॉन्ग ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। और मेरे हिसाब से जब कभी कोई भी रोमांटिक कपल कहीं भी अगर घूमने जाते हैं और ये गाना ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आज भी सभी के दिलों को गुदगुदा जाता है। इस गाने ने मधुबाला को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग रूप उनके देखे गए थे। फिल्म के निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तब मधुबाला एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया जी रही थी। वे दिन के एक हिस्से में वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब डांसर के रूप में आइए मेहरबान गाने पर थिरकती थी और दिन के दूसरे हिस्से में वे मुगले आजम के सेट पर भारी अनारकली सूट पहनकर प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग कर रही होती थी। दो अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाना उनकी महानता को दर्शाता है। तो आइए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं जो कि है हावड़ा ब्रिज फिल्म से।

0: मुस्कानों की वो रानी हर दिल की धड़कन थी, रूप पहले पर्दे पर उतारी जो जैसे चांद की किरण थी। हर अदा में जादू था, हर नजर में प्यार था। मधुबाला का नाम ही सिनेमा का त्योहार था। दर्द छुपा कर भी उन्होंने हंसना सीखा, हर किरदार में जीवन का रंग सजाया। वक्त ने बहुत कुछ छीना, फिर भी वो मुस्कुराती रही, अपनी कला से हर दिल में अपनी जगह बनाती रही।
1: मोहब्बत की कहानी थी, उसके संग अमर हो गई। हर गीत हर तस्वीर जैसे सुनहरी सहर हो गई। कम उम्र में चली गई पर यादों में बस गई, पीढ़ियों के दिलों में एक रोशनी बन गई। तो आइए दोस्तों, आज इस सफर को यही विराम देते हैं, लेकिन मधुबाला की मुस्कान के संग हम सभी उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत थी जिनके बहुत सारी ऐसे किरदारों को हमने अलग अलग रूप में देखा। जब वो सेट पे होती थी तब भी मुस्कुराते हुए काम करती थी, जब वो एक गंभीर बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही थी तब भी उनके चेहरे पर हमेशा से मुस्कान हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत को, इस महफिल को यही विराम देते हैं। मैं हूँ आपकी आज ख्वाहिश, भूले बिसरे गीतों की ये शाम यही थम जाए। फिर मिलेंगे अगली महफिल में, तब तक आप सभी को शुभ रात्रि।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल 72-34-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहाँ लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ।

जुड़कर एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।